आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओ, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवम तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। हम आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को है दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, अब आप सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर,

0: अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजीआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लेकर उपस्थित हैं भक्ति संगीत अर्चना।

हर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, लेकर उपस्थित हैं भक्ति संगीत अर्चना।

प्रातःकालीन बेला सहज ही हमें भक्ति की ओर उन्मुक्त करती है। आइए भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में ऐसे ही स्वर और शब्दों का मिश्रण हम करें कि हमारी ये दिशा और उन्नत हो जाए।

दृष्टि बनाए रखते हैं, किंतु हम भूलवश ये मान बैठते हैं कि ईश्वर ने भी हमको भुला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा हमें लगता भी है तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ईश्वर से विनती करें कि इस भवसागर से हमारी नैया पार लगा देना।

कोमल घास की रस्सी अपने घर्षण से शिला पर भी निशान छोड़ सकती है, फिर हमारे ईश्वर तो स्वयं ही कोमल हैं। बार बार उनका नाम स्मरण करने से वे सहज ही रीझ जाते हैं। अर्थात हमारे प्रभु अगर इतने कोमल हैं तो फिर हम क्यों ना उनका सुमिरन करते ही रहें।

जो आर्त होता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आर्त भाव से ईश्वर को पुकारने पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और आरती हम इसीलिए करते हैं कि हमारे ईश्वर को हम प्राप्त हो जाएं।

तो श्रोताओ, ये था आज के भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इसमें स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति, सुमन कल्याणपुर, ओम व्यास, जे एस आर मधुकर, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, और अंत में हरिओम शरण के।

भक्ति संगीत अर्चना चंबल चैनल पर आपने सुना। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं श्री रामचरितमानस गान। इसमें स्वर हैं श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

0: श्रीकांत पारगांवकर और रविंद्र साठे के स्वरों में ये था श्री रामचरितमानस गान। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सुनवाएं चिंतन। आज लघु वार्ता का विषय है कर्म फल।
1: कर्म फल एक ऐसा अमिट तथ्य है जो आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य धर्म समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक बुद्धि संचित कर सका या नहीं। जो दंड भय उसे डरे बिना दुष्कर्मों से बचना मनुष्यता का गौरव समझता है और सदा सत्कर्मों तक ही सीमित रहता है, समझना चाहिए कि उसने सज्जनता की परीक्षा पास कर ली है और पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर दिया है। दंड भय से तो विवेक रहित पशुओं को भी अवांछनीय मार्ग पर चलने से रोका जा सकता है। मानवीय अंतकरण की विकसित चेतना तभी अनुभव की जा सकेगी जब वो कुमार्ग पर चलने से रोके और सन्मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करे। लाठी के बल पर भेड़ों को इस या उस रास्ते पर चलाने में गडरिया सफल रहता है। सभी जानवर दंड भय दिखाकर अमुक प्रकार से जोते जाते हैं। यदि हर काम का तुरंत दंड मिलता और ईश्वर बलपूर्वक अमुक मार्ग पर चलने के लिए विवश करता तो फिर मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता, उसकी स्वतंत्रता आत्म चेतना विकसित हुई या नहीं इसका पता ही नहीं चलता। भगवान ने मनुष्य को भले या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करने का उद्देश्य ये है कि मनुष्य अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे और दुष्परिणामों के शोक संतापों से बचने एवं सत्परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण करने में समर्थ हो सके। विवेक और कर्तव्य परायणता ये दोनों ही कसौटी मनुष्यता का आत्मिक स्तर विकसित करने वाली है। इस आत्म विकास पर ही जीवनोद्देश्य की पूर्ति और नर जन्म की सफलता अवलंबित है। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना का विकास करे और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने की सफलता प्राप्त करे। समाज में कुकर्मियों का तिरस्कार और अविश्वास होता है। लोग उनका सहयोग समर्थन नहीं करते और संपर्क बनाने से बचते हैं। मनुष्य की उन्नति पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है।

0: ہے جسے دوسروں کا جتنا گہرا پیار اور سچا سہیوگ ملے گا وہ اتنا ہی انتی شیل بن سکا ہے۔ یہ لابھ کمارگ گامیوں کو نہیں مل سکتا، ان سے سبھی ڈرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سمپرک بڑھانے پر وہ ہمارے اوپر ہی گھات کرے گا۔ جھنجھٹ مول نہ لینے کی کائرتا سے ڈر کر کوئی پرتیکش ویرودھ کر سنگھرش نہ کرے، چپ بھلے ہی بیٹھا رہے، پر انیتک ویکتی کی سچے من سے پیار کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک تتھیہ ہے کہ اناچاری کیول گھرنا کے پاتر ہو سکتے ہیں، انہیں نہ تو سمان ملتا ہے اور نہ سہیوگ۔ مانویے گریما کا تقاضا ہے کہ ہم نیائے اور چتے اور کرتویہ کو اپنائیں، نہ تو اشبھ سوچیں اور نہ انوچت قدم اٹھائیں۔ اسی میں بدھیمتا اور دوردرشتا سنہت ہے۔
1: کرم پھل، یہ تھی آج چنتن میں لگو وارتا۔ شروتاؤ، आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण आप सुन रहे हैं। आइए दिन भर में आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दें कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। आपकी सेहत। श्रोताओं, प्रति शनिवार आप सुनते हैं सुबह की सभा में 8:15 बजे स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में विषय है श्वसन रोग, कारण, बचाव और उपचार। आज विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़ हमारे साथ होंगे। आप सभी श्रोता इस टेलीफोन नंबर के जरिए अपनी भागीदारी कार्यक्रम में कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। प्रत्येक शनिवार श्रोताओं एक और कार्यक्रम आप सुना करते हैं जो फिल्म संगीत पर आपकी पसंद पर आधारित है, कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज रात 9 बजे से 10 बजे तक यही कार्यक्रम आप सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रामनारायण मीणा की। बहनें अपना कार्यक्रम महिला जगत सुन सकेंगी सुबह 9:30 से। आज बहनों के इस कार्यक्रम में चर्चा होगी कला और साहित्य से स्वयं को अभिव्यक्त करती महिलाएं। भेंट वार्ता होगी बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं माताएं। श्रीमती मनप्रीत कौर की ये भेंट वार्ता बहिने महिला जगत कार्यक्रम में सुन सकेंगी। इसी कार्यक्रम में जानकारी होगी घर में फर्स्ट एड बॉक्स के महत्व पर। युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम की प्रसारण सभा में 5:00 से 6:00 तक। आज युवाओं के लिए आज का संवाद होगा दिल की बात साझा हो तो बोझ हल्का हो, देश हमारा। इसके अंतर्गत कैंप बेल बे के बारे में हमारी युवा श्रोता जानकारी ले सकेंगे। नॉलेज कॉर्नर के तहत गोवा स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में युवाओं को जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा साप्ताहिक करंट अफेयर्स, रोजगार सूचनाएं और कुछ खेल गतिविधियों के बारे में भी युवा अपने इस कार्यक्रम में जानकारी ले सकेंगे। और इसी कार्यक्रम में युवाओं के लिए मनोरंजन होगा गीत संगीत से। हमारी शाम की सभा किसान भाइयों और ग्रामीण श्रोताओं के लिए भी कार्यक्रम लाती है चौपाल, जिसका प्रसारण समय होता है 7:00 से। आज इसी कार्यक्रम चौपाल में चर्चा होगी फसल अवशेष प्रबंधन पर और अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर। आज के इस कार्यक्रम का एक और मुख्य आकर्षण आकाशवाणी गांव में। इसके तहत गांव भुजिया खेड़ी तहसील अंता जिला 12 के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित क्षेत्र संकलित कार्यक्रम हमारे किसान भाई सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में जानकारी भी होगी पीएम ग्राम सड़क योजना पर, मौसम की जानकारी और गीत संगीत के साथ मनोरंजन भी होगा। तो श्रोता ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। चंबल चैनल का ये प्रसारण है। श्रोताओ अब आपको दिल्ली केंद्र लिए चलें संस्कृत समाचारों के लिए।

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी चंबल चैनल का ये है प्रसारण। और इस प्रसारण में कार्यक्रम नमस्कार कोटा।

नमस्कार श्रोताओं, सुबह सवेरे का कार्यक्रम जिसका इंतजार आपको हर रोज रहता है। अब आज के दिन यह इंतजार हुआ पूरा, क्योंकि शुरू हुआ कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोताओं, मैं हूं राजेश महावर, आकाशवाणी की अपनी पूरी टीम के सहयोग से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहा हूं। तो स्वीकार कीजिए नमस्कार और करते हैं हम सब मिलकर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, गर्मी का मौसम तपिश और ऊर्जा दोनों का ही प्रतीक है। यह मौसम हमें सिखाता है कि जिस तरह प्रचंड और तेज धूप में भी फूल खिलते रहते हैं, उसी तरह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी सकारात्मक ऊर्जा और चमक को हमेशा के लिए बनाए रखना चाहिए। श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम में हम अगर सर्दी के उन दिनों को याद करेंगे जब हम ठिठुरा करते थे, तो क्या हमें राहत मिल सकती है? भाई, हो तो सकता है कि कुछ राहत मिल जाए। श्रोताओं, सूरज की गर्मी हमें पसीना बहाना सिखाती है, और ये जो पसीना है ना, ये सफलता की असली सीढ़ी है। जो जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, कहते हैं ना, सोना तपकर ही कुंदन बनता है ना। तो हम सब कुंदन बनने के लिए इस मौसम के साथ आगे बढ़ते रहे। भाई, इसी मौसम में क्यों? हाँ, क्योंकि इस मौसम में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, यानी काम करने के लिए वक्त हमें ज्यादा मिलता है और आराम थोड़ा सा, जिसमें हमारा पूरा काम हो जाता है ना। तो फिर जब तक अगली सर्दियां आए तब तक खूब सारा काम निपटा लीजिए, मगर कुछ सावधानियां भी तो रखनी होंगी हमें। श्रोताओं, लू और तापघात ऐसे ही मौसम में हमें अपने आगोश में ले लेती हैं, और हमें उससे बच निकलना है। जिस तरह से फुटबॉल के मैदान में हम अपनी फुटबॉल को सामने वाले खिलाड़ी से बचाकर गोल दाग देते हैं।

तो श्रोताओं, बात तो हमारी पूरी हुई नहीं थी कि गाना बीच में आ गया, मगर गाना भी तो जरूरी था, इसलिए हमने गाने का सम्मान किया, क्योंकि इसमें बड़ी खास बात लिखी थी कि जिंदगी आ रहा हूं मैं, यानी अपनी जिंदगी के हर काम को जिंदा दिली से करना है हमें। हाँ श्रोताओं, गर्मी का ये जो मौसम है ना, भले ही अपनी प्रचंड धूप और लू के लिए जाना जाता है, लेकिन ये हमें तपना भी सिखाता है और हर परिस्थितियों में डटे रहना भी सिखाता है। जिस तरह सूरज हमें असीमित ऊर्जा देता है, उसी तरह ये जो मौसम है हमें अपने निर्धारित जो लक्ष्य हैं उनके प्रति केंद्रित होना सिखाता है और उनके साथ ही क्रियाशील रहने की भी प्रेरणा देता है। श्रोताओं, ये जो गर्मियों के दिन है, ऊर्जा और उत्साह की सही दिशा बनाए रखने के कुछ बेहतरीन उपाय अपनाकर हम अपने आप को तरोताजा रख सकते हैं, ताजगी दे सकते हैं अपने आप को। और जब हमने बात कही कि गर्मी के मौसम में लू और तापघात भी बड़े असरकारक होते हैं, ये हमें प्रभावित कर देते हैं, तो श्रोताओं ऐसे में हमें खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए, हाइड्रेटेड रखना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब चलचलाती धूप में हम बाहर निकलते हैं, ऊर्जावान बने रहने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी या फिर नारियल पानी का उपयोग करते रहना चाहिए। सुबह की जो ऊर्जा होती है उसका तो हम इस मौसम में लाभ उठा सकते हैं भाई, कि दिन के समय गर्मी अधिक हो जाती है, लेकिन इसीलिए अपने जो भी महत्व के काम हैं उन्हें हम ऐसे मौसम में कर लें, ऐसे वक्त में कर लें जब ये ताप जरा कम होता है, यानी हम अपने स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कठिन जो काम है वो सुबह सुबह हम निपटा लें, और जब मौसम सुहावना होता है तब हम अतिरिक्त रूप से अपनी ऊर्जा का संचय करके उन कामों को फटाफट निपटा सकते हैं। श्रोताओं, अपने खान पान में थोड़ा सा हमें बदलाव रखना चाहिए जो कि गर्मियों के इस मौसम के अनुकूल हो, यानी कि

हल्का और सुपाच्य भोजन हमें लेना चाहिए। अपने आहार में जो ये मौसमी फल होते हैं ना, मौसम के अनुसार इस ऋतु में अधिक पानी वाले जो फल आते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा और आम, आहा, ऐसे जो फल होते हैं वो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते और बदले में ऊर्जा भरपूर हमें देते हैं। गर्मी के दिन श्रोताओं चल रहे हैं और ऐसे में पीक का एक वक्त होता है जब बहुत तेज गर्मी होती है, उसे हम कहते हैं नौतपा। और इन दिनों नौतपा चल रहा है। श्रोताओं, ये जो नौतपा है, साल के 9 सबसे गर्म दिन के रूप में हमारे सामने होते हैं, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र से होकर गुजरता है, यानी रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है। इस दौरान तापमान अपने चरम पर होता है, कहने का अर्थ है कि तापमान 45-50 पर भी हो जाता है, जिससे लू और हीट स्ट्रोक यानी तापघात का खतरा बढ़ जाता है। श्रोताओं, इसे कई बार जानलेवा स्थितियां पैदा हो जाती हैं और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, जैसे कि हमने बताया था कि हाइड्रेटेड रहना चाहिए हमें, दोपहर में घर से बाहर निकलने से हमें बचना चाहिए और सूती कपड़ों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और यदि किसी वजह से बाहर निकलना भी हो तो हमें ऐसे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे सिर पर और चेहरे पर, मुलायम त्वचा के आसपास अपनी सुरक्षा करना हमें जरूरी होता है। और ऐसे में सफेद और प्रकाश को परावर्तन करने वाले सूती कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और बात, प्यास लगी हो या न लगी हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीते रहना चाहिए, यानी कि दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए इस समय डॉक्टर्स सलाह देते हैं। तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। शरीर में पानी और नमक की कमी न होने पाए, इसलिए इसे पूरा करने के लिए नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छाछ, नारियल पानी, लस्सी और अगर आवश्यकता हो तो ORS का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर आवश्यकता हो तभी। इसके अलावा जैसा कि हमने बताया था, मौसमी फल तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और संतरा अपनी जो भोजन व्यवस्था है उसमें जरूर शामिल करें, अपने डाइट में इसे जरूर शामिल करें। और बासी खाने का इस्तेमाल न करें भाई, बहुत ज़्यादा तला भुना भी न खाएं, मसालेदार भोजन खाने से बचें और कैफीन यानी चाय, कॉफ़ी और वो जो होता है ना पानी में मिलाकर उसको इस्तेमाल करते हैं अक्सर नशे के लिए, भाई उससे बचें। शराब अत्यधिक उपयोग में न लें क्योंकि ये शरीर में डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं, है ना। श्रोताओं, कुछ लोग हमें कहते हैं कि भाई डॉक्टर्स के प्रोग्राम करते करते आप भी बहुत सी बातें बताने लगे। भाई जो काम की बातें हैं उन्हें जहन में बसा लेना चाहिए और जो काम की बातें हैं उसे सलाह के तौर पर भी कह देना चाहिए। श्रोताओं, चंबल चैनल का ये प्रसारण है, ये अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी आपको देने के लिए है। श्रोताओं, गर्मी के इस मौसम की कुछ और बातें हैं। बात यह कि घर से जब आप बाहर निकलें तो समय का ध्यान रखें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे का जो वक्त होता है, प्रयास करें कि धूप में बाहर निकलने से बचें। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो कुछ खा पी कर ही निकलें, खाली पेट घर के बाहर ना निकलें। ऐसे में कुछ परिवार के शब्द हैं, वो कहते हैं कि गर्मी चढ़ जाया करती है, और वो यही है कि लू और तापघात को हम आमंत्रण दे बैठते हैं। श्रोताओं, लू और तापघात जैसे शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, मगर एक बात का और ख्याल हमें रखना ही होगा कि यदि किसी व्यक्ति को लू और तापघात के लक्षण दिखाई दें तो उन लक्षणों को हम कैसे पहचानें। श्रोताओं, ऐसे में जब लू और तापघात व्यक्ति पर असर करता है तब शरीर का तापमान अत्यधिक बढ़ने लगता है, तेज सिरदर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, त्वचा का लाल, गर्म और शुष्क होना यानी पसीना न आना ये भी इसका एक सिम्टम है, एक लक्षण है। जी मिचलाता है, उल्टी होने की स्थितियां बनने लगती हैं, जो हमारी नब्ज होती है यानी पल्स रेट जो होती है वो बहुत तेज चलने लगती है और फिर बेहोशी या फिर भ्रम जैसी स्थिति भी पैदा होने लगती है। ऐसे में समझना चाहिए कि हीट स्ट्रोक के ये ही लक्षण हैं और ऐसा होने पर हमें प्राथमिक उपचार भी कर लेना चाहिए उससे पहले कि हम डॉक्टर को दिखा पाएं। उपचार ये है कि प्रभावित व्यक्ति जो है उसे तुरंत किसी ठंडी जगह पर हमें ले जाना चाहिए या उसे वहां छाया में लेटा देना चाहिए। उनके शरीर के कसे

जो भारी कपड़े हैं उसे ढीले कर दें जिससे कि हवा का आवागमन हो सके। उनके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां भी हम रख सकते हैं और अगर वे होश में हैं तो उन्हें धीरे धीरे ठंडा पानी और ओआरएस जैसा घोल जो है वो हम पिला सकते हैं और स्थिति में सुधार न होने पर फिर तो शीघ्रता से डॉक्टर से संपर्क हमें करना चाहिए या फिर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमें हेल्पलाइन आदि से भी संपर्क कर लेना चाहिए। श्रोताओ नमस्कार, कोटा चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं अगली कुछ और बातें, मगर गीत संगीत हम पीछे क्यों छोड़ें।

तो लो जी, दूसरा गाना भी हमने सुना और ये गाना भी बड़ा मधुर था। अब इसमें श्रोताओं बात हुई थी हवा की। हवा हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण, पर्यावरण जिससे हमें हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। श्रोताओं, इसका अर्थ यह है कि हम, हमारा जो दैनिक जीवन है, इसमें हम इस तरह के तरीके अपनाएं जो कि प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुंचाने पाए। इसके लिए हम 3R का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। इस सिद्धांत को हम अपना सकते हैं। पहला आर, रिड्यूस, यानी कम उपयोग करें। कम क्या क्या उपयोग करें? बिजली, पानी और जो ईंधन है उसका अनावश्यक खपत हम न करें। रियूज यानी पुनः उपयोग करें, और वो क्या है? जिन चीजों को फेंका जा सकता है उनका दोबारा

इस्तेमाल अगर हम कर सकें तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए, जैसे कांच की बोतलों का और डिब्बों को हम स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण आर है, वो है रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण। इसमें खास तौर पर आता है प्लास्टिक का, जिसका आवेग बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि प्लास्टिक मुक्त हम हो जाएं, मगर ऐसा संभवतः हो न सके। लेकिन हम इनका उपयोग प्रतिबंधित कर ना कर सकें तो भी प्रबंधित तो कर ही सकते हैं। श्रोताओ, प्लास्टिक, धातु और कागज जैसी जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम रिसाइकल के लिए दें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सरकार के द्वारा हमारे यहाँ व्यवस्था है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, हो सकता है कि जो हमें कचरा लगता हो वो हम बाहर न फेंकें और उन्हें दे दें तो उनका पुनर्चक्रण में इस्तेमाल हो जाए और पर्यावरण काफी हद तक सुधारने में हम अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर सकें। वैसे श्रोताओं, हमें एक काम करना चाहिए, ये जो प्लास्टिक है ना इसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमें निश्चित रूप से बचना ही चाहिए। और जब हम घर से बाहर जाएं तो हमें आदत बनानी चाहिए कि हम कपड़े का थैला अपने साथ हमेशा लेकर चलें। आपको जानकारी होगी, ग्रामीण इलाकों में जो बुजुर्ग हैं घर से बाहर जब जाते हैं तब वो अंगूठा ऐसी वस्तुएं लेकर जाते हैं, जब कभी रास्ते में उन्हें कुछ खरीदना होता है तो वो उसी में उसे बांध लाते हैं। अंगूठे का इस्तेमाल भरपूर वो करते हैं, वो उन्हें ताप घात से बचाने में भी मदद करता है और इस तरह के उपाय भी वो उससे कर पाते हैं। श्रोताओं, कई मामलों में जब हमें ग्रामीण से सीखने को मौका मिलता है तो हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि उनका जो व्यवहार है वो परंपरागत है और परंपरा सदियों से चली आ रही होती है। श्रोताओं, जल सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें जल का संरक्षण भी बहुत सही तरीके से करना चाहिए। हम अपने दैनिक जीवन में जब ब्रश करते हैं या शेविंग करते हैं उस समय हम अपने नल को बंद रखें। घर में पानी की जो पाइपलाइंस हैं, नलों में लीकेज अगर हैं उन्हें तुरंत हम ठीक करवा लें, और नहाने के लिए शावर की जगह हमें बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक सीमित मात्रा में हम पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे और सही इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी पानी के दुरुपयोग को हम बचा सकेंगे। इसी के साथ श्रोताओं, ऊर्जा की बचत भी हम कर सकते हैं। कमरे से बाहर जब हम निकलें तो लाइट यानी जो बल्ब आदि है उन्हें हम बंद कर दें, पंखे का जो स्विच है उसे ऑफ कर दें और सामान्य बल्बों की जगह जो ऊर्जा बचत करने वाले LED बल्ब्स हैं ना, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रोताओं, पर्यावरण में प्रदूषण कम करना भी बहुत जरूरी है और इसके साथ ही हरियाली बढ़ाना भी हमारी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है। श्रोताओं, यदि संभव हो तो छोटी दूरी के लिए हमें पैदल चलना चाहिए या फिर साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास साइकिल हो भी तो हो सकता है वो चलाने की स्थिति में न हो, ऐसे में सबसे पहले तो उसे दुरुस्त करवा लेना चाहिए, उसे ठीक करवा लेना चाहिए, जिससे कि छोटी मोटी दूरी के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें। साइकिल का इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयुक्त है। श्रोताओं, कार या बाइक शेयरिंग का इस्तेमाल हम कर सकते हैं या फिर सार्वजनिक परिवहन, बस, ट्रेन, इनका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं अगर अधिक दूरी पर हमें जाना हो। इसके अलावा अपने घर, बालकनी या आसपास अधिक से अधिक हम पौधे लगा सकते हैं और वनों की कटाई को रोकने का हम अपनी ओर से भी जो प्रबंधन हो, जो व्यवस्था हो, वो हमें कर लेना चाहिए। श्रोताओ, प्रबंधन की बात आई तो एक बात आती है कि हमें कचरे का सही प्रबंधन करना चाहिए। गीला कचरा यानी सब्जी, फलों के छिलके, ये इतने काम के हैं कि हम अपने घर पर अपने घर की फुलवारी के लिए इनसे खाद बना सकते हैं। सूखे और गीले कचरे को हमेशा अलग करके उस कूड़ेदान में डालें जहां से कचरे को संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा पत्तियों या कचरों को जलाने से हम बचें, इससे वायु प्रदूषण होता है। अक्सर आप अपनी कॉलोनी में कहीं देखते होंगे कि कुछ लोग सफाई पर तो ध्यान देते हैं मगर वो जो कचरा इकट्ठा होता है उसे गाड़ी में डालने के बजाय, कचरे की गाड़ी में डालने के बजाय उसे जला देते हैं। ऐसे जलाने पर वो जो धुआं उठता है वो सीधा सीधा वायु का प्रदूषण ही तो है। तो श्रोताओं, नमस्कार। कोटा कार्यक्रम में बहुत से इस तरह की जानकारियां आप सुनते रहे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से नमस्कार। कोटा कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। श्रोताओं आपको ये जानकारी दें कि सिख धर्म दुनिया के प्रमुख और सबसे आधुनिक धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना 15वीं शताब्दी के अंत में गुरु नानक देव जी द्वारा पंजाब क्षेत्र में हुई थी। ये धर्म एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर और सभी इंसानों की समानता और निस्वार्थ सेवा यानी सेवा और सुमिरन पर जोर देता है। श्रोताओ सिख धर्म सत्य करुणा और मानवता पर आधारित एक जीवन शैली है। जीवन शैली सिख धर्म का मूल मंत्र है कि एक ओंकार यानी ईश्वर एक है और पूरी सृष्टि इसका रचयिता है। श्रोताओ इस धर्म के तीन मूल कर्तव्य है यानी ईमानदारी से मेहनत की कमाई करना जिसे कहते हैं किरत करना, अपनी कमाई और संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ बांटना यानी वंड छकना, और हमेशा ईश्वर के नाम का स्मरण करना यानी कि नाम जपना जो कि अति आवश्यक है। श्रोताओ सिखों के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस आज है। उनके सर्वोच्च बलिदान को आज के दिन याद किया जाता है। वे सिख इतिहास के पहले शहीद थे। आज के दिन दुनिया भर के गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं और दीवान सजाए जाते हैं। जगह जगह छबील होती है जिसे मीठे ठंडे पानी की छबील हम कहते हैं, उसे लगाकर लोगों की सेवा की जाती है। आज के दिन जो भीषण गर्मी में गुरुजी द्वारा सहे गए कष्टों की याद में मीठे जल के रूप में वितरित किया जाता है। श्रोताओ जब आप आज के दिन ये मीठा जल ग्रहण करें तो संकल्प अवश्य कीजिएगा कि त्याग करने वाले महात्मा का जीवन हमें भी उन जैसा बना सके, उनके बताए मार्ग पर हम भी चल सकें। श्रोताओ आज के दिन गोवा राज्य का स्थापना दिवस भी है। 30 मई है आज और साल 1987 में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके बाद ये भारत का 25वां राज्य बना। श्रोताओ आज हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी साल 1826 में जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता से निकाले गए पहले समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड उससे शुरुआत हुई और इसी उपलक्ष में आज के दिन हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं समय परिवर्तित होता रहता है लेकिन हम अपना इतिहास स्मरण कर उसे जीवंत रख सकते हैं और यही हमारी धरोहर भी है। श्रोताओं आज एक और दिन है आलू का दिन। आलू न केवल अपने बेहतरीन स्वाद और बहुमुखी उपयोग के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है बल्कि ये आवश्यक पोषक तत्वों का भी एक बेहतरीन स्रोत है। इसमें कैलोरी कम और महत्वपूर्ण विटामिन जैसे विटामिन सी और विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें खनिज होते हैं जैसे पोटेशियम, ये भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। आज विश्व आलू दिवस है श्रोताओं और इस अवसर पर चंबल चैनल के अनेक कार्यक्रमों में आलू की उपयोगिता के बारे में आप जान सकेंगे। श्रोताओं मौसम बदलता रहता है, गर्मी का मौसम है, नौतपा चल रहा है लेकिन रात में आंधी तूफान आई, हल्की छींटा भी गिरे थे, हल्के हल्के छींटे कहीं बूंदाबांदी हुई थी लेकिन इसके साथ तेज हवाओं के कारण पेड़ों की टहनियां भी कई जगह गिरी। कई जगह ये देखने को मिला कि जो सोलर सिस्टम की प्लेट्स हैं वो भी गिर गई, तो ऐसी व्यवस्थाओं को हमें और सुचारू कर देनी चाहिए जिससे कि हमें भी आर्थिक नुकसान न हो और किसी प्रकार

की जनहानि भी न हो सके। तो श्रोताओं, इन्हीं बातों के साथ हम ये स्मरण करें कि जो भी करें हम बेहतर करें। अब आपको ये कहना शेष है कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग सुनील सुवाल का और आरसी वर्मा का था, संयोजन कार्यक्रम में तेजराम मीणा ने दिया, राजेश महावर भी इस कार्यक्रम से अब चाहता है अनुमति। स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

0: नमस्कार कुटा, चंबल चैनल पर सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम श्रोताओं ने सुना। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये है पहला गीत।
1: झुमका गिरा रे

मेरा साया फिल्म से आशा भोसले का ये स्वर था। फिल्म संगीत चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं। श्रोताओ, अगला गीत हम आपको सुनवाएं उसके पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। सुनेंगे आप आपकी सेहत सजीव फोन इन कार्यक्रम 8:15 बजे से। श्रोताओ, इस कार्यक्रम में आज का विषय श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार, विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़। सुनेगा जरूर कार्यक्रम और कार्यक्रम सुनने के दौरान आप अपने प्रश्न आज के हमारे अतिथि से भी पूछ सकेंगे। टेलीफोन नंबर है

नसीब फिल्म के लिए मोहम्मद रफी का ये स्वर था, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ये संगीत था। श्रोताओं, फिल्म संगीत चंबल चैनल से इस समय आप सुन रहे हैं। आपको जानकारी दे दें, सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत आप सुन सकेंगे 8:15 बजे से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज का विषय श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार पर आधारित है। आज हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार जांगिर। आप सभी श्रोता अपने प्रश्न भी इस कार्यक्रम में कर सकेंगे। प्रश्न करने के लिए स्टूडियो के टेलीफोन नंबर है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। सुनिएगा कार्यक्रम आपकी सेहत 8:15 बजे से 9 बजे तक। अब कार्यक्रम का अगला गीत।

हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर का ये स्वर श्रोताव था, साहिर लुधियानवी के शब्द थे और संगीत था रवि का। कार्यक्रम का यह है अगला गीत।

फिल्म गोपी से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें इस गीत के लिए थी, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने बोल दिए, संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

0: शागिर्द फिल्म से ये मधुर बोल मजरू सुल्तानपुरी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओ, फिल्म संगीत चंबल चैनल से आप सुन रहे थे।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: चंबल चैनल से श्रोताओं, हम बोल रहे हैं, आपने ट्यून किया FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 पर। 8:00 हैं अब, समाचार प्रभात दिल्ली से।
6: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
7: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
6: और लाइट बिल के
7: अब 0 रुपए कैसे दूं?
6: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
8: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर

0: govin. हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है that should be minimum 30 days with them and they are working on it and similarly for crude also we are working.
1: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
3: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप

0: में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की

0: करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुंकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में सिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान

0: विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओ, प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसे आपकी सेहत का है ख्याल। कार्यक्रम का नाम है आपकी सेहत। आज इस कार्यक्रम के लिए अतिथि हैं डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़ साहब और आज का विषय श्वसन रोग, कारण, बचाव और उपचार पर आधारित है। श्रोताओं, डॉक्टर साहब की वाणी हम आप तक पहुंचाएं, उसके पहले कार्यक्रम विधिवत रूप से यूं शुरू किया जाए।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
4: अब लेसिक लेजर से पाएं चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण,
3: आपके पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैम

0: कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, जापानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
1: जटिल भेंगापन एवं कालापानी जांच और ऑपरेशन सुविधा,
0: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेजिक लेजर सेंटर, तलवंडी, कोटा।
2: तो श्रोताओ, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बार डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत करते हैं जी। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे, उसके पहले आपके स्वागत के साथ हम आपका परिचय क्यों ना हम आप ही से जान लें
3: जी। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़ है। मैं मेडिकल कॉलेज कोटा में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन यानी कि श्वास रोग विभाग में कंसल्टेंट हूँ और प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा हूँ।
2: क्या बात है। और डॉक्टर साहब, आपका लगभग 15 वर्ष का अनुभव है
3: जी। जी,
2: और कोटा में आपको आए हुए लगभग 13 वर्ष हो गए हैं जी। क्या बात है, बड़ा लंबा अनुभव है आपका। और डॉक्टर साहब, आकाशवाणी आकर आप कैसा महसूस करते हैं हमें ये बताइए
3: जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पहले भी कई बार आकाशवाणी में आ चुका हूँ। यहाँ के श्रोताओं की जो कनेक्टिविटी है आकाशवाणी से बहुत ही अच्छी है और आप लोगों का जो संप्रेषण है वो भी बहुत ही बढ़िया है।
2: क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, श्वसन तंत्र का आपने जिक्र किया, आपके आप श्वास रोग विभाग में कार्यरत हैं। इंसानी जिस्म भी सांस लेता है और ये प्रकृति भी सांस लेती है, और अगर हम बीती रात की बात कहें तो प्रकृति ने सांस बड़ी जोर जोर से ली है डॉक्टर साहब, और इस सांस में जब दिक्कत आ जाती है तब बड़ी तकलीफ होती है डॉक्टर साहब, और शरीर बीमार पड़ जाता है अगर हम मानव शरीर की बात करें। डॉक्टर साहब, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से अंग हमारे शरीर के आते हैं
3: जी? श्वसन तंत्र हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है। ये नाक से शुरू होकर लंग्स में होते हुए श्वास की जो आखिरी नलियां हैं जिनको हम वायुकोष बोलते हैं
2: जी,
3: वहाँ पे खत्म होता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो है शरीर को ऑक्सीजन की सप्लाई देना। तो बाहरी वातावरण से हवा को अंदर लेकर ऑक्सीजन की जो शरीर की जरूरत होती है उसकी पूर्ति करते हैं, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये इसका मुख्य कार्य है
2: जी।
3: और इसी से पूरा शरीर अपना संचालित होता है।
2: बिल्कुल,
3: तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें फेफड़े, नाक, सांस की नलियां, वायु को सभी सम्मिलित हैं।
2: बिल्कुल, और ये कहा जाता है कि जब तक सांस है तब तक आस।
3: बिल्कुल, बिल्कुल,
2: क्योंकि बिना सांस के जीवन समाप्त।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: डॉक्टर साहब, आपके स्वागत के साथ आपने जो परिचय दिया अपना, तो हमारे श्रोता बिल्कुल अब तन्मय हो गए होंगे कि रेडियो को तरीके से सुना जाए, ध्यानपूर्वक सुना जाए, क्योंकि आपने बताया कि श्वास जैसी महत्वपूर्ण बात आज इस कार्यक्रम में की जा रही है। तो श्रोताओं, आपसे भी अगर डॉक्टर साहब से फोन करना चाहें, जानकारी लेना चाहें, डॉक्टर साहब अपने व्यस्ततम समय में से निकालकर आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो आए हैं, तो हम आपको स्टूडियो का टेलीफोन नंबर बता दें, 29-4-11-42, टेलीफोन नंबर 29-4-11-42, एसटीडी कोड है 0744। यदि आप मोबाइल से फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड लगाना जरूरी है। तो श्रोताओ, हम इंतजार करते हैं आपके फोन कॉल्स का और बातचीत करते हैं जारी डॉक्टर साहब से। तो मैं राजेश आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि श्वसन तंत्र आपका, जिस पर आपने स्टडी की है
3: जी,
2: लंबे समय से आपने इसके बारे में रोगियों को भी देखा है, किस किस तरह के रोग इस समय बहुत ज्यादा आपको देखने को मिले हैं डॉक्टर साहब
3: जी? श्वसन तंत्र जैसा मैंने बताया पूरा फेफड़ों में, नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक खत्म होता है। तो इस पूरे जो वायु मार्ग है इसमें कहीं पे भी किसी भी प्रकार की रुकावट या कोई डैमेज या कोई सूजन किसी प्रकार की होती है तो उससे श्वास लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। अब बीमारियों की अगर अपन बात करें तो जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है अस्थमा
2: जी।
3: अस्थमा भारत में बहुत ही कॉमन है। इसमें श्वास की नलियों में विभिन्न ट्रिगर्स, जो विभिन्न कारण होते हैं, उत्प्रेरक जो होते हैं, उसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है उनके संपर्क में आने पर
2: जी।
3: और स्वेलिंग आने से जो श्वास की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है
2: जी।
3: इसके साथ ही कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसको हम निमोनिया बोलते हैं, और ट्यूबोक्लोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिसको हम टीबी बोलते हैं, इससे भी श्वास की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद हम बात करें सीओपीडी नाम की एक बीमारी की
2: जी, जी, जी।
3: जिसको जो बुजुर्गों में बीड़ी पीने, धूम्रपान करने या जो धुएं के लगातार संपर्क में रहने की वजह से होता है वो, उसको हम सीओपीडी बोलते हैं। उसमें भी श्वास की जो नलियां हैं वो डैमेज होती है और

0: जो श्वास की लेने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है।
1: जी
0: इसके अलावा और भी कई बीमारियां हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, ये एक बहुत थोड़ी सी अनकॉमन बीमारी है, बट अभी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका भी। और इसमें क्या है, सांस की नलियों की जो दीवार होती है, जो बीच में इंटरस्टिशियम जिसको हम बोलते हैं, वो ख़राब हो जाती है, और कई पेशेंट में ये प्रोग्रेसिव जानलेवा भी होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने ये सुंदर परिचय दिया इन खतरनाक बीमारियों का। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि हमारे श्रोता कार्यक्रम सुन रहे हैं तो लाजमी है वो फोन भी करेंगे, तो एक श्रोता हमसे जुड़े हैं।
0: जी
1: डॉक्टर साहब
0: जी
1: बात करें।
0: जी
1: नमस्कार।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार साहब, नाम बताएंगे अपना?
2: मैं आपका नियमित श्रोता राकेश बात कर रहा हूँ।
1: राकेश जी,
2: जी जी
1: शिमला से।
2: जी जी शिमला से।
1: आहा, अभी मौसम कैसा है साहब शिमला में?
2: अभी बारिश हो रही थी, अभी बारिश हो रही है।
1: और आपने कुछ कुछ बूंदाबांदी यहाँ भी पहुँचा दी है।
2: बिल्कुल
1: जी। राकेश जी अपना प्रश्न कीजिए।
2: तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: जी मेरा आपसे प्रश्न है, जैसे कि किसी का जो है शुगर हो जाता है या बीपी बढ़ जाता है, तो इससे आयुर्वेद से किस तरह से इलाज हो सकता है?
1: नहीं जी, आज आयुर्वेद नहीं है आज का विषय। राकेश जी शायद आप विषय सुन नहीं पाए। आज श्वास रोग पर आधारित है।
2: हाँ,
1: आज का
2: सांस रोग। हाँ, तो ऐसे में सांस रोग की जैसे कि जिनको सांस की समस्या आ जाती है, जैसे कि उनको कई बार बीपी और ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो उनको तीन तीन बीमारी होती है, तो सांस ऐसे में उनको सांस लेने में तकलीफ।
1: आपकी नजर में कोई इस तरह का व्यक्ति है?
2: ये हमारे गांव में कई
1: अच्छा सुनिए सुनिए डॉक्टर साहब से।
0: जी देखिए, कई जो हार्ट के पेशेंट होते हैं या ब्लड प्रेशर की जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं, उनमें भी थोड़ा सा चलने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलने की समस्या हो सकती है, पर ये प्राइमरीली फेफड़ों की बीमारी नहीं होती है। इसमें जो रक्त का प्रवाह है उसकी वजह से ये होता है। तो ऐसे में अगर कोई बीपी से ग्रसित है या हार्ट की बीमारी से ग्रसित है, तो उसको उस बीमारी का उचित उपचार लेकर अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहिए। हार्ट की जो पंपिंग क्षमता है उसके लिए जो नियमित दवाएं हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रेस्क्राइब की है, जो हृदय रोग विशेषज्ञ ने दिया है, वो उसको लेना चाहिए।
1: जी राकेश जी,
2: और दूसरा सवाल भी रही है, जैसे कि आजकल उनको भी सांस ज्यादा चढ़ जाती है जो पहाड़ों में चलती है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि जैसे चढ़ाई चढ़ते हैं तो चढ़ाई में भी नहीं वो बंदे जो चढ़ पाते।
1: चढ़ने के दौरान श्वास की समस्या?
0: जी
1: श्वास फूलती है।
0: ये एक अलग समस्या है, ये फिजियोलॉजिकल है। अगर कोई व्यक्ति पहाड़ों में नहीं रहता है, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, यदि वो एकदम से पूरा पहाड़ चढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पहाड़ चढ़ते हैं, तो उनमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, उसमें सांस की भी परेशानी हो सकती है और भी कई दिक्कतें आ सकती है।
1: जी।
0: पर जो पहाड़ों पे नियमित रूप से रहते हैं, वहाँ पर लोग रेगुलरली वहीं रहते हैं, तो वो उस जगह से अडेप्ट होते हैं और वो आराम से वो आराम से उस पर चढ़ पाते हैं।
1: जी
2: जी
1: ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपने आकाशवाणी में अपना समय दिया, कार्यक्रम सुना। सुनते रहेगा चंबल चैनल का प्रसारण। डॉक्टर साहब, ये जो स्थिति है सांस फूलना, क्या ये हृदय की बीमारी और श्वसन बीमारी दोनों का एक संकेत हो सकती है?
0: जी देखिए, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। आमतौर पे क्या है कि किसी भी तरह की सांस की बीमारी को लोग फेफड़ों की बीमारी समझ लेते हैं।
1: जी।
0: पर श्वास फूलना केवल फेफड़ों की बीमारी में नहीं होता, कई बार रक्त के प्रवाह को जो चीजें प्रभावित करती है उससे भी सांस की समस्या हो सकती है, जैसे कि हृदय रोग। हृदय रोग में व्यक्ति को चलने से सांस में फूलने में दिक्कत आती है, सांस फूलती है उसकी। और कई बार ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनमें भी चलने से सांस फूल जाता है। और कई बार खून की कमी कई लोगों को होती है, जो अत्यधिक जब खून की कमी होती है तो उसमें भी सांस की समस्या हो जाती है। कुछ जो किडनी के रोगी हैं, जिनका किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो उनमें भी सांस की समस्या हो जाती है। तो केवल फेफड़ों में नहीं है, और भी कई कारण है सांस फूलने के।
1: जी मतलब लक्षण एक और उसके कारण।
0: हाँ, कारण अलग अलग है। पहले सबसे पहले हमें कारण को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कारण क्या है, उस कारण के अनुसार ही फिर उसका निदान और उपचार होता है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आपने सबसे पहले जो अस्थमा के बारे में बताया था कि वायु मार्ग में जरा स्वेलिंग जब आ जाती है, तो इसका कारण क्या हो सकता है डॉक्टर साहब?
0: जी देखिए, अपने जो फेफड़े हैं वो बाहरी वातावरण से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं।
1: जी जी।
0: जो जिस एनवायरनमेंट में, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो डायरेक्ट हवा अंदर फेफड़ों में जा रही है।
1: जी।
0: अब वो सामान्य हवा भी हो सकती है, पोल्यूटेड हवा भी हो सकती है, धुआं भी हो सकता है, तेज खुशबू भी हो सकती है, उसमें पराकण भी हो सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जो जैसे फंगस के स्पोर हैं या कोई फर वाले जानवर के फर हैं, धूल है, मतलब किसी भी तरह की जो एनवायरनमेंट में जो उपलब्ध वो है, कारक हैं,
1: जी
0: वो सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं।

0: सांस की नली में पहुंचते हैं, और कुछ लोगों के लिए जिनके लंग्स सेंसिटिव हैं जेनेटिकली, जिनकी सांस की नलियां थोड़ी संवेदनशील है, उनमें ट्रिगर का काम करते हैं, और ट्रिगर का काम करने की वजह से उनको एलर्जी पैदा होती है और सांस की नलियों में स्वेलिंग आ जाती है, वो संकुचित हो जाती है, और संकुचित होते ही उनको लक्षण आने लगते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलरली जब होता है जब उनको उस एलर्जन से एक्सपोज होते हैं, मतलब उससे जब उनके संपर्क में आते हैं तभी उनको ऐसी समस्या होती है
1: जी।
0: और कुछ लोगों को हमेशा बनी रहती है।
1: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़े हैं
0: जी।
1: नमस्कार।
2: राम राम साहब।
1: राम राम जी।
2: सर मैं डॉक्टर साहब को राम राम।
0: हाँ राम राम
2: सर, मैं एक बात
1: बताऊं सर। उसे पहले नाम बताओ ना आपको।
2: मेरा नाम बाबूलाल जी।
1: बाबूलाल जी। हाँ,
2: जैसे आपने कबूतर लिए थे सर।
0: एक
2: कबूतर का संपर्क में आवाज को सांस की बीमारी होती, मैंने सुनी थी एक दिन रेडियो में।
0: हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है जी। कबूतरों के जो पंख होते हैं और उनकी जो बीट होती है उसमें एक प्रकार का एंटीजन होता है जो श्वास की नलियों में जाके, और कुछ लोगों में, हर व्यक्ति को नहीं होता, बट जो बीमारी होती है उसको हाइपरसेंसिटिव निमोनाइटिस बोलते हैं, और ये एक गंभीर बीमारी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि शुरू में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज का एक टाइप है ये। तो ये किसी किसी व्यक्ति में जिनके लंग सेंसिटिव हैं उनमें ये रोग घर कर जाता है, और किसी में ये जीवन पर्यंत भी रह सकता है, और ये कभी कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है।
2: तो
0: हाँ, तो मेरी ये सलाह है कि कबूतरों के संपर्क में आने से बचें। हाँ, तो इसको थोड़ा सा
1: उसका
0: उपचार करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा।
1: उसका उपाय करें कि वो कई लोग आजकल कबूतरों को न आने के लिए, उनको रोकने के लिए जालियां लगा देते हैं, तो आप ऐसा कुछ उपाय करें। बाबूलाल जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: धनपुरा गाँव से बोल रहे हैं, बाबूलाल गुर्जर।
1: धनपुरा से जी, जी। कार्यक्रम कैसे लगते हैं रेडियो के आपको?
2: बहुत बढ़िया लगे सामान।
1: चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपने फोन किया जी। जी डॉक्टर साहब, ये महत्व की आपने एक बात बताई कि कबूतरों के लिए, वैसे चंबल चैनल पर इस तरह का प्रसारण होता रहता है और ये श्रोता उसी के प्रमाण के स्वरूप हमारे सामने आए थे।
0: बिल्कुल
1: जी डॉक्टर साहब, जब आपने बताया कि जब हम प्रकृति से सीधे जुड़े रहते हैं श्वास के लिए
0: जी,
1: और सीधे हमारे फेफड़ों तक वो श्वास पहुंचती है, तो ऐसा कुछ है कि इसका फिल्ट्रेशन हो नेचुरल तरीके से?
0: जी, जो सेंसिटिव आमतौर पे जो नॉर्मल पर्सन है उसको तो इस तरह के कोई बचाव की आवश्यकता नहीं रहती है
1: जी,
0: पर जो संवेदनशील है, जिनके लंग्स में पहले से कोई प्रॉब्लम है या जिनको पता है कि हाँ मुझे एलर्जी है, तो वो अगर मास्क पहने
1: जी
0: तो उसमें काफी हद तक बचाव हो सकता है।
1: कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मास्क पहनने से हमें श्वास लेने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ता है।
0: हाँ, वो थोड़ा सा शुरू में ऐसा मतलब आदत पड़ने में दिक्कत आती है, बट जैसे हम लोग भी हमारे ओपीडीज में पहनते ही हैं और रेगुलर पहनते हैं, कोविड में भी सब लोगों ने पहना ही है
1: जी,
0: तो वो धीरे धीरे थोड़ा हैबिट हो जाती है उसकी
1: जी। हमसे एक श्रोता जुड़े हैं, लेकिन श्रोता से आग्रह करेंगे कि एक अंतराल हम लेते हैं, उसके बाद फोन कॉल हम रिसीव करेंगे।
3: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
4: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में, एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार, लेसिक लेजर से पाएं चश्मे से आजादी और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा।
3: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार,
4: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
4: फोन नंबर 9351412449।
1: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, ये कार्यक्रम चंबल चैनल का बहुत ही मशहूर कार्यक्रम में से है कि चंबल चैनल स्वास्थ्य का सभी का बहुत ख्याल रखता है, और श्रोता भी इसका प्रमाण है कि हमसे जुड़ते हैं जी। और आप सबका, आप जब चिकित्सक महोदय हैं उनका भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि चंबल चैनल के आग्रह पर आप आ जाते हैं
0: जी।
1: नमस्कार। हो, हम यही गुजारिश करेंगे कि जो भी श्रोता हमें फोन करें इंतजार जरूर करें, जिससे कि हम आपको डॉक्टर साहब तक पहुंचा दें। नमस्कार।
5: नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार।
5: हाँ सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ सर। मैं काफी लंबे टाइम से ये अस्थमेटिक जैसे रोटोकेप है, एंटी एलर्जी वाले ले रहा हूँ
0: जी जी जी।
5: सर मेरा क्वेश्चन ये रहता है कि ऐसी कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिससे कि ये स्वास्थ्य की नली चिगड़े नहीं।
1: संतोष जी, बोल कहाँ से रहे हैं आप?
5: मैं सर बोल रहा हूँ शेखावटी से बोल रहा।
1: अच्छा, शेखावटी से जी
0: जी। देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद को

0: स्कैन करना पड़ेगा कि किस किस चीज़ के संपर्क में आने पे आपको समस्या बढ़ती हुई महसूस हो रही है। जैसे कई लोगों को धुएं के संपर्क में आने पे बढ़ रही है, किसी को धूल के संपर्क में आने पे बढ़ रही है, तो ये आपको खुद को एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आमतौर पे जो श्वास की नली में जाने वाली चीज़ें होती है, जैसे धूल है, धुआं है, तेज़ खुशबू है, परागकण है, फर है, या मौसम का परिवर्तन है, इस तरह के जो ट्रिगर्स होते हैं, जो कॉमन ट्रिगर्स हैं, उनको आप अवॉइड करें। और कहीं पे भी आपको इस तरह की जगह पर जाना पड़े, जैसे धूल भरी जगह पे जा रहे हैं या डस्टी एनवायरनमेंट में जा रहे हैं या कहीं धुएं वाली जगह पे जा रहे हैं, तो आप मास्क का उपयोग कर सकते हैं। और जो अपनी दवाइयाँ हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि मैं इनहेलर लेता हूँ, रोटा कैप्स लेता हूँ, तो उन दवाइयों की जो मात्रा है वो अपने चिकित्सक की सलाह पर ही कम ज़्यादा करें।
1: तो जैसे ये बीच में ये अगर नहीं लेते हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? जैसे ये पोटेंसी बनी रहनी चाहिए।
0: जी देखिए, इसमें निर्भर करता है कि आपकी फेफड़ों की क्षमता क्या है और आपकी सांस की नलियों की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। डॉक्टर उसी के अनुसार इसकी डोज को निर्धारित करते हैं और उसके अनुसार ही आपको लेना चाहिए।
1: जैसे वॉकिंग है, योगा वगैरह करने से इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है सर ये?
0: जी, वॉकिंग और योगा करना बहुत ही अच्छा व्यायाम है, बट इससे सांस की नलियों की जो अवरोध है वो खत्म नहीं हो पाएगा। उससे खाली आपको सेंस ऑफ वेलबींग डेवलप होगा और अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो आपको स्वस्थ रहने में सहायक होगा।
1: तो इससे मतलब ये इम्प्रूवमेंट जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा स्वस्थ नली में, जैसे योगा वगैरह करते हैं तो?
0: जी, अगर अगर आ, मैं बता रहा हूँ ना, आपको सेंस ऑफ वेलबींग डेवलप होगा, इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आपकी जो सांस की नलियां हैं नॉर्मल हो सकती है अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो तो, बट आपको मेडिसिन बराबर लेनी चाहिए।
2: हाँ जी संतोष जी, डॉक्टर साहब की यही सलाह है कि अगर डॉक्टर साहब को कुछ प्रिस्क्राइब कर दें कुछ मेडिसिन्स, तो उनको उन्हीं के नियमानुसार, उन्हीं के निर्देशानुसार उसको निरंतर लेना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, कुछ लोग घटा बढ़ा लेते हैं
0: जी,
2: अपनी डोजेस को,
0: जी,
2: तो वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए।
0: हाँ जी बिल्कुल, इनहेलर को लेके एक आम भ्रांति है कि इनहेलर अगर हम लगातार लेंगे तो इसकी आदत बन जाएगी।
2: जी जी जी
0: तो ये एक बहुत गलत भ्रांति है। इनहेलर से कोई आदत नहीं पड़ती है। इनहेलर की डोज डॉक्टर आपके जो श्वास की नलियों का अवरोध है उसको नाप कर उसके अनुसार ही दवा डोज प्रेस्क्राइब करते हैं।
2: जी क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि ये भ्रांति है, इसका मतलब मरीज आपको जरूर कहते हैं कि जी इसको रोज लें
0: हाँ,
2: या कभी कभी लें।
0: वो अक्सर मरीज ये करते हैं, वो जैसे थोड़ा सा सिम्टोमेटिक रिलीफ उनको मिलता है, लक्षणों में जैसे आराम मिलने लगता है
2: जी,
0: तो उसको बंद कर देते हैं या अपनी मर्जी से कम कर देते हैं
2: जी।
0: तो ये फिर धीरे धीरे उनकी सांस की नलियों की जो कैपेसिटी है, जो फेफड़ों की क्षमता है, उसको प्रभावित कर सकता है और कम हो सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: हाँ जी,
0: हाँ
2: जी।
0: नमस्कार,
2: नाम बताएं साहब।
3: मैं द्वारिकालाल बोल रहा हूँ, ग्राम कुलुंदा से।
2: जी द्वारिका जी, कहाँ है ये आपका गांव?
3: हेलो।
2: हाँ जी, कहाँ है आपका ये गांव?
3: कुलुंदा है।
2: अच्छा
3: बूंदी से।
2: अच्छा, बूंदी में। जी जी जी, कीजिए अपना प्रश्न।
3: मेरा सवाल है सर जी, अपन को ये गिर्द कम क्यों हो रहे
2: हैं जी?
3: ये गिर्द है, गिर्द
2: गिर्द
3: ये कम क्यों होते जा रहे, कारण क्या है?
2: गिर्द क्या साहब?
3: वो कावड़े
2: डॉक्टर साहब, ये कुछ
3: गिर्द गिर्द
2: नहीं, आपको तकलीफ क्या होती है ये बताएं आप।
3: नहीं, जैसे जानवर कम होते हैं ना, जैसे जानवर खा जाता है, कहीं गंदगी साफ हो जाती है।
2: हाँ अच्छा, गिद्ध,
0: ये शायद गिद्ध के बारे
2: गिद्ध,
0: में
2: गिद्ध जी जी गिद्ध। हाँ तो फिर
3: ये कम क्यों हो रही,
0: ये विषय थोड़ा,
2: तो साहब ये विषय तो पर्यावरण का है ना, और हम श्वास संबंधी बात कर रहे हैं।
3: 40 साल का हूँ, पहली खूब थे, अब खूब कम हो रही, कारण क्या है इसका?
2: हाँ जी हाँ जी, इसका कारण तो हमें देखना पड़ेगा। और वैसे इसका कारण सामान्य तौर पर हम आपको बता दें कि पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जब हम करते हैं तब वो अनेक चक्रों में होते हुए गिद्ध तक पहुंचते हैं और उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। वैसे हम श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि आज का जो विषय है उसके आधार पर ही हमसे प्रश्न करें। आज का विषय श्वसन रोग कारण बचाव और उपचार पर आधारित है और आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनोद कुमार जांगिर साहब, प्रोफेसर एंड हेड हैं श्वास रोग विभाग मेडिकल कॉलेज कोटा में, और लंबे वर्षों का अपना अनुभव आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ आज साझा कर रहे हैं। नमस्कार
4: जी। सर जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को मेरा
0: नमस्कार। नमस्कार।
4: और डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल था कि एक्चुअली मैं सर कहीं भी जाता हूँ तो मुझे छींकें आने लगती हैं सर
0: जी,
4: तो इसके लिए क्या रहेगा?

0: सर।
1: डॉक्टर साहब आपको किस नाम से पुकारेंगे?
0: शिवा लोहट सर।
1: शिवा लोहट जी।
2: जी अगर आपको अक्सर छींकें आया करती है तो ये आपकी नाक की एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। और ये भी जैसे मैंने पहले भी बताया, ये उसी तरह की समस्या है जैसे सांस की नलियों में सूजन आती है, उसी तरह से नाक की जो झिल्ली होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, उसमें एलर्जी की जो पैदा करने वाले कारक हैं उनके संपर्क में आने पे उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इस तरह के छींकें आना, नाक से पानी बहना, इस तरह के लक्षण आते हैं।
0: जी।
2: तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद को कि आपको किस वातावरण में जाने पर छींकें ज़्यादा आती है या किस मौसम में ज़्यादा छींकें आती है। और
0: शहर में धूल जाना होती
2: हाँ,
0: है
2: हाँ, तो हाँ तो इससे एक तो आपको बचाव रखना है जितना हो सके उतना। जैसे आप अपना काम जो भी करते हैं अगर मास्क पहनेंगे तो आपको शायद लक्षण कम होंगे। इसके अलावा आप
0: हाँ मास्क में यूज करता हूँ।
2: हाँ इसके अलावा अगर आपको उससे भी आपको तकलीफ हो रही है तो आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करके और इसके लिए कुछ नेजल स्प्रे या एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं वो थोड़ा लंबे समय तक आप इस्तेमाल करें तो आपको अच्छे राहत मिलेगी।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: और
0: सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों की समस्या के लिए। ये कार्यक्रम आप निरंतर चला रहे हैं इसके लिए आपका स्मरणीय कोटा का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शुक्रिया शिवा लोहट जी, आपकी ये जो बातें हैं चंबल चैनल के लिए सराहनीय हैं और एक हमें हौसला भी देती हैं। बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। श्रोताओं कार्यक्रम में टेलीफोन करने के लिए, डॉक्टर साहब से बात करने के लिए टेलीफोन नंबर है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। नमस्कार।
3: नमस्कार, मैं उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू राजस्थान से नाथूलाल कुमावत बोल रहा हूँ, उम्र 80 साल।
1: जी
3: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: जी नमस्कार नाथूलाल जी। नमस्कार
1: नाथूलाल जी, आपकी जो उम्र है वो प्रेरक है लेकिन अभी बहुत सारा आपका जीवन बाकी है, उसे बहुत अच्छे से गुजारिएगा। आज के लिए प्रश्न आपका क्या है?
3: मेरा प्रश्न ये है कि मेरी पिंडलियां दुखती है, दूसरी बात मैं चलता हूँ तब हाँफ यानी सांस टाइप होता
1: है। जी हाँफ जाते हैं, हाँफ जाते हैं। जी
3: अच्छा, कुछ तेज चलता हूँ तो भी होता है और आराम करता हूँ तो कुछ नहीं।
1: इससे पहले कि डॉक्टर साहब आपसे सीधे बात करें, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा साहब, आपका जो दिनचर्या है वो क्या रहती है, क्या उसमें व्यायाम भी शामिल है?
3: व्यायाम के हिसाब से तो पेड़ पौधों की साल संभाल करता हूँ, छत के ऊपर जाकर
1: क्या बात है
3: चढ़ता हूँ रोजाना।
1: जी बड़ा नेक काम करते हैं डॉक्टर साहब।
2: जी सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि कभी आपने लंबे समय तक धूम्रपान किया है क्या?
3: कभी नहीं किया।
2: अच्छा धूम्रपान कभी नहीं किया, तो अच्छा। दूसरा सवाल ये कि आपने कोई बीपी की या हार्ट की या शुगर की ये किसी प्रकार की कोई दवा चल रही है आपकी?
3: बीपी की गोली चल रही है एक।
2: अच्छा तो बीपी की चल रही है और धूम्रपान आपने कभी नहीं किया है?
3: कभी नहीं।
2: तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो ब्लड को प्रवाह को रोकने वाली चीजें हैं उसकी वजह से शायद आपका सांस फूल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले या तो आप किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके और अपने हार्ट का चेकअप कराएं।
1: जी
2: और साथ के साथ
3: किस तरह की जांच हो, जांच किस तरह की हो, कौन सी जांच?
2: इसमें एक 2D इको नाम से जांच होती है, इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं, जैसे सोनोग्राफी होती है पेट की वैसे हार्ट की एक 2D इको बोलते हैं उसको हम। वो आपका डॉक्टर सलाह देगा आपको, उसकी सलाह पर ये जांच कराएं। और आपका ब्लड प्रेशर अगर नियंत्रित रहता है तो उसकी दवा भी आप रेगुलर लेते रहें।
3: वो तो सही है।
2: हाँ और अगर ये सब जांचें नॉर्मल आती है तो फिर आप फेफड़ों की जो कैपेसिटी की जांच करने के लिए हम स्पायरोमेट्री की जांच कराते हैं, वो भी आप करा सकते हैं।
3: ठीक, ये जांच के लिए पूछ रहा हूँ।
2: जी जी
1: बहुत धन्यवाद नाथूलाल जी, आपने एक सजग श्रोता होने का परिचय दिया है कि अपने स्वास्थ्य के लिए आपने आकाशवाणी में डॉक्टर्स के इस कार्यक्रम आपकी सेहत में फोन किया। डॉक्टर साहब कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हम आगे बढ़कर उससे निमंत्रण देते हैं, क्या COPD उसमें से एक है?
2: बिल्कुल, COPD एक खुद के द्वारा पैदा की हुई बीमारी है। अपने जो फेफड़े हैं नेचुरली बहुत स्ट्रांग होते हैं और पूरे जीवन पर्यंत वो अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु धूम्रपान या लगातार धुएं के संपर्क में, चाहे वो बीड़ी का धुआं हो, चाहे वो चिलम हुक्का हो, चाहे वो सिगरेट हो, या फिर कई जो ग्रामीण परिवेश में महिलाएं धुएं का इस्तेमाल करती है चूल्हे में, अंगीठी या चूल्हे, तो उसके लगातार संपर्क में आने से भी ये COPD नाम की बीमारी हो जाती है। तो इस बीमारी में श्वास

0: की नलियां अवरोध ही नहीं, उनमें डैमेज भी होने लगता है और समय के साथ धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होती है, कई बार बढ़ जाती है।
1: जी
0: तो सबसे पहले तो हमें जो जो चीज़ परेशान कर रही है, जैसे धुआं है, तो उसको हटाना है। धूम्रपान हो तो तुरंत बंद करना है। और डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दी जाने वाली जो इनहेलर्स हैं,
1: जी
0: इसमें इनहेलर हम प्रिस्क्राइब करते हैं,
1: जी
0: इनहेलर
1: जी
0: ही इसका मेन उपचार है।
1: क्योंकि श्वास के माध्यम
0: हाँ
1: से ही
0: हाँ
1: होता है
0: हाँ
1: और इनहेलर भी श्वास में काम
0: जी जी
1: आता है। जी
0: बिल्कुल, वो डायरेक्ट सांस की नली में
1: डायरेक्ट
0: पहुंचता है
1: जी
0: और नुकसान भी नहीं करता है, इसलिए उसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर
0: जी
1: साहब, डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ में तो ये है कि हम अपने शौक को गलत शौक के रास्ते में पड़ जाते हैं, जैसे
0: जी
1: कि आपने बताया कि धूम्रपान करना,
0: हाँ
1: और कुछ तो मजबूरियां हैं जैसे ग्रामीण इलाकों में
0: हाँ जी
1: जो
0: हाँ
1: महिलाएं भोजन
0: हाँ
1: तैयार करती हैं
0: हाँ
1: हमारे लिए,
0: हाँ
1: तो उनके लिए हमें उपाय करना चाहिए कि
0: हाँ
1: वो उस धुएं से मुक्त हो जाएं।
0: बिल्कुल
1: जी एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। डॉक्टर साहब
0: जी।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
1: जी साहब,
0: नमस्कार,
1: आपके धैर्य को नमन है साहब, आपने इंतजार किया। नाम
2: बहुत
1: बताएंगे?
2: बहुत आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है।
1: जी साहब नाम बताएंगे
2: मैं
1: अपना।
2: काफी देर से प्रयास कर रहा था। मैं कसार गांव है
1: जी
2: कोटा के पास,
1: जी
2: यहाँ से बोल रहा था सर।
1: आपका
2: जी
1: नाम?
2: मेरा नाम दिलीप मेवाड़ा है।
1: दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका, कीजिए अपना प्रश्न।
2: डॉक्टर साहब नमस्ते।
0: जी नमस्ते नमस्ते
2: सर, कई बार नाक जाम हो जाती है, एक नाक जाम हो जाती है, फिर दूसरी बार उसको कैसे कैसे करते हैं भाप भाप देके, तो फिर दोबारा फिर नाक जाम हो जाती है, गले में खराश सी आ जाती है।
0: अच्छा
1: सुनिए।
2: इसके लिए सर एक बार आपको दिखाया भी था सर, मगर
0: अच्छा
2: दवाई लेते तो ठीक हो जाती है,
1: जी
2: इसके बाद वापिस वही समस्या हो जाती है।
1: सुनिए।
0: हाँ, तो जो आपके लक्षण हैं वो एलर्जी के ही प्रतीत हो रहे हैं, जैसे अब मैंने पहले भी एक श्रोता को जवाब दिया, ये एलर्जी राइनाइटिस है इनको। तो एलर्जी राइनाइटिस मैंने बताया ना, ट्रिगर जो कारक होते हैं एलर्जी पैदा करने
1: तब
0: वाले, उनके
1: ट्रिगर हो
0: संपर्क
1: जाता
0: में
1: है।
0: आने
1: जी
0: पर ये परेशानी होगी होगी इनको,
1: जी जी
0: जब भी संपर्क में आएंगे तब परेशानी होगी, तो इसमें नियमित उपचार की जरूरत होती है। तो आपको जो भी नेजल स्प्रे या एंटीलर्जिक दवाएं जो प्रिस्क्राइब की गई है, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित रूप से इस्तेमाल करें, और जो एलर्जी पैदा करने वाले कारक हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें।
2: मैंने पहले MBS में दिखाया था, जो मेरा
0: जी
2: नाक का ऑपरेशन भी कर दिया, उन्होंने कहा कि आपकी हड्डी बढ़ रही है।
0: हाँ, नहीं, वो जब लंबे समय तक एलर्जी बनी रहती है तो नाक की हड्डी बढ़ भी जाती है, कई लोगों को डेविटेड नेजल सेप्टम जो टेढ़ी भी हो जाती है, तो
1: हो
0: उसका इलाज फिर ऑपरेशन से होता है।
1: जी,
0: परंतु एलर्जी
2: एक बार
0: एक
2: मैंने आराम
0: जेनेटिक
2: किया।
0: जेनेटिक फिनोमिना है, ये अनुवांशिकता से मिलता है, तो इसको अब हम बदल नहीं सकते,
1: जी
0: ये जीवन पर्यंत रहता है, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: कभी ये बिना दवाइयों के कंट्रोल रहता है, और कभी इसमें लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ती है।
1: जी ठीक है दिलीप साहब।
2: सर नमस्ते।
1: जी जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातें तमाम श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्व की हैं। डॉक्टर साहब, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का भी जिक्र आपने किया था,
0: जी
1: क्योंकि कार्यक्रम अपनी वक्त जो है निकल रहा है, कार्यक्रम
0: जी
1: समाप्त होने की
0: जी
1: ओर है,
0: जी
1: तो इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो किस तरह से इसके प्रति सजग रहें।
0: जी निमोनिया हम फेफड़ों में इन्फेक्शन को बोलते हैं, फेफड़ों में
1: जी
0: इन्फेक्शन
1: बिल्कुल
0: होके और जो फेफड़ों का एक पार्ट है वो सॉलिड हो जाता है, उसको हम निमोनिया बोलते हैं। अब निमोनिया बैक्टीरियल भी हो सकता है, यानी कि जो सामान्य जीवाणु होते हैं जो वातावरण में रहते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो भी हो सकता है, और निमोनिया वायरल भी हो सकता है, जैसे हम कोरोना में देखा, और भी कई स्वाइन फ्लू के जो वायरस होते हैं
1: जी
0: उनमें
1: जी
0: देखा। तो निमोनिया के बहुत प्रकार होते हैं अलग अलग तरह के, उस प्रकार के अनुसार ही हम लोग उसका उपचार निर्धारित करते हैं कि निमोनिया किस प्रकार का होता है।
1: जी
0: एक बच्चों में होता है कि बच्चे कई बार जैसे अस्थमा का अटैक आता है, तो ग्रामीण परिवेश में लोग उसको निमोनिया समझ लेते हैं,
1: जी
0: पर वो अस्थमा के अटैक होते हैं आमतौर पे, तो उसमें सांस की नलियों में सीटी की आवाज़ आना, खांसी चलना, सांस फूलना, इस तरह के लक्षण बच्चों में आते हैं।
1: जी जी
0: तो कई बार तो निमोनिया होता है, और कई बार वो निमोनिया नहीं होता है, वो अस्थमा के अटैक होते हैं, तो उसमें इनहेलर लेना प्रभावी रहता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि फेफड़ों का एक हिस्सा सॉलिड हो
0: हाँ
1: जाता है,
0: सॉलिड हो जाता
1: डॉक्टर
0: है।
1: साहब उसकी रिकवरी की कोई
0: हाँ
1: गुंजाइश होती
0: उसके
1: है?
0: उसमें जैसा मैंने बताया कि उसकी पहले हम इटोलॉजी डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार का निमोनिया है, ये
1: जी
0: वायरल है, बैक्टीरियल है, फंगल है, या टीबी का निमोनिया है, तो उसकी इटोलॉजी डिसाइड करने के बाद हम उसका उपचार करते हैं। तो अगर बैक्टीरियल है तो उसमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, और आमतौर पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, और एंटीबायोटिक से पेशेंट पूरी तरह से रिकवर हो जाता है,
1: जी
0: परंतु इसके लक्षण पहचानना आवश्यक है।
1: हाँ
0: इसमें खांसी चलेगी, बुखार आएगा, तेज बुखार भी आ सकता है, हल्का बुखार भी आ सकता है, और सांस लेने में तकलीफ भी आ सकती है,
1: जी
0: और खांसी के साथ आमतौर पे जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसमें बलगम जरूर आता है, और कई बार बलगम के साथ खून भी आ सकता है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप अपनी यूनिट के हेड हैं,
0: जी

0: ऐसे में जैसे किसी को अगर पर्टिकुलर कोई तकलीफ है और उन्हें ये जानकारी नहीं है कि किस डॉक्टर को दिखाना है, तो अस्पतालों में क्या ये व्यवस्था रहती है कि काउंटर पर ही जाकर, रिसेप्शन पर ही जाकर
1: बिल्कुल,
0: वो उन्हें डाइवर्ट कर दें?
1: बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज में पूरी व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज में जैसे पेशेंट काउंटर पर पहुंचता है तो या तो वो खुद बता देता है कि मुझे उनको दिखाना है, उस कमरे में दिखाना है। अगर वो अवेयर नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो वो अपने लक्षण बताता है, लक्षण के अनुसार ही फिर उसको जो काउंटर पे बैठा व्यक्ति है वो गाइड करता है कि आपको इस कमरा नंबर में फलाने डॉक्टर साहब क्या ओपीडी है, वहाँ दिखाना है।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, नमस्कार।
2: हेलो राजेश सर, आपको और मेहमान डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार साहब, नमस्कार।
2: बाबूराम जयपाल, गांव डांगरी, जिला जैसलमेर।
0: क्या बात है साहब, आपको भी आपके धैर्य के लिए नमन करेंगे हम।
2: धन्यवाद
0: जी, कीजिए अपना प्रश्न।
2: मेरा प्रश्न है कि मतलब जैसे बुजुर्ग लोग है, वो फ्रिज में रखी बोतल का पानी पी सकते हैं, मतलब वो जो अस्थमा रोगी है वो?
1: जी, बहुत ज्यादा जो ठंडी चीजें हैं उनको अस्थमा रोगी को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हैं और ठंड से भी बचाव रखना है, कूलर के बिल्कुल आगे नहीं सोना है, ये कॉमन ट्रिगर्स हैं। क्योंकि ठंडी चीज पीने से कई बार क्या है कि गले में इन्फेक्शन होके और वो ट्रिगर का काम कर सकता है
0: जी।
1: तो ठंडी चीज जो सेंसिटिव लोग हैं, अस्थमा के रोगी है, उनको अवॉइड करना चाहिए।
2: धन्यवाद,
0: ठीक है सब। और आपका भी तो धन्यवाद देंगे बाबूलाल जी, हम इतनी दूर से आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब, हम जो बात कर रहे थे और जो प्रमुख कारण उनके बारे में आपने बताया और उसमें जो अनकॉमन चीजें हैं, जैसे आपने एक प्रश्न पर बताया कि कबूतरों से हमें दूर रहना चाहिए, इस तरह के जो उनके परागकण होते हैं, कुछ फफूंदे होती हैं, इस तरह की कोई और ऐसी चीजें जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए, खासतौर पर जिन्हें इस तरह की संकेत आ रहे हों?
1: जी देखिए, ये कॉमन जो चीजें हैं जैसे धूल है, धुआं है, फंगस है, परागकण है, इनसे तो जो सेंसिटिव लोग हैं उनको दूर रहना ही है। कुछ लोगों में ऑक्यूपेशनल भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कई फैक्ट्री के वर्कर हैं या कोई ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे हैं, अब उनको वो अपनी जॉब चेंज कर नहीं सकते, तो उनको वहीं पे खड़े रहना है, तो उन लोगों में भी इस तरह की समस्याएं होती है। तो कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे केमिकल्स एक्सपोज होते हैं, और कई जैसे खान के मजदूर हैं, वो पत्थर की खान में काम करते हैं या क्रेशर पे काम करते हैं, वहाँ पे डस्ट उड़ती है, तो ऐसे लोगों में जब वो काम पे जाते हैं तब उनको लक्षण हो जाते हैं, तो उनको या तो मास्क पहने
0: जी,
1: या फिर अपना जो ऑक्यूपेशन है वो थोड़ा सा उनको ऐसी जगह पे करना पड़ेगा जहाँ पे वो एक्सपोज ना हो इन चीजों से।
0: बिल्कुल, एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, नमस्कार।
3: नमस्कार
0: जी साहब, नाम बताएं।
3: अर्जुन दानचारण बोल रहा हूँ, कर्मावास बलोत्र।
0: जी अर्जुन जी, प्रश्न कीजिए अपना।
3: अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे भाई उसपे खान में काम करने वाले जो लोग हैं उनको डस्ट से भी निमोनिया हो सकता है, और केमिकल के साथ काम करने वाले केमिकल से भी हो सकता है।
1: केमिकल से निमोनिया नहीं हो सकता, केमिकल से निमोनिया होने के चांसेस कम होते हैं, पर केमिकल से सांस की नलियों में सूजन आ सकती है, जो लोग सेंसिटिव है उनको, हर व्यक्ति को नहीं हो सकता। अच्छा। वैसे ही खान में काम करने वाले हर व्यक्ति को खान की जो समस्या होती है वो नहीं हो सकती, किसी किसी व्यक्ति को होती है, जिसकी इम्यूनिटी इस तरह से प्ले करती है उसी को होती है।
3: सावधानियां क्या रखें मजदूर
1: की? देखिए सावधानी तो अगर आप खान में काम करना आपकी मजबूरी है तो आप जो वहाँ पे अच्छे तरह के जो रेस्पिरेटर हैं, जो मास्क है अच्छी क्वालिटी के, वो इस्तेमाल करें, तो उससे आपके जो डस्ट है वो लंग्स में नहीं जाएगी।
0: ठीक है अर्जुन जी,
3: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारा जो शरीर है वो अनमोल होता है, बेशकीमती होता है, उसको हम अगर सुरक्षित रखें तो आगे आने वाली तकलीफों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ तो पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या है आपने बताई, और कुछ इस तरह की चीजें जो हम आगे बढ़ के आमंत्रण देते हैं, जिसे एक और बात है डॉक्टर साहब की, हम अपने परिवारजन को बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे में हमें इस तरह की अभिरुचियों को जो गलत कही जाती है जैसे धूम्रपान करना, उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ पैसिव स्मोकिंग भी हमारे जरिए दूसरों को मिलता है।
1: बिल्कुल, अगर कोई क्रोनिक स्मोकर है, लंबे समय तक स्मोकिंग करता है, और जैसे बच्चों के साथ बैठ के और स्मोकिंग कर रहे हैं या परिवारजनों के साथ बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, तो लंबे समय तक एक्सपोजर होने पर उनको भी बीमारी हो सकती है।
0: बिल्कुल वैसे ही जैसे
1: परिवारजनों को, और यदि मान लो बच्चे को अस्थमा है और उनके पिताजी अगर साथ में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को अस्थमा का अटैक भी आ सकता
0: है। तो क्योंकि हम अपने परिवार को, अपने मिलने जुलने वालों को प्रेम करते हैं, तो ऐसी जगह इन चीजों को हमें छोड़ देना बेहतर होगा। और डॉक्टर साहब एक और बात है, आपने बताया था कि श्वसन तंत्र नाक से शुरू होता है, और नाक के जो टिप है इस पर एक और अदृश्य वस्तु बैठी रहती है जिसे हम ईगो कहते हैं। जब हम किसी को किसी नेक काम के लिए भी अगर कहें और

0: जिससे कुछ संकट होने की संभावना है, इस चीज के लिए अगर हम मना करें तो वो ईगो जो है उसको अपनाने के लिए रोकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम ये बात कहेंगे, जैसे आपने बताया था कि जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी होते हैं वो हमारी सुव्यवस्थाओं के लिए इस तरह की खतरे में अपनी जॉब करते हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, अपने वाहनों को ट्यून करते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी, इस विषय में अगर आप अपने शब्द कहें, हमें लगता है कि वो जो श्रोता जिनकी गाड़ियों के साइलेंसर से धुआं निकलता है वो शायद व्यवस्था कर सकें।
1: जी बिल्कुल, इसके लिए तो सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना आमतौर पर लोग बनवाते नहीं है
0: जी,
1: वो बनवाना जरूरी है और बनवाना भी चाहिए सबको। और जहां तक हो सके, अब तो जमाना ईवी का आ गया है, तो लोग जहां तक हो सके ईवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: क्या बात है डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे बड़ी देर से जुड़े हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी, स्वागत है आपका, नाम बताएंगे अपना?
2: मेरा नाम गुड्डी है।
0: गुड्डी जी, प्रश्न कीजिए अपना।
2: मैं क्या कहते हैं, जैसे सुबह उठती हूँ ना जल्दी, तो क्या कहते हैं, जैसे मतलब एकदम उठने से मेरे नाक में कुचर चलने लगती है, नीचे वैसे खुजली सी है ना, फिर मुझे ना मतलब जैसे धीरे धीरे मतलब पहले चिकना चिकना पदार्थ निकलेगा, फिर पानी जैसा निकलेगा, और फिर उस दिन दिन भर मुझे जुकाम रहेगा, उसको मेरा चेहरा लाल हो जाएगा, नाक लाल हो जाएगी, और फिर एक दिन के लिए होता है, फिर सुबह मैं कुछ भी नहीं खाती, फिर भी मेरे को मतलब कि ना जुकाम ठीक हो जाता है, और मैं कुछ खाने की करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है ना कड़ी जैसे
0: स्वाद बदला हुआ लगता है।
2: हाँ
0: जी, जी।
2: और जैसे मेरी गुड़िया है तो कहती है, जैसे मैं 8-15 दिन निकल जाते हैं कि मेरे जुकाम नहीं हुआ, तो कहती है कि आप याद करते हो ना, इसलिए होता है आप।
0: अच्छा अच्छा, सुनिए जी, सुनिए सुनिए सुनिए।
1: नहीं, याद करने से तो ऐसे जुकाम नहीं हो सकता, बट जो आपके लक्षण हैं वो भी एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण मुझे लग रहे हैं
0: जी।
1: और कई बार एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से आगे चल के साइनसाइटिस वाले लक्षण भी आने लग जाते हैं। तो अगर आपको लंबे समय से समस्या है और बार बार होती है, तो आपको किसी नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, और इसके लिए नेजल स्प्रे, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ या साइनस है तो उसके लिए उचित उपचार वो आपको प्रोवाइड करेंगे
0: जी।
2: वो मतलब जैसे मैं ना कुछ नहीं खाते तो मेरे को यूँ लगता है कि जैसे थोड़ा सा तकलीफ झेल लो तो एक दिन के लिए तो ठीक हो जाता है, ऐसे गोली खाने लग जाओ तो जैसे हमेशा।
0: लेकिन गुड्डी जी, डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि आपकी जो समस्या है उसके लिए आपको ENT स्पेशलिस्ट से मिलना होगा। ठीक है, तो आप उनसे मिलिए, क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार पता नहीं लगता, श्वास की समस्या नाक से आधारित है और श्वसन रोग विभाग को दिखाएं या फिर ENT स्पेशलिस्ट।
1: हाँ नहीं, हमारे पास भी नाक के एलर्जी के पेशेंट आते हैं और हम लोग भी उनसे उपचार देते हैं, पर कई लोगों को नाक की समस्या के साथ लंग्स की समस्या भी जुड़ी हुई रहती है, ऐसे मरीजों को आमतौर पर लंग्स की समस्या भी साथ में होती है
0: जी। डॉक्टर साहब अब कारण और निवारण की काफी बातें हुई हैं, डॉक्टर साहब उपचार और कुछ प्रबंधन की बात की जाए, डॉक्टर साहब इसके लिए क्या व्यवस्थाएं लोगों को करना चाहिए?
1: जी देखिए, जितनी भी एलर्जिक बीमारियां हैं उसका तो मैंने अभी आपको प्रश्नों में भी जवाब दिया
0: बिल्कुल,
1: कि सबसे बड़ी जरूरत है वो तो है अवॉइडेंस की।
0: डेफिनेटली
1: सबसे पहले हर व्यक्ति का जो एलर्जी का स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एलर्जी पैदा करने वाले जो कारक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो उनको पहचानना होगा कि मुझे किस चीज से प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज से प्रॉब्लम बढ़ रही है उसको अवॉइड करना है, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है
0: बिल्कुल।
1: दूसरा इम्पोर्टेंट है कि धूम्रपान
0: जी
1: और जो धुएं का संपर्क है वो तुरंत रोकना होगा, तो धूम्रपान व्यक्ति खुद रोक सकता है और खुद को भी बचा सकता है, परिवार को भी बचा सकता है
0: बिल्कुल।
1: तीसरा है मास्क पहनना, तो मास्क एक बहुत अच्छी आदत है, मास्क जहाँ पे भी जो सेंसिटिव लोग हैं एटलीस्ट उनको तो पहनना ही चाहिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे एक्सपोजर होगा तो वो उसको मास्क को पहने।
0: वाकई डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना काल जब आया था
1: जी,
0: तब ये लगा था कि जिन लोगों ने मास्क पहना वो किसी और तकलीफ से भी बच गए।
1: हाँ जी
0: जी। डॉक्टर साहब एक श्रोता हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार सर। नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी साहब, और डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: नमस्कार
3: सर, मैं इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ कि आपने सारी जानकारियां तो दे दी
0: जी,
3: लेकिन एक जानकारी मेरे लिए परम आवश्यक है कि हमारे लंग्स का, हमारे फेफड़ों का क्या इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका क्या संरचना होती है जो कि हमें श्वसन में दिक्कतें आ जाती है और अस्थमा जैसी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर साहब
0: जी, पारिक साहब अपना नाम भी बता दीजिए।
3: मेरा नाम कैलाश चंद्र पारिक है
0: जी, जी,
3: महालक्ष्मी निकले 12 रोड।
0: क्या बात है साहब
1: जी। देखिए, अपने जो लंग्स हैं वो एक जैसे बलून होता है ना, गुब्बारे होते हैं, वैसे छोटे छोटे गुब्बारों

0: से मिलके बना हुआ एक स्पंजी ऑर्गेन होता है,
1: जी सर,
0: दो फेफड़े होते हैं अपने शरीर में, वो
1: जी
0: मेन
1: सर,
0: जो सांस की नली ट्रेकिया उससे बाइफरकेट होके छोटी छोटी सांस की नलियों में विभाजित होती हैं, फिर उसके बाद में वायुकोश में पहुंचती है।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: जो भी हवा हम लेते हैं, जो भी वातावरण में बैठ के जो हवा हम लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन को वो रक्त में अवशोषित करती हैं वायुकोश, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है।
1: जी
0: ये एक सामान्य लंग्स की प्रक्रिया है। अब इस
1: जी
0: मार्ग के दौरान कहीं पे भी कोई अवरोध आए, चाहे वो सांस की नलियों की सूजन हो, चाहे सिकुड़न हो, चाहे डैमेज हो, चाहे जो वायुकोश की जो मेम्ब्रेन है जिसकी वजह से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है उसका डैमेज होना हो, जहां पे भी अवरोध आएगा उसकी वजह से सांस की समस्या हो जाएगी। अब ये अवरोध इन्फेक्शन से हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, और भी जैसे डैमेज हो सकता है, कोई कोई जैसे मैंने बताया कि कबूतरों के संपर्क में आने से हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस, इस तरह की जो बीमारियां होती है वो हो सकती है। और इस दौरान अगर कोई मान लो रक्त के प्रवाह को रोकने वाली समस्याएं हैं, जैसे अगर रेयर डिजीज की बात करें हम, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की एक तकलीफ होती है, उसमें क्लॉट जम जाते हैं कई लोगों के, तो इस तरह की जो समस्याएं होती है तो उससे भी जो अपना श्वसन तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है।
1: एक बात और पूछना चाहता हूँ
0: जी
1: सर,
0: जी
1: ये बैलून्स कितने होते हैं और इनको सुरक्षित रखने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: जी बैलून्स तो करोड़ों अरबों की संख्या में है, बहुत छोटे छोटे बैलून्स
1: ओहो
0: हैं,
1: जी
0: और इनको सुरक्षित रखने के लिए मैंने अभी जस्ट इससे पहले ही भी हम यही बात कर
1: जी
0: रहे थे
1: जी
0: कि अगर सेंसिटिव हैं आप तो आपको जो एलर्जी पैदा करने वाला कारक है उनको उनसे बचना है। और धुआं जो वातावरण में जो प्रदूषण है, चाहे वो धुएं का प्रदूषण हो, चाहे वो डस्ट का प्रदूषण हो, चाहे किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, उससे बच के रहना है, मास्क पहनना है, और धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं करना है।
1: सर, एक बात और
0: जी
1: दिमाग
0: जी
1: में आ गई,
0: जी
1: ये तो ठीक है बचना चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनमें मैं भी एक हूँ, कि मेरे को आज तक ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई,
0: हाँ हाँ
1: लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र इस समय 75 के करीब है और मैं चाहता हूँ कि मैं, अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है,
0: जी जी
1: लेकिन ये संरक्षित कैसे हो, इसके लिए कोई उपाय है क्या सर आपके पास?
2: जी बस यही बात हमारे डॉक्टर साहब की आखिरी बात होगी, और क्योंकि डॉक्टर साहब समय अब
0: जी
2: अनुमति नहीं
0: जी
2: दे
0: जी
2: रहा। जी
0: बिल्कुल, अगर आप बैलेंस लाइफ जीते हैं, अगर आप जैसे कोई धूम्रपान कोई नशा नहीं करते हैं, आपकी दिनचर्या नियमित है, व्यायाम करते हैं और नींद बराबर लेते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी सुरक्षित रहेगी और आपके लंग्स भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। आप संतुलित आहार लें, बैलेंस लाइफ जिए, तो मेरे हिसाब से लंग्स को कोई समस्या नहीं होगी।
2: जी कैलाश जी, आपकी बातों के लिए आपका बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि समय कम है,
0: जी
2: हम आपका आभार ही व्यक्त करेंगे
0: जी
2: कि आप आकाशवाणी
0: जी
2: आए और
0: जी
2: आपने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी अपने अनुभव के साथ अपने श्रोताओं को बांटी, उसके लिए
0: बिल्कुल
2: बहुत बहुत आभार,
0: बहुत बहुत
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो श्रोता, ये था सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। इसमें तकनीकी सहयोग सुनील सुवाल का और आरसी वर्मा का था, संयोजन के तौर पर तीजरा मीणा ने हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब राजेश महावर भी डॉक्टर विनोद कुमार जांगिड़ साहब के साथ आपसे चाहता है अनुमति, स्वीकार कीजिए, नमस्कार।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ चंबल चैनल से हम बोल रहे हैं। जयपुर केंद्र से अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
3: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
1: रिगार्डिंग द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप द प्राइस स्टेबल, भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की, सो दीज ऑल एफर्ट्स हैव बीन डन टू कीप द प्राइस स्टेबल। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स ऑल्सो। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वर्कआउट करने के लिए कहा है कि एलपीजी का जो रिजर्व है दैट शुड बी मिनिमम 30 डेज विद देम, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड सिमिलरली फॉर क्रूड ऑल्सो वी आर वर्किंग।
0: इस बीच 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ भारतीय वाणिज्य जहाज होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और इसके 3 जून तक स्वदेश पहुंचने की उम्मीद है। इधर पचपदरा एचपीसीएल रिफाइनरी में बीते महीने संयंत्र में आग के बाद रुकी हुई गतिविधियों और कार्यों की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। रिफाइनरी से आगामी 1 जून से कमिश्निंग गतिविधियां शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी भी अगले कुछ सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से कल जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़ों के अनुसार देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हो गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों को लगे टीकों का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग 2 होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने विद्यार्थियों को किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई की टेली परामर्श हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी है। इधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं का परिणाम 71.65% और 10वीं कक्षा का परिणाम 64.69% रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत इन दिनों कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन तथा जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी इन आयोजनों में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभियान के तहत कल जयपुर के नींदड़ वन क्षेत्र में श्रमदान किया।

उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और इको ट्रेल का लोकार्पण किया। इधर जल भवन परिसर में जल संरक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कार्मिकों ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर विचार व्यक्त किए और जल के सदुपयोग का संदेश दिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई गई। बालोतरा के रेवाड़ा जैतमाल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू,

0: माल अमृत सरोवर पर कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने श्रमदान किया। चित्तौड़गढ़ में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने जिलाधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई हिस्सों में कल देर शाम मौसम में अचानक बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जयपुर सहित 8 शहरों में दोपहर बाद आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गईं। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित आसपास के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी के बीच जयपुर, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, अलवर और झुंझुनू जिलों में वर्षा हुई। झुंझुनू जिले के कई इलाकों में अंधड़ आया। इस दौरान आसमान में धूल का गुबार छा गया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में देर शाम मौसम का मिजाज बदला और धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश ने लोगों को तेज गर्मी से राहत दी। धौलपुर, भरतपुर, दौसा सहित पूर्वी जिलों में भी मौसम के बदलाव से लोगों को बढ़ते तापमान से निजात मिली। अजमेर में दिन भर तेज धूप के बाद देर शाम मौसम ने करवट बदली और आंधी बिजली की गतिविधियों के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक जारी रहा। बेमौसम की बरसात से जिले में कई स्थानों पर पेड़ों के गिरने और बिजली के पोल उखड़ने की खबर है। हाड़ौती क्षेत्र में भी आंधी बारिश की गतिविधियां हुई, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली। नागौर और आसपास के इलाकों में भी देर रात तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ निजात दिलाई। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई।
1: नागौर जिले में शुक्रवार देर रात करीब 12 बजे तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश ने लोगों को नौतपा में गर्मी से राहत दी। वहीं जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। दिन भर उमस और गर्मी से परेशान लोगों को देर रात चली तेज आंधी और बरसात से राहत मिली। बारिश के दौरान शहर के कई निचले इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया। जिले के असावरी, तौसर सहित जिला मुख्यालय के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में नींबू के आकार के ओले गिरे। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज और कल जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभागों में बारिश के साथ मेघ गर्जन और आंधी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी और सरहदी जिलों में बीते 24 घंटों के दौरान भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के मौजूदा संस्करण में राजस्थान रॉयल्स का सफर समाप्त हो गया है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन गुजरात टाइटंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 3 विकेट खोकर 219 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता का फाइनल कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने स्पष्ट किया, देश में पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी स्टॉक संरक्षित करने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित। मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्रियों ने किया श्रमदान। भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में उल्लेखनीय प्रगति की। देश में संस्थागत प्रसव बढ़कर 90.6% हुआ। और मौसम में आए बदलाव के बाद पूर्वी उत्तरी जिलों में प्रचंड गर्मी से मिली राहत। अगले 2 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको सुनवाएं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म चक दे इंडिया से।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सिर्फ तुम इस फिल्म से उदित नारायण का श्रोतव्य स्वर था, समीर के शब्द इस गीत के लिए आपने सुने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम के आखिर में कोई मिल गया इस फिल्म से शान कविता कृष्णमूर्ति बेबी स्नेहा की आवाजें आप सुनिएगा। नसीर फराज के ये शब्द हैं और राजेश रोशन का ये संगीत है।

श्रोताब, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। बहिने अब सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्ते, आदाब, शश्री अकाल, खम्मा घणी मजरसा। बहुत बहुत स्वागत है हमारी सभी सखियों का उनके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और महिला जगत के सफर में आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी सुनीता जैन। मेरा प्यार भरा नमस्कार सखियों। कला और साहित्य मन की बात को व्यक्त करने का सबसे शक्तिशाली और प्राचीन माध्यम है। इनके जरिए भावनाओं, विचारों और अनुभवों को एक ऐसा रूप मिलता है जिसे शब्दों या सीधे संवाद में बयां करना मुश्किल होता है। इन माध्यमों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह भाषा या सीमाओं के बंधनों से परे होते हैं। एक अच्छी कलाकृति या साहित्य सीधे श्रोता, दर्शक या पाठक के मन को छूकर संवाद स्थापित करता है। जिस तरह हम जुड़ते हैं आपसे रेडियो के माध्यम से इस कार्यक्रम के द्वारा। सखियों, आज इस कार्यक्रम में कला एवं साहित्य से स्वयं को अभिव्यक्त करती महिलाएं, इस विषय पर हम विस्तार से करते हैं।

के साथ बातचीत। सखियों, कला एवं साहित्य में महिलाओं की भागीदारी उनकी रचनात्मकता को तो दर्शाता ही है, साथ ही साथ उनके आत्मसम्मान, संघर्ष और दृष्टिकोण को समाज के सामने रखने का एक सशक्त माध्यम है। साहित्य हमेशा से महिलाओं के लिए दबे हुए दर्द, भावनाओं और अनुभवों को शब्दों में पिरोने का एक प्रभावशाली जरिया रहा है। महिलाओं ने अपनी आत्मकथाओं के माध्यम से अपने व्यक्तिगत संघर्षों और घरेलू जीवन की सच्चाइयों को उजागर किया है। इस शैली के माध्यम से महिलाओं ने लैंगिक असमानता, सामाजिक वर्जनाओं और स्वतंत्रता पर खुलकर कलम चलाई है। कवियत्रियों ने प्रेम, प्रकृति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपनी संवेदनशील सोच को कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। और बात यदि कला की जाए तो कला को अक्सर आत्म अभिव्यक्ति का द्वार कहा जाता है। सखियों, कला में महिला अभिव्यक्ति की बात की जाए तो दृश्य और प्रदर्शन कलाओं के जरिए महिलाओं ने अपनी कल्पना, सौंदर्य बोध और दृष्टिकोण को एक नया आयाम दिया है। चित्रकला और मूर्तिकला में कैनवास और मूर्तियों के माध्यम से महिलाएं अपने भीतर की उथल पुथल, दृष्टिकोण और समाज को देखने का नजरिया प्रदर्शित करती नजर आती है। नाटकों और फिल्मों ने महिला निर्देशकों, अभिनेत्रियों और लेखिकाओं ने महिलाओं के वास्तविक किरदारों को पर्दे पर जीवंत किया है। कहते हैं ना कि एक लकीर ने खामोशी को रंग दिया, मेरे दिल के एहसास को कागज पर उतार दिया। सखियो, महिला सशक्तिकरण में कला एवं साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। महिला कलाकारों और लेखकों की रचनाएं समाज में जागरूकता फैलाती है। स्वयं को अभिव्यक्त करना महिलाओं को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है और साथ ही साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। और संगीत जो है वो भी कला का ही एक रूप है, और जो संगीत है वो हम सभी को बहुत प्रिय है, तो क्यों ना आपको एक खूबसूरत सा गीत सुना दिया जाए।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों, सभी अभिभावक यानी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करें और पढ़ाई का आनंद लें। हालांकि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना कभी कभी एक चुनौती होता है। बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं? माताएं, आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती मनप्रीत कौर। आप एक अध्यापिका हैं। श्रीमती मनप्रीत कौर, आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में बहुत बहुत स्वागत।
6: थैंक यू सो मच।
5: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करें?
6: बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए आप उनको एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएं
5: जी,
6: उन्हें रीडिंग की हैबिट डालें, उन्हें बाहर लेके जाएं, उन्हें बाहर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाएं
5: जी,
6: उन्हें तरह तरह की चीजें, खेल और डिबेट कॉम्पिटिशन्स और हर कॉम्पिटिशन के लिए आप उन्हें प्रेरित करते रहें, ताकि वो उनका रुझान आगे हर चीज में बढ़ता जाए
5: जी। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे, क्योंकि कई सारे बच्चे देखते हैं हम पढ़ने का कहते हैं लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते, तो ऐसे में क्या उपाय करें, या यूं कह सकते हैं कि बच्चे की पढ़ने में रुचि कैसे बढ़ाई जाए?
6: बच्चों में अगर आपको रुचि बढ़ा

0: करनी है उसके लिए आप उन्हें सबसे पहले तो ऐसे उनमें आदत डालें कि वो खेलते खेलते ही कई चीजें सीख जाएं।
1: जी।
0: क्योंकि हम अगर बच्चों को फोर्स करेंगे कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो तो एक बर्डन सा हो जाता है उनपे।
1: जी।
0: थोड़ा सा आप उन्हें इस तरह की आदत डालें कि बच्चे पढ़े भी और साथ में आप उनको थोड़ा सा अदर एक्टिविटीज भी साथ के साथ कराते रहें ताकि बच्चों का मन लगा रहे।
1: जी।
0: आप एकदम से उनपे बोझ नहीं डाल सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदतें धीरे धीरे डलती हैं।
1: जी।
0: तो आप उनको एक्टिविटीज के साथ ही खेल खेल में पढ़ाई की तरफ प्रेरित कीजिए।
1: जी, इससे बच्चों का रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ता है।
0: बिल्कुल बढ़ता है, बिल्कुल
1: जी।
0: बढ़ता है।
1: नियमित अध्ययन की जो बात की जाती है वो पढ़ाई में कितनी कारगर है कि बच्चा उससे कितनी सफलता पा सकता है?
0: वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ऐसे है कि अगर आज आपने कोई चीज उनको पढ़ाई है और अगर वो 10 दिनों के बाद उसको रिपीट करता है तो वो भूल जाएगा।
1: जी।
0: और हम भी अगर हम देखें, खुद भी हम कई चीजें भूल जाते हैं। तो बच्चों में आदत डाली जाए कि जैसे अगर आप एक दिन पढ़ा रहे हो तो उसको 2 दिन बाद फिर से छोटा सा रिवीजन कर दिया जाए। 10-15 मिनट ही लगते हैं।
1: जी।
0: रिवीजन जरूर कराएं, ये
1: जी।
0: बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी। एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए?
0: ऐसे कोई एक टाइम आप नहीं बना सकते, लेकिन हाँ 1.5 घंटा तो होना ही चाहिए। मतलब अगर आप 2-3 सब्जेक्ट्स भी ले लिए और आप एकदम फोकस करके पढ़ते हैं तो 1.5 घंटा एक बच्चे के लिए, जो आम छोटा बच्चा होता है, उससे आप देखिए कि जो स्कूल का बच्चा है वो इतना टाइम तो उसको चाहिए ही है।
1: जी
0: जी।
1: हम बात कर रहे हैं आज माँ की, कि माँ किस तरह से बच्चों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ाए। तो माँ की एक अहम भूमिका होती है बच्चे के जीवन में।
0: जी।
1: कहा जाता है कि बच्चे की पहली गुरु माँ ही होती है।
0: जी।
1: तो माँ किस तरह से बच्चों का रुझान पैदा करे?
0: एक तो माँ बचपन से उसकी परवरिश कर रही होती है।
1: जी।
0: माँ के साथ वह बहुत जुड़ा हुआ होता है बच्चा। तो बच्चे को बचपन से ही आप रीडिंग हैबिट जरूर डालिए। रीडिंग से नॉलेज भी मिलती है, रीडिंग से हमारे लैंग्वेज का ज्ञान भी बढ़ता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी कम होती है।
1: जी।
0: तो माँ बैठे जरूर उनके साथ, बैठ के उनमें आदत डाले कि कुछ ना कुछ रीडिंग हैबिट जरूर डाले उनमें। उससे क्या, बच्चा जरूर आगे धीरे धीरे हर चीज के लिए उसको आदत पड़ जाती है, पढ़ने के लिए उसका रुझान बढ़ जाता है।
1: जी। और यदि वो कुछ भी अच्छा करता है तो माँ उससे मोटिवेट भी करे?
0: बिल्कुल करे, बिल्कुल करे। ये बहुत
1: छोटी छोटी चीजों में जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा फिर और बड़ी चीज करने के लिए प्रेरित होता है।
0: बिल्कुल, ये बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: जी। आहार का जो संबंध है वो पढ़ाई के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है?
0: पढ़ाई के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि आप बच्चों को जो आजकल पैकेट बंद चीजें आ रही हैं,
1: जी,
0: वो ना लेके आपके घर की बनी हुई चीजें वो ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें।
1: जी।
0: उससे बच्चा स्ट्रांग भी होता है, मेंटली भी स्ट्रांग होता है और अच्छी हेल्दी हैबिट्स डेवलप करता है।
1: जी।
0: तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि घर की बनी चीजें आप बच्चों को प्रोवाइड करें। पैकेट बंद चीजें जैसे आप देखें वो बच्चे में आलस भी पैदा करता है और उनको वीक भी बनाता रहता है।
1: जी।
0: तो सबसे अच्छा यही है कि आप उनको घर की ही बनी हुई चीजें ये दे
1: खिलाएं। और घर की चीजें बनाने में माँ की ही एक
0: बिल्कुल एक प्यार भी होता है।
1: जी,
0: माँ के हाथ की बनी चीजें माँ अपने लिए हमेशा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचती है।
1: जी।
0: तो एक प्यार से बनाई हुई चीज होती है।
1: जी।
0: जो कि अमृत का काम करती है।
1: जी जी जी। कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जो बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकती है?
0: एकाग्रता देखी जाए तो आप बच्चों को एक्टिविटी जरूर कराएं, जैसे बच्चों को खेल कूद के प्रति बहुत, मतलब उनको लेके जाएं, उनको खेलना इन सब चीजों में उनको जरूर आगे करें। क्योंकि क्या है, जैसे अगर आप एक बच्चा बॉल को कैच करने की कोशिश करता है तो उसका जजमेंट पावर बढ़ता है।
1: जी।
0: कि मैं जजमेंट कर रहा हूं, मैं कैसे पकड़ूंगा उसको, तो वो उसका जजमेंट पावर भी बढ़ता है। उसमें एक आगे सबके साथ खेलने की सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है।
1: जी।
0: तो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, खेलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये चीजें तो हैं ही, लेकिन

0: जो आजकल मोबाइल है उसमें ना आप उसके स्क्रीन टाइम ना इंक्रीज करके आप खेल कूद में उनको प्रेरित करें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: और इसमें मुझे लगता है कि एक तरह से माँ बाप को भी जुड़ना पड़ता है।
0: बिल्कुल जुड़ना पड़ता है, आपको बच्चे को टाइम देना पड़ता है, बच्चे के साथ बैठे उसे समझे, और अपने जो एक माँ बाप के संस्कार हैं वो बच्चा अडॉप्ट करता है
1: जी,
0: जो आप करेंगे वही बच्चा देखता है। तो आपको अपने बच्चे को टाइम देना बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी। बिल्कुल, देखा जाता है ना कि माँ मोबाइल लेकर देखती होती है और बच्चों से बोलती है कि आप पढ़ लीजिए, तो बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई में नहीं लग पाता।
0: नहीं लगता बिल्कुल,
1: तो कहते हैं ना रोल मॉडल तो आप
0: बिल्कुल
1: ही,
0: आपको बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है बिल्कुल।
1: कौन सी ऐसी आदतें हैं जो बच्चों को आगे जाकर सफल बनाती हैं?
0: एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग, ये चीजें बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट होना, हम जो काम कर रहे हैं कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं, डरना नहीं है किसी चीज में, तो ये चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है
1: जी। अभी आपने सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी, तो बच्चों के जीवन में अनुशासन कितना महत्व रखता है?
0: बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि डिसिप्लिन होने से ही आगे आप लाइफ अपनी इजी बनाते जाते हैं, क्योंकि आपको आगे जाके जॉब्स करने हैं, आपको सक्सेसफुल बनना है, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है डिसिप्लिन
1: जी। और अनुशासित करने के लिए बच्चों के साथ क्या किया जाए?
0: अनुशासित करने के लिए आप उनमें वह आदतें डालें जो अच्छी आदतें कही जाती हैं, जो कि आपको आगे काम करने में और कहीं भी जाने में आपको इजी बना देती है, आपके रास्ते इजी बना देती है
1: जी। जैसे कि स्कूल में होता है कि स्कूल में जाने का समय निश्चित है, आने का समय निश्चित, खाने का समय निश्चित, तो एक इससे बच्चों में अनुशासन आता है।
0: जरूरी, बहुत जरूरी बात
1: जी,
0: क्योंकि अगर आपको टाइम की कदर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो टाइम की कदर करना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट।
1: और इसके लिए जहां तक हो माँ को ही ये सारी चीजें करनी होती है कि बच्चे किस तरह से अनुशासन में रहे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे कहते हैं कि माँ बाप बोलते हैं हमारी बात भी नहीं सुनता
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं घर से ही उसकी इस चीज की शुरुआत होती है
0: जी। घर से ही जुड़े होते हैं बच्चे, और माँ के साथ तो सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं
1: जी,
0: तो माँ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको रास्ता दिखाना।
1: बिल्कुल सही
0: जी।
1: अब आप चूंकि एक अध्यापिका हैं, तो एक अध्यापक अपने बच्चों की पढ़ाई को किस तरह से रोचक बना सकता है?
0: रोचक इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि कई बच्चे जैसे हम भी लेके बैठते हैं वो नहीं करना चाहे, नहीं करना चाहे, तो हम क्या करते हैं उनसे बात करते हैं, बात करके उनको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और से उनकी जो है इंटरेस्ट डेवलप करते हैं
1: जी।
0: क्योंकि बात करने से उनके अंदर की बातें भी हम जानते हैं, उन्हें क्या हॉबी है, क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा आप उनको स्टोरी टेलिंग या कोई इधर उधर की बातें करके उनका जुड़ाव अपनी तरफ करें
1: जी,
0: फिर वो आपकी बात सुनेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जब उनका डेवलप होगा तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे
1: जी।
0: तो इस तरह हम उन्हें जोड़ सकते हैं अपने साथ।
1: शिक्षा और सफलता कैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं?
0: शिक्षा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बगैर शिक्षा के आज की तारीख में आप आगे नहीं बढ़ सकते। होल सोल शिक्षा ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप शिक्षित हैं तो आज आपका डेवलपमेंट है, आज आप सक्सेसफुल हर जगह हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है शिक्षा, और सफलता उसके बाद अपने आप आ जाएगी
1: जी। कुछ बच्चे पढ़ाई में रुचि क्यों खो देते हैं?
0: रुचि जब बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है, मतलब हम एक बच्चे को हमेशा ये नहीं कह सकते कि आप पढ़ो आप पढ़ो पढ़ो, ये नहीं है। आप उसका टाइम पूरा कर दीजिए कि इतना टाइम आपका पढ़ाई का है, इतना आपका खेल कूद का है,
1: मतलब एक टाइम टेबल बच्चे का बना लेना चाहिए
0: जी। बहुत जरूरी है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप उनको तैयार कीजिए, वो जरूर उनकी रुचि भी बढ़ती जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप आप चीजें सिखाइए, एकदम से नहीं बच्चे को चार चार घंटे या पांच पांच घंटे नहीं बिठा सकते।
1: वो रुचि खोने का कारण एक ये भी है कि अक्सर मम्मी बोलती रहती है बच्चे पढ़ लो पढ़ लो पूरा दिन, जब देखो तब बच्चा उस चीज से चिढ़ जाता है।
0: बिल्कुल चिढ़ जाता है,
1: कि हम पूरे दिन थोड़ी पढ़ सकते हैं,
0: नहीं पढ़ सकते
1: जी, जो अभी का समय है और हम जान रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन की एक लत सी हो गई है, तो मोबाइल की वजह से उनका ध्यान भटक जाता है
0: जी,
1: तो किस तरह से हम उनका मोबाइल पर से ध्यान हटाकर और गतिविधियां या पढ़ाई की तरफ उनको कैसे फोकस कर सकते हैं?
0: सबसे पहले तो हमें उनमें ये आदतें डालनी पड़ेगी कि एक्टिविटीज के लिए ज्यादा मोटिवेट करें। देखिए आजकल बहुत कुछ है, अगर आप देखें तो आप आउटडोर गेम्स के लिए उसको उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, आप स्विमिंग के लिए करिए, आप डिबेट के लिए करिए, बहुत सारी नॉलेज की चीजें हैं वो पजल्स के लिए करिए, स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, आप दीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल खत्म, क्योंकि दुनिया के साथ चलना पड़ता है, दीजिए, लेकिन उनका टाइम एक फिक्स कर दीजिए कि उतना ही टाइम वो करें, अपने मोबाइल्स में लॉक लगा के रखें, जो बच्चों के लिए जरूरी है वही वह दिखे। और इसकी वजह आज बहुत बड़ा कारण है कि डिस्ट्रैक्शन का, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी बिल्कुल अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन टाइम कम करें, अदर एक्टिविटीज के लिए लेके जाएं, ये पेरेंट्स खुद इस चीज के लिए उन्हें आगे बढ़ाएं, अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए।
1: मनप्रीत जी, आपने अदर एक्टिविटी की बात की, तो हम जानते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई रुचि होती है, जरूरत है उसे पहचानने की और उसे आगे बढ़ाने की, और उसमें सबसे जो अहम रोल है वो कहीं ना कहीं माँ का ही होता है।
0: बिल्कुल, माँ का तो पूरा 100% रोल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा माँ ही बच्चे के साथ रहती है, और जो देखे उसके जो गुण हैं या अवगुण हैं ये माँ को ही सबसे ज्यादा पता होते हैं
1: जी,
0: तो इसीलिए माँ का तो पूरा ही हाथ है पहचानने में कि बच्चा कहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा है, किस लाइन में वो सबसे ज्यादा अच्छा है
1: जी। चलते चलते आप हमारी सभी सखियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: मैसेज मैं यही देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के साथ बैठें, उसे बिल्कुल अपना पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ प्रेरित करिए, उसको टाइम दीजिए, और इस तरह उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन, गुड हैबिट्स और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होंगी, जिससे बच्चा जरूर आगे बढ़ता जाएगा और डिसिप्लिन लाइफ में रहेगा और सक्सेसफुल भी होगा।
1: श्रीमती मनप्रीत कौर, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और आपने बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुझान कैसे बढ़ाएं माताएं, आज इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी दी। हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आएगी ऐसी हम आशा करते हैं, और आप समय निकालकर यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सखियों, जानकारी की बातों में आइए आपको लिए चलते हैं कि घर में फर्स्ट एड बॉक्स का महत्व क्या है। सखियों, घर में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी आपातकालीन स्थिति या छोटी मोटी दुर्घटना जैसे कटने, जलने या मोच आने के समय त्वरित और तुरंत इलाज प्रदान करता है। इससे समय पर सहायता मिलती है और चोट गंभीर होने से बचती है और कई बार सखियों अस्पताल पहुंचने तक आपके जीवन की रक्षा भी होती है। सखियों, घर में फर्स्ट एड बॉक्स होना आवश्यक है क्योंकि इससे कई तरह के लाभ हैं, जैसे त्वरित उपचार के साथ साथ संक्रमण से बचाव होता है, तनाव और घबराहट कम होती है क्योंकि आपातकाल के समय दवाइयां और महरम पट्टी सभी एक साथ एक ही जगह मिल जाती है। अस्पताल जाने की कई बार जरूरत ही नहीं रहती क्योंकि छोटी मोटी चोटों में प्राथमिक उपचार किट में मौजूद दवाइयों से ही आपको आराम मिल जाता है। अगर कोई गंभीर दुर्घटना हो जाए तो एम्बुलेंस या डॉक्टर के आने तक फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद CPR किट या बैंडेज जीवन रक्षक साबित होते हैं। सखियों, एक अच्छे फर्स्ट एड बॉक्स में बुनियादी चीजें हमेशा होनी चाहिए, जैसे घाव साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक लिक्विड, रुई और वाइप्स, मरम पट्टी के लिए बैंडेज और गॉज पैड, एंटीबायोटिक क्रीम, थर्मामीटर, कैंची, चिमटी और हैंड सैनिटाइजर। समय समय पर बॉक्स में रखी दवाइयों की एक्सपायरी डेट भी आप चेक करती रहें और इसे अपने बच्चों की पहुंच से दूर किसी सुरक्षित और सुखी जगह पे रखें। तो सखियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है इसके बारे में आप अपने सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकती हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9530012020 9530012020। तो हमें रहेगा आपके मैसेजेस का इंतज़ार। आज के लिए दीजिए अपनी रेडियो सखी सुनीता जैन को अनुमति, लेकिन चलने से पहले कहेंगे कि जो हमने आज बात की थी, कला एवं साहित्य से स्वयं को जरूर से आप अभिव्यक्त करें क्योंकि आप सभी में कोई ना कोई कला, कोई ना कोई हुनर छुपा हुआ है। तो अपनी शख्सियत को उभारें और आत्मविश्वास से भरपूर अपनी जिंदगी को जिएं। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो सखी सुनीता जैन को अनुमति, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: बहिने अभी अपना कार्यक्रम सुन रही थी महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओ, अब विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चलते हैं।

रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेल

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है, जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनाथ

नारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए। दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई, जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब मैं अकेले कर रहा हूं। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाते।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रूप।

0: 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: थी धन्य जवानी अपनी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये पहला जो गीत है अब्दुल्ला फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: की रात सबको याद रहे।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है मन चित्रपट संगीत। अब आपको सुनवाते हैं एग्रीमेंट फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गुलशन बावरा के बोल, संगीत है बप्पी लाहिरी का।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: चित्रपट संगीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चंबल की कसम। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत को लिखा साहिल लुधियानवी ने, संगीत तैयार किया खयाम ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत ये कार्यक्रम संपन्न हुआ।
1: दोस्तों नमस्कार, आज के मैटिनी शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व तंबाकू दिवस पर आइए सुनते हैं BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के मैटिनी शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम सब जानते हैं 31 मई ये जो दिन है, इस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू विरोधी दिवस। और तंबाकू विरोध क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए, सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हमने विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है BEST के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल जी को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो लत है तंबाकू की, ये जो नशा होता है, ये लत के अलावा भी तंबाकू का कोई इस्तेमाल होता है, वो किस तरह से होता है?
3: जी एक्चुअली ह्यूमन ने तंबाकू का जो सेवन करने से पहले उसको कोई अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे कि हमारा देश खेती प्रधान देश है
2: जी, जी।
3: तो वहाँ पे खेती हमारा पूरा डिपेंडेंसी रहता है। तो खेती को जो दो तीन चीजें से जो खतरा है, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स या बड़े जानवर वगैरह, उनसे खतरा रहता था, तो उनके खेती के जो बॉर्डर पे ये तंबाकू के प्लांट्स लगाए जाते थे।
2: अच्छा।
3: और उनकी वो स्मेल से जो वाइल्ड एनिमल्स वो दूर चले जाते थे। दूसरा था कि खेती को दूसरा जो प्रॉब्लम था वो चूहे से, तो चूहे खेती खराब कर देते थे। तो अभी आज भी की तारीख में भी जो तंबाकू के जो लीव्स रहते हैं
2: जी जी,
3: वो जो बड़े रहते थे वो सूखने के बाद उसको गर्म करके,
2: अच्छा गर्म करके
3: उसको आग लगा के उसको चूहे के जो अंडरग्राउंड जो उनके
2: बिल होते हैं
3: उसमें डाल देते, चूहे भाग जाते या मर जाते थे। आज की तारीख में भी हमारे जो गाड़ी
2: में, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है,
3: इवन सिटी में भी,
2: सिटी में
3: जो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन चूहे गाड़ी के जो वायर
2: कुतर जाते हैं
3: कांच का, तो उसको रोकने के लिए भी तंबाकू डाल देते थे उससे। तो उसके अलावा जो तंबाकू का जो पान रहते हैं उसको सूखने के बाद उसका पाउडर करते, उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड करके भी यूज होता था। जैसे इंसेक्ट्स है जो खेत को या धान को खराब न कर दे। सो ये कुछ तरीके थे जो अदर देन सेवन हम इंसान इसको यूज करते थे। तो ये मुझे यहाँ पे कहना है कि तंबाकू से किसी को भी सेफ नहीं है, सब खतरे में। अगर वो जीव छोटा है तो जल्दी मरेगा, अगर बड़ा है स्लोली स्लोली लेकिन मरेगा जरूर। तो तंबाकू के लिए कहा जाता है कि

0: तो मौके के जो सेवन करने वाले में से 50% लोग को तंबाकू मारी डालता है। तो ये मैं श्रोताओं को मैं चाहता हूँ कि बात ध्यान से सुने और अपने दिमाग में उसको हमेशा के लिए स्थापित कर दे।
1: जी जी जी, ये तो बस एक पेस्टिसाइड की तरह इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो केवल उतनी बात अच्छी है तंबाकू की, ये कह सकते हैं बस,
0: बाकी
1: कुछ नहीं। चलिए, एक और आपसे बात जाननी थी कि आप BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं और 2014 से आपने एक मुहिम चलाई थी तंबाकू विरोधी, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन में जितने लोग काम करते हैं, खासतौर से जो ड्राइवर्स होते हैं बस के और ट्रकों के ड्राइवर्स होते हैं, इन लोगों में ज्यादा लत होती है तंबाकू। तो आपने जो मुहिम चलाई है इसके विरोध में, तो उसके 12 साल हो गए, क्या फायदे आपको नजर आए?
0: तो मैं श्रोताओं को बताऊं कि तंबाकू में 7000 अलग अलग प्रकार के केमिकल्स रहते हैं। 7000
1: रसायन,
0: जब कोई भी उसको कंज्यूम करता है तो वो शरीर में जाके अलग अलग बीमारियां करते हैं, जैसे कि सिंपल हार्ट बीट्स बढ़ जाती है
1: जी,
0: ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आ सकता है, देन लकवा मार सकता है, अपने जो बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, और तंबाकू खाने वाले लोगों को बैक पेन या शोल्डर पेन या फ्रैक्चर के भी प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। उसके अलावा तंबाकू की वजह से TB शरीर की बीमारियां होती है, और सबसे डेंजर जैसे कि कैंसर, पर्टिकुलरली मुंह का कैंसर। तो ये सब बीमारी की वजह से हमारे पास हमारे एम्प्लॉयज जो कर्मचारी उसकी लत की वजह से पीड़ित थे, और उसके वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन भी कम हो रहा था, बिकॉज बीमारी की वजह से वो काम पे नहीं आ सकते थे। तो हमने ये सब चीज को देख के हमने 2014 में तंबाकू मुक्त बेस्ट ये अभियान शुरू किया,
1: और तंबाकू मुक्त बेस्ट,
0: और आज तक उसको हमने कंटिन्यू किया है। तो 12 साल के आज ये अभियान को हो गए, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये 12 साल में 5000 हमारे कर्मचारी ने तंबाकू की व्यसन परमानेंटली छोड़ दिया है।
1: वाह।
0: उसके अलावा एक जो सर्वे है उसको हम गेट्स बोलते हैं, ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे।
1: अच्छा।
0: उसके मुताबिक कि सरकार अगर 100 रुपीज टैक्स लेती है तंबाकू के ऊपर, तो सामने 816 रुपया का हमें अतिरिक्त भार हमें भुगतना पड़ता है, और जो भार है मेनली तंबाकू की वजह से जो बीमारियां होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और दूसरा जो बीमारी की वजह से लोग काम पे नहीं जाते या प्रोडक्टिविटी लॉस के हिसाब से ये नुकसान। तो 12 साल में हमने देखा है कि बीमारियां कम हो गई, उसका जो ट्रीटमेंट का खर्चा कम हो गया, बीमारियां कम हो गई, इसलिए सिकनेस एब्सेंटिज्म भी हमारे कम हो गया, और इसके वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और रेवेन्यू भी बढ़ गया, और साथ साथ में बीमारियां कम हुई है तो जो उसकी वजह से मोर्टेलिटी थी
1: जी,
0: जो डेथ वो भी हमारे इधर कम हो गई है, कैंसर के प्रमाण हमारे उधर कम हो गए, तो लोगों में एक अच्छी भावनाएं तैयार हुई है तंबाकू के विरुद्ध में। तो ये बीमारियां कम होने से ये जो लोग ठीक हो रहे हैं या जो बीमार कम पड़ रहे हैं, तो ये नोटिफाई किया गया और हमारी जो अभियान को नेशनली और इंटरनेशनल भी रिकॉग्निशन मिला है, एक्नॉलेज किया गया, अवार्ड भी मिला है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तो मैं चाहता हूँ कि पूरी भारत में ऐसे अभियान अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में
1: चलाया जाए
0: जो लोग अच्छे हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारी।
1: रूप से आप सभी, आप और आपकी पूरी टीम जो ये मुहिम चला रही है, अभियान चला रहे हैं, आप इसके लिए अभिनंदन के पात्र हैं।
0: यस, थैंक यू।
1: पुरस्कार भी आपको मिल चुका है और काफी उपलब्धियां रही इस अभियान के। बेसिक एक बहुत ही सवाल ये है कि लोग क्यों खाते हैं तंबाकू, क्या होता होगा, ये नशे की शुरुआत कैसी होती है, और वो खाने के बाद क्या उन्हें महसूस होता होगा कि वो फिर वो बार बार उसे खाने लग जाते हैं।
0: बेसिकली वो तंबाकू खुद से तो कोई खाता नहीं है
1: जी,
0: मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि पीयर प्रेशर, स्कूल कॉलेज के जमाने से दोस्त खा रहा है,
1: अच्छा
0: कलीग खा रहे, ले लेना,
1: अच्छा
0: ले लेना, तो छोटी छोटी शुरुआत छोटे से होती है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक रीजन ऐसा है, जब तंबाकू का सेवन किया जाता है
1: जी,
0: आइदर स्मोक से या स्मोकलेस से, तो अपने ब्रेन में एक केमिकल्स जो है
1: जी,
0: वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो केमिकल का नाम है डोपामिन।
1: ओके।
0: और डोपामिन जो कहते हैं इसको हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं
1: जी,
0: वो जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में बढ़ता है तो लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं, और सिंपल भाषा में बोले तो किक आती है उनको। और किक के वजह से लोग ये पर्टिकुलर ड्राइवर्स ये किक के वजह से ये तंबाकू का सेवन करते हैं। तो ये जो देन शुरुआत में बहुत कम मात्रा में तंबाकू की सेवन बहुत कम मात्रा में डोपामिन लेवल बढ़ता है।
1: अच्छा।
0: लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे आगे ये लत बढ़ती है तब वो डोपामिन लेवल बढ़ता है, तब तंबाकू

0: का लेवल कंजम्पशन की मात्रा भी बढ़ जाती है।
1: अच्छा,
0: उसको कहते हैं कि निकोटीन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर्स, वो जो है वो रेजिस्ट हो जाते हैं, तब थोड़ा भी डोपामिन बढ़ने के लिए ज्यादा मात्रा तंबाकू की कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है। तो ये विशेष साइकिल तैयार होती है,
1: यानी पहले एक ग्राम खाने पर भी जो खुशी मिलती थी,
0: हाँ,
1: वो दस ग्राम खाने के बाद भी नहीं मिलती है।
0: आगे
1: फिर वो मात्रा बढ़ती जाती है,
0: बढ़ते बाद इसलिए वो उसकी लत लगती जाती है और पेशेंट उसके पूरी अधीन हो जाता है, उसकी पूरी डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, देन वो बीमारियां शुरू होती है।
1: अच्छा, फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक बार लत लग जाए तो फिर वो कौन कौन सी बीमारियां, बहुत लंबी लिस्ट है।
0: यस, बहुत बड़ी लिस्ट है। शुरुआत में लोगों को लगता है कि कैंसर ठीक है, होता है, 100% होता है वो, लेकिन उसको टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले जो होते हैं कि मैंने पहले बताया कि पहला तो जब तंबाकू खाते हैं तो पहला हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और कोई वो नोटिस नहीं करता है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, देन ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, देन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है देन डेफिनेटली वो हार्ट पे उसकी असर होने लगती है, तो देन हार्ट अटैक आने के रिस्क बढ़ जाती है। देन जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पैरालिसिस उसके भी, जब तंबाकू कंज्यूम करते हैं तो हमारे जो खाने की जो पचन शक्ति है वो पुअर हो जाती है और उसके वजह से लोग उनको अपचन समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की दिक्कत होती है। जब ये अपचन होता है तो बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट विटामिन या कैल्शियम मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होने चाहिए वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और उसके वजह से पर्टिकुलरली कैल्शियम जो बोलते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आप तो बता रहे हैं तंबाकू खाने का ये असर है,
0: ये
1: साइड देखा गया है।
0: हाँ,
1: कि वो जब तक वो तंबाकू नहीं खा लेते, हाँ, सुबह सुबह चाय पीने के बाद या सिगरेट नहीं पी लेते, तब तक उन्हें हाजत नहीं आती है और वो टॉयलेट नहीं जाते।
0: वो एक मिथ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अपचन होता है तो कैल्शियम, सबसे बड़ा कैल्शियम का प्रॉब्लम शुरू होता है और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसलिए वजह से बेसिकली हड्डियां और मसल्स में कैल्शियम की बहुत नीड रहती है, जरूरत रहती है। तो ये मसल्स एंड हड्डियां भी वीक हो जाती है और ऐसे
1: बोन डेंसिटी कम हो जाता है,
0: बोन डेंसिटी कम हो जाता है। तो ऐसे जो तंबाकू जो खाने वाले लोगों में बैक पेन, मसल्स पेन और फ्रैक्चर की मात्रा भी ज्यादा रहती है। देन तंबाकू खाने की वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाती है। और उससे अलावा लोग ड्यूटी पे रहते हैं तो लंच या डिनर या स्किप करने के लिए भी लोग तंबाकू खाते हैं। तो ये सब की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से जैसे कि जो क्षय रोग या टीबी शरीर की बीमारी का उनको ज्यादा खतरा रहता है
1: जी।
0: और ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द एंड या नॉट द लीस्ट, ये कैंसर की बीमारी
1: जी। जी,
0: अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तंबाकू को सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर होता है और भारत देश पूरे विश्व में
1: जी
0: तंबाकू की वजह से होने वाले
1: कैंसर के
0: मुंह के कैंसर के प्रथम नंबर पे आता है।
1: ओहो।
0: और ये कलेक्टिवली जो भी मैंने बीमारियां बोली उसके वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोग की मृत्यु होती है। तो ये श्रोताओं को जानना बहुत जरूरी है,
1: ये बहुत दर्दनाक
0: चीज है,
1: मगर सत्य है,
0: लेकिन ये सत्य है
1: जी।
0: और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ,
1: हाँ,
0: ये ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के रिपोर्ट में लिखा है
1: जी, जी, जी। हमने ये भी सुना है डॉक्टर साहब कि तंबाकू खाने से डायबिटीज होता है, मधुमेह।
0: यस, इस पे थोड़ा बाहर दूंगा
1: जी जी,
0: कि पहला तो हम समझ लेते कि पूरी दुनिया भर में दो देश में सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोडक्शन होता है, उसका कंज्यूम भी होता है, वो है एक है चीन और दूसरा नंबर पे हमारा भारत देश है।
1: अच्छा,
0: और दोनों देश में ही सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है।
1: अच्छा,
0: तो ये इनडायरेक्टली कोरिलेशन है कि तंबाकू वजह से डायबिटीज हो सकती है। आज की तारीख में देखे तो पूरी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज भारत में पाए जाते हैं, पहले दो साल पहले चाइना में था, अभी भारत में हो गया, और दोनों में ज्यादा ही कंजम्पशन होता है। जैसे मैंने बताया कि तंबाकू में 7,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स रहते हैं, वो कंज्यूम करने के बाद हमारा जो डायबिटीज का जो मेन जो कंट्रोल मैकेनिज्म है इंसुलिन
1: जी, जी।
0: ये जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को और इंसुलिन के फंक्शन को ये तंबाकू अल्टर करता है।
1: अच्छा,
0: और बहुत सारे रीजंस है और इसके वजह से शुगर कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी बॉडी का डिस्टर्ब हो जाता है।
1: अच्छा,
0: अगर आप WHO की साइट पे जाओगे और डायबिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो उसके जो पांच प्रमुख कारण है उसमें पांचवा कारण है तंबाकू का व्यसन।
1: अच्छा,
0: तो लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि तंबाकू वजह डायबिटीज भी होती है।
1: मगर जरूरी नहीं कि डायबिटीज है तो उसको तंबाकू की लत होगी,
0: नॉट नेसेसरी, बट तंबाकू खाने वालों को रिस्क ज्यादा रहती है,
1: इसकी रिस्क है, तो डायबिटीज हो सकता है।
0: यस, हो सकता है, और वो डायबिटीज मतलब बहुत कड़वी बीमारी है।
1: जी जी जी, तंबाकू अगर कोई किसी को अगर उसका नशा है, लत है और वो छोड़ना चाहे तो निश्चित रूप से बहुत उसके

0: फायदे उसको मिलेंगे,
1: yes, yes.
0: और उसके विड्रॉल सिम्टम्स भी होते होंगे,
1: yes.
0: तो हमें दोनों बातें बताइए,
1: yeah.
0: छोड़ने के बाद में विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं,
1: yes,
0: कैसे होते,
1: yes,
0: हैं,
1: yes.
0: और एक बार वो छोड़ दे, निश्चय कर ले, अपना निर्धार पक्का हो जाए उसका कि छोड़ना है, तो उसके क्या क्या फायदे उसे होने वाले?
1: तो पहला हम उसके फायदे के बारे में बोलेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: जब तम्बाकू अगर सपोज वो सेरे हर एक घंटे में खाता है
0: जी.
1: या किसी बहुत बार तो वो जब नींद से सुबह में उठता है तो अब कितने समय में उसको तम्बाकू की जरूरत पड़ती है, वो एक भी बहुत इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फैक्टर है.
0: अच्छा.
1: उसकी उसकी लत के बारे में हमें मालूम पड़ता है कि उठने के बाद कितने समय के बाद उसको तम्बाकू खाने की जरूरत पड़ती है. तो जब तम्बाकू उस समय पर नहीं खाया तो पहला तो उसकी हार्ट बीट्स नॉर्मल रहती है.
0: अच्छा.
1: वो बहुत जरूरी है हार्ट हेल्थ के लिए,
0: बेशक
1: हृदय की स्वास्थ्य के लिए उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है. तो वो नॉर्मल रहने लगती है. देन उसके बाद ब्लड प्रेशर जो, इसलिए हम जब भी एज अ डॉक्टर हम जब किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हम उसको पूछते हैं अगर तम्बाकू आप एडिक्ट हो तो आधे घंटे के बाद ही हम आपका बीपी चेक करेगा अगर आपने, क्योंकि हमें मालूम है वो ज्यादा ही दिखाने वाला है.
0: अच्छा.
1: तो इसलिए तो इनडायरेक्टली जब तम्बाकू का लत या एडिक्शन छोड़ते हो तो बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है.
0: अरे वाह.
1: तो ये दोनों हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाता हो तो छोटा का हार्ट अटैक के रिस्क भी कम हो जाते
0: हैं. कम हो जाती है. जी जी जी.
1: देन मैंने बताया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, हमारे हड्डियां हमारे मसल्स वो स्ट्रांग होने लगते हैं. देन आगे जाके छोटा का तम्बाकू के जो खाने वाले जो सबसे डेंजर प्रॉब्लम है वो है कैंसर, उसकी भी रिस्क कम हो जाती है. देन डायबिटीज में हमारे पास लोग है जिन्हें तम्बाकू छोड़ दी है, उनकी डायबिटीज की गोले भी बन हो गई क्योंकि शुगर भी नॉर्मल होने लगी है अभी उसकी.
0: अच्छा.
1: ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है कि तम्बाकू की लत छोड़ने के बाद उनकी डायबिटीज की गोलियां भी बन हो गई है.
0: क्या बात.
1: तो ये सब उसके फायदे है. तो हमें ये जानना जरूरी है कि इसके क्या फायदे है छोड़ने के बाद. तब यस ये जरूरी है कि जब तम्बाकू में जो 7000 केमिकल है उसमें से एक केमिकल का नाम है निकोटीन.
0: जी.
1: और निकोटीन की वजह से हमारे ब्रेन में डोपामिन बढ़ता है और उसकी वजह से उसकी लत लगती है.
0: अच्छा.
1: तो जब तम्बाकू सडनली आप छोड़ देते हो, लोग कहते हैं कि हम आज मैं अगर 5 बार खाता हूं तो कल 4 बार खाऊंगा, तीन तो ऐसा कभी नहीं होता. उसको झटके से ही छोड़ना है.
0: अच्छा.
1: तो ही फायदा होगा, तो ही उसकी लत छूटेगी. तो जब झटके से छोड़ते हो तब आपको निकोटीन का विड्रॉल सिम्टम 100% महसूस होगा.
0: शरीर जो है अपनी प्रतिक्रिया देता है.
1: तो महसूस होगा ही.
0: हाँ.
1: वो जो विड्रॉल सिम्टम जैसे कि वीकनेस आ जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा. अच्छा. पर्टिकुलर डाइवर कंडर को ये बहुत होता था हमारे पास. तो ये लेकिन यहाँ पे जरूरी है कितना टाइम तक ये विड्रॉल सिम्टम रहता है.
0: अच्छा.
1: वो 2 दिन से ज्यादा 2 हफ्ते चलता है, उसके बाद अपनी बॉडी खुद को एडजस्ट करने लगती है.
0: जी जी जी.
1: उसके लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है.
0: तो पूरा शरीर अपने जो है सामान्य स्थिति में आ जाता है
1: बस,
0: जैसा तम्बाकू खाने से
1: पहले था वैसा. बस थोड़े दिन के लिए अपने को सहन करना है और वो समय अगर निकाल डाला तो वापस कभी तम्बाकू खाता नहीं.
0: कितनी जरूरी बात है.
1: यस.
0: हमारे श्रोताओं को उनमें से किसी को अगर ये लत है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वो छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत छोड़ दें,
1: झटके से छोड़ना है.
0: झटके से एक साथ
1: बस.
0: और उसके बाद
1: 2 दिन से 2 हफ्ते
0: सोचना ही नहीं. 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
1: ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते
0: ये लक्षण रहेंगे
1: बस.
0: विड्रॉल सिम्टम्स और उसके बाद वो सामान्य
1: हो जाएगा. अपनी बॉडी अपने आप को रिकवर करती है.
0: वाह वाह. तो फायदे हमने जान लिए. हम तम्बाकू की बातें जब होती है तो एक एक्ट है, एक ऐसा नियम है, कुछ वो कानून है, कोप्टा एक्ट कुछ ऐसा कहते हैं.
1: यस.
0: ये क्या होता है, क्या कोप्टा एक्ट क्या है?
1: सी जैसे तम्बाकू की वजह से हमारे पास जैसे सबसे ज्यादा मौतें होती है, खर्चा होता है.
0: जी जी.
1: 100 रुपए के टैक्स के सामने 816 रुपए का हमें खर्चा हो रहा है. तो ये उसको और कम करने के लिए कुछ कानून बनाया है, उसको कोप्टा एक्ट बोलते हैं. उसका फुल फॉर्म है कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट.
0: अच्छा. कंजम्पशन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, कोप्टा एक्ट.
1: कोप्टा एक्ट.
0: अच्छा.
1: उसके अंतर्गत आपको पब्लिक प्लेस में तम्बाकू का कोई भी प्रकार का सेवन प्रतिबंध है. इज अ पनिशेबल ऑफेंस.
0: जी जी.
1: देन वो खाके पब्लिक प्लेस में थूकना भी इज अ पनिशेबल ऑफेंस. देन उसके एडवर्टाइजमेंट
0: जी
1: जो होती है.
0: हाँ.
1: वो भी अलाउड नहीं है आपको कोई भी प्रकार के. सो ये एक एक्ट इसलिए लाया है कि लोग एक दूसरे को देख के जो खाते है वो न खाए और उसकी लत और उसको कम करते जाए हम लोग. उसका फायदा हुआ है, कम हुई है.
0: हाँ.
1: जो लोग खाने वाले परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन जो उसे और हमें आगे लेके जाना है उसको एक्ट को. और अभी कुछ सरकार ने उसको कड़क किया है कि उसके अंतर्गत वो सरोगेसी एड बोलते हैं. अच्छा। उसका

0: बैंड किया है कि
1: हाँ
0: कुछ नाम सेम रखते हैं लेकिन कुछ अलग प्रोडक्ट रहता है। एक्स तम्बाकू का जो प्रोडक्ट था पहले
1: जी,
0: उसको
1: जी।
0: खाली नाम सेम रखते हैं और प्रोडक्ट कुछ अलग रहते
1: होता है। तंबाकू ही है मगर उसको कुछ एक नया नाम और नया रूप दे देते हैं,
0: या तो फिर उसका प्रोडक्ट वो अलग कर देते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: जो पहले वो नाम तंबाकू के वजह के लिए यूज होता था, अब वो तंबाकू की वजह नहीं होते, कुछ अलग प्रोडक्ट जो नॉर्मली लोग खाते पीते हैं उसके लिए, तो सर को ऐड बोलते हैं, उसको भी बैन किया है।
1: जी, जी।
0: तो ये इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू का कंजम्पशन कम हो जाए, उसकी वजह से जो बीमारियां है कम हो जाए और खर्चे भी कम हो जाए।
1: तंबाकू तो नहीं मगर तंबाकू जैसे और तंबाकू इस्तेमाल करके कुछ नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इसी की अभी बात कर रहे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि लोग सीधे सीधे तंबाकू तो नहीं खाते मगर ऐसे प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्टली जिससे तंबाकू उनके शरीर में जाता है।
0: जैसे अभी बहुत कुछ आ गया है, वो इनहेलेशन आ गया है।
1: हाँ हाँ,
0: भले सिगरेट नहीं पीते लेकिन कुछ इनहेलेशन तरीका
1: सिगरेट
0: आ गई है, उसको भी अलाउड नहीं है, वो भी हानिकारक है।
1: जी जी,
0: उसमें हानिकारक।
1: हाँ, तो ये जो तंबाकू ना खाके अगर ये ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी उतना ही धोखा, उतना ही रिस्क।
0: यस यस,
1: जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता वो गलती से उसके शरीर में तंबाकू चला जाए तो पहला रिएक्शन बॉडी का तो ये होता है कि जैसे कभी पान खाते हुए पान में किसी ने हल्का सा तंबाकू डाल दिया और वो हमने खा लिया तो तुरंत उल्टियां होने लगती।
0: यस यस यस, और बहुत बार तो जैसे,
1: लेकिन जिनको लत लगती है उनको पहली बार ऐसा नहीं होता,
0: उनको नहीं होता। ये जो आपने बताया वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: हस्बैंड स्मोक करता है,
1: जी जी,
0: उसकी वाइफ है या उसके बच्चे है,
1: हाँ,
0: तो उसमें भी धुआं जाता है ना।
1: बिल्कुल, हाँ,
0: वो धुआं जाता है। देन या घर में कोई तंबाकू खाता है तो उसको देख के बच्चे भी उसके खाने लगते हैं।
1: अच्छा,
0: तो ये बहुत जरूरी है। तो पैसिव स्मोकिंग की वजह से इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे कोई एक फैमिली में एक हस्बैंड स्मोक करता है
1: जी,
0: और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो उसके वो धुआं उसको जाए तो उसके बच्चे को भी खतरा है
1: जी,
0: जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है, उसको भी खतरा है,
1: तो उस पर भी असर हो रहा है,
0: बहुत खतरा है उसके लिए, सबसे ज्यादा खतरा है उसको तो
1: जी।
0: द पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं उसको।
1: हाँ,
0: ये सिर्फ चीजें लोगों को आई डोंट नो मालूम है या उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, आई डोंट नो, बट लोगों को मालूम होना जरूरी है ये बातें।
1: अच्छा, हमने सुना है कि कुछ दवाइयों के तरीके में कुछ तरह के मेडिसिन है, उसमें तंबाकू का इस्तेमाल भी होता है?
0: नहीं, आई डोंट थिंक सो।
1: अच्छा,
0: आई डोंट थिंक सो।
1: या कुछ लोगों ने कहा कि हमें तो फलां डॉक्टर साहब ने कहा है कि पान में थोड़ा तंबाकू खा लिया करो ताकि आपका पेट अच्छा रहे।
0: नहीं, ये सब मिथ्स है, मिथ्स।
1: अच्छा,
0: है, मिथ्स है।
1: ऐसा कुछ
0: सी तंबाकू इज एनी क्वांटिटी इज नॉट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी।
1: बस वो
0: बस उसको छोड़ना ही है ना, उसको नजदीक जाना ही नहीं उसके बस।
1: हाँ,
0: बस
1: हाँ, हाँ।
0: जैसे शुरुआत में बताया, छोटा जीव है जल्दी मरेगा, बड़ा है तो बाद में मरेगा।
1: हाँ, मरेगा जरूर,
0: मरेगा जरूर।
1: तो इस कठोर सत्य को, इस कटु सत्य को जो हमें जान लेना
0: चाहिए, एक्सेप्ट करना है हमें,
1: एक्सेप्ट करना है। कोई जादुई मिक्स आपने बनाया है?
0: यस, उसको हमने,
1: ये कैसे हुआ?
0: Yes,
1: कब हुआ?
0: या
1: और इसका क्या आपको परिणाम कैसा देखने को मिला?
0: उसको हमने नाम दिया मैजिक मिक्स।
1: अच्छा,
0: मैजिक चूरन,
1: जादुई चूरन,
0: जादुई चूरन।
1: वाह।
0: जैसे अभी तंबाकू की जो एडिक्ट लोगों में दो प्रकार की एडिक्शन है, एक है साइकोलॉजिकल एडिक्शन जो 90% लोगों में, 10% लोग में फिजिकल डिपेंडेंसी है।
1: अच्छा,
0: तो 90% लोग बस उसको वो कलर का चूरन मांगता है और उसको हाथों में घसना है और खाना है, और उसका जो कैनिस्टर है या डब्बी बोल रहे हैं जो महाराष्ट्र में, तो वो उसको दिख गई तो उसको लगता है मैंने तंबाकू खा लिया।
1: अच्छा।
0: तो हमने वो बेस को ध्यान में रखते हमने चूरण बनाया है जिसमें दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी शोप और लवंग का इस्तेमाल किया है। जब उसको आप ग्राइंड करोगे तो हुबहू तंबाकू सरीका ही लगेगा।
1: अच्छा।
0: और जो चूने की जगह पे हमने राइस पाउडर यूज करते हैं उसमें।
1: अच्छा।
0: तो जब आप उसको हाथ में लेके घसोगे तो फील सेम ही आएगा कि आप तंबाकू को घिस रहे हो।
1: जो लोग तंबाकू मल के खाते
0: हैं तो उसको कलर भी वैसा ही है इसका।
1: हाँ, हाँ।
0: ना उसमें साइंस ऐसा है कि जो दालचीनी है इसकी प्रॉपर्टी है कि जो निकोटीन के विड्रॉल को ओवरकम करती है।
1: अरे वाह,
0: तो साइंस भी है उसके पीछे।
1: क्या बात है।
0: तो इसके वजह से हमने चूरन बनाया, उसका नाम रखा मैजिक मिक्स।
1: मैजिक मिक्स,
0: मैजिक मिक्स।
1: वाह वाह वाह।
0: और वो मैजिक ने सच में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैजिक किया है।
1: हाँ।
0: और वो खा के बहुत सारे लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है।
1: वाह वाह।
0: तो मैं लोगों को बोलूंगा कि उसकी लिस्ट अवेलेबल है यूट्यूब में।
1: अच्छा।
0: मैजिक मिक्स मेरा नाम डाल के आपको मिल जाए कैसे बनाना है।
1: हाँ।
0: हमने उसको कॉपीराइट किया है, आप कोई भी घर पे बना सकता है।
1: अच्छा।
0: और उसको यूज करे और अपनी जब भी तलब लगे तंबाकू की जगह उसको खाए।
1: मतलब ये मैजिक मिक्स कोई कमर्शियल प्रोडक्ट?
0: नो, इट इज नॉट कमर्शियल प्रोडक्ट।
1: ये सबके लिए है, सबके फायदे,
0: सबके फायदे के लिए। हमने खाली कॉपीराइट किया कि उसको कमर्शियल यूज कोई ना करे उसको।
1: अच्छा।
0: आपके लिए ये, आप खाओ, खुद बनाओ,
1: सबके लिए ये मुफ्त।

0: है, फ्री है,
1: खुद बनाइए घर पे और खाइए।
0: तो ये फॉर्मूला जो है वो यूट्यूब पे देख करके बनाया जा सकता है।
1: और मेन बात उसको खा के थूकना भी नहीं है। तो स्वच्छ भारत अभियान को भी हम प्रमोट कर रहे हैं उससे।
0: क्या बात है, वाह वाह।
1: उसके खाने के बाद वो निगलना ही है, क्योंकि हाँ। वो निगलने के बाद बहुत सारे बेनिफिट देता है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: सब ये अपने गर्म मसाले फायदे करेगी हमारे बॉडी को,
0: हमारे सुनने वालों के बेनिफिट के लिए।
1: यस,
0: हम इस मैजिक मिक्स का जो फॉर्मूला है
1: हाँ।
0: उसे एक बार दोहराते हैं।
1: हाँ।
0: इसमें क्या क्या चीजें आपने डाली?
1: दालचीनी, अजवाइन, जीरा, बड़ी सौंफ,
0: सौंफ
1: और एक आध लौंग।
0: अच्छा,
1: उसको मिक्स करके।
0: लौंग तो एक ही ले रहे हैं, मगर बाकी जितनी
1: बाकी इक्वल क्वांटिटी,
0: इक्वल क्वांटिटी।
1: उसको ग्राइंड करना है मिक्सचर में। मिक्सचर होगा वो तम्बाकू सरीका लगेगा।
0: अच्छा, लेकिन
1: उसमें तम्बाकू नहीं है। चूने की जगह पे राइस पाउडर यूज करने का, वो भी घर
0: का
1: चावल का आटा।
0: अच्छा,
1: तो ये आप करके उसको सेम कनेक्टर में
0: तम्बाकू मलने की आदत है,
1: ऐसे ही मल के खाओ,
0: मल के जो है अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करें,
1: एक्शन कंप्लीट,
0: और उसके बाद चाहे तो उसको होठों में दबा ले थोड़ी देर,
1: या दबा लो
0: उसका जो जूस निकलेगा
1: वो
0: आपके शरीर के लिए फायदे
1: करेगा।
0: वाह,
1: उसको थूकना भी नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत ही जादुई बात है ये तम्बाकू के बारे में, इस लत को छोड़ने के लिए जो है कारगर सिद्ध होगी। तो डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम के आखिर में कुछ तम्बाकू छोड़ने के बारे में कुछ पते की बात हो जाए, आप क्या बताना चाहेंगे इस मौके पे?
1: मैं भारत के वासियों को बताना चाहता हूँ कि तंबाकू कभी भी हमें फायदा नहीं करता है, उससे सिर्फ नुकसान ही होता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक भी नुकसान होता है।
0: जी,
1: वो लोगों को मालूम नहीं है। ऐसा सर्वे हुआ है कि अगर आपने तंबाकू की लत छोड़ दी तो आपका जो एक इंडिविजुअल घर की जो आर्थिक परिस्थिति 10% इंप्रूव हो जाती है।
0: क्या बात है। मुझे एक और बात याद आई कि मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त था और वो कृषि बैकग्राउंड से था, उसके घर वाले जो है खेती करते थे, तो वो कहता है वो तंबाकू खाया करता था बहुत नियमित रूप से, और वो कहता है मुझे सांप ने अगर काट लिया तो मुझे जहर नहीं चढ़ेगा। ये कितना बड़ा मिथ है, आप जरा
1: मिथ सी है, सब मिथ सी है,
0: बड़ी गलत,
1: बहुत गलत फहमी है। ये तंबाकू छोड़ना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: वो सिर्फ वो इंडिविजुअल को नहीं खाता है, पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है वो। जैसे हमने देखे, आप किसी को अगर देखना है तो टाटा हॉस्पिटल में जाके एक बार चक्कर मार के आए, बस खाली समझ जाएंगे ये तंबाकू से क्या गड़बड़ होती है।
0: जी, जी।
1: लोगों को जिंदा है लेकिन मुंह में खाना नहीं खा सकते, नाक में नलीट से खाना खाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने फैमिली को, अपने देश को स्ट्रांग करने के लिए
0: जी,
1: उसको मजबूत करने के लिए, शारीरिक और मानसिक और आर्थिक मजबूत करने के लिए हमें तंबाकू की लत को छोड़ना ही है।
0: और कोई भी फॉर्म हो तंबाकू का,
1: कोई भी फॉर्म,
0: या तो कच्चा तंबाकू है या वो उसकी पाउडर
1: नसवाली है,
0: स्मोकिंग है,
1: कोई भी प्रकार का
0: तंबाकू से,
1: बस उसको छोड़ दो, बस खत्म करो, अपनी फैमिली और अपने देश के लिए उसको छोड़ दो।
0: बहुत ही अच्छी बातें आज तंबाकू विरोध जो है इसके बारे में आपने बताई, और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, आप यहाँ आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी।
1: थैंक यू,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद। तंबाकू की वजह से भारत में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू की वजह से मनुष्य, उसकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ जाती है, और उसके वजह से उनकी फैमिली बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। तो मैं आज तंबाकू विरुद्ध दिवस के निमित्त श्रोताओं को अपील करूंगा कि तंबाकू की व्यसन को पूरी तरह छोड़ दे, और झटके से छोड़ दे, और अपने फैमिली को और हमारे देश को मजबूत बनाए। धन्यवाद।
2: देख

विश्व तंबाकू दिवस पर अभी आप सुन रहे थे बीईएसटी के चीफ मेडिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंगल से जयंत पात्रीकर की ये बातचीत। आज का मैटिनी शो बस यहीं तक, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3 करोड़ 33

0: लाख से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस पहुंची अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज अभिनेता परेश रावल का जन्मदिन है। बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं हम उन्हें और उनकी फिल्मों के गाने आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। भागम भाग इस फिल्म का गाना रेमो फर्नांडिस और सुजेन की आवाजों में, समीर के बोल संगीत प्रीतम का।

ये गाना है उदित नारायण की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, वीजू शाह का संगीत, फिल्म का नाम रावण राज।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं आंखें फिल्म का गाना, नितिन रायकवार आदेश और अरुण बख्शी की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल, संगीत है जतिन ललित का।

अगला गीत सुनते हैं कार्यक्रम का ओह माय गॉड, इस फिल्म का गाना है कैलाश खेर, मीत ब्रदर्स और अनजान की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: ये है राजा फिल्म का गाना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये हंगामा फिल्म का गाना शान और साधना सरगम की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
6: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना गोलमाल, इस फिल्म का गाना शेखर और स्नेहा पंत की आवाजों में विशाल दादलानी

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अतिथि तुम कब जाओगे। इस फिल्म का गाना अनुपम आमोद की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग आज से भारत की 5 दिन की यात्रा पर हैं। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत पहुंचा। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये भारत की पहली यात्रा है। वे आज सुबह बिहार के बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। वे कल नई दिल्ली में म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। उनका सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति यू मिन आंग की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों के और अधिक मजबूत तथा प्रगाढ़ होने की आशा है। म्यांमार भारत की पड़ोसी पहले, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में विशेष स्थान रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस होंगे। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जो आज सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल चौहान को आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदाई समारोह में जनरल चौहान ने कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सेवानिवृत्त होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 4 दशकों से अधिक की सेवा के बाद जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। प्रदेश में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 25 मई से शुरू हुए अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई और पेयजल संरचनाओं का जीर्णोद्धार तथा श्रमदान के साथ जागरूकता आयोजन रखे जा रहे हैं। इसी क्रम में सरहदी जिले जैसलमेर में रिचार्ज शॉफ्ट संरचनाओं का लोकार्पण किया गया। इनके जरिए जल संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाई गई। सवाईमाधोपुर के बाडोलास में गंभीर नदी पर बने एनीकट पर जल पूजन और पीपल पूजन का आयोजन हुआ। इसी तरह पाली जिले के सादड़ी में ऐतिहासिक प्रतापगढ़ बावड़ी पर भी कार्यक्रम रखा गया। जिले के सुमेरपुर में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने डायवर्जन चैनल का लोकार्पण किया। इस दौरान निकाली गई प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। वित्तीय सेवा विभाग ने लावारिस वित्तीय संपत्तियों से संबंधित जानकारी लोगों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह पीएसबीए के सहयोग से विकसित किया गया है। पीएसबीए देश के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक केंद्रीकृत कंपनी है। वित्त मंत्रालय ने कहा

पोर्टल वित्तीय प्रणाली से जुड़े ऐसे बैंक खातों, बीमा दावों, शेयरों, लाभांश और म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाता है जिनका कोई दावेदार नहीं है। कोटा जिले में पशुओं से इंसानों में फैलने वाली बीमारी ब्रुसेलोसिस का प्रकोप दिखाई देने पर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। नगर निगम की बंधा गौशाला और दो निजी गौशालाओं की 11 गायों में इस रोग की पुष्टि हुई है। संक्रमित गायों को आइसोलेट किया गया है। नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर खुशाल सोलंकी ने बताया कि इस बीमारी से संक्रमित पशु का दूध पीने और इनके संपर्क में आने वालों में भी इनकी चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। सूचना मिलने पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा टीम गठित कर स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की ओर से बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान शुरू हुआ। 29 जून तक चलने वाले अभियान के तहत 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को खुराक दी जाएगी। पाली में सभी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और जिला अस्पताल में अधिक से अधिक बच्चों को दवा पिलाने के इंतजाम किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज 30 जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। कल शाम मौसम में अचानक बदलाव के बाद उत्तर पूर्वी जिलों में तेज अंधड़, बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, झुंझुनू और करौली सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई। राजधानी जयपुर और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज बने रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। जी हाँ, शाम का वक्त हो और अगर आपको पता चले कि आपकी पसंद का आलू का बना हुआ कोई बहुत ही मज़ेदार नाश्ता आपके सामने आया है तो आप भी यही कहेंगे ना कि उनको देखा तो दिल उस पर आ गया है। मदन मोहन का इसमें संगीत है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों का राजा है और वो हर किसी के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बेफिक्र रूमानी शाम की याद दिलाती है आज की इबारत।

से पढ़कर मन में एक चुलबुली और हास्य से भरी तस्वीर उभर रही है, जिसमें खुद से बातें करते करते अचानक से शायरी और फिर खाने पीने की चीजों जैसे कि ठंडे पानी, समोसे, बर्फी पर आ जाते हैं। ये बोलचाल की भाषा का एक बहुत ही प्यारा और अनूठा मिश्रण है, जो कह रहा है कि जीवन की उलझनों को भी हंसी मजाक के चाशनी में डुबोकर आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी में चाहे जितनी समस्याएं हो, हंसी मजाक का स्वाद कभी कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है।

0: कम नहीं होना चाहिए। अंत में गुजरे हुए उन सुनहरे दिनों की याद इस पूरी इबारत को एक बहुत ही भावुक और प्यारा सा मोड़ दे देती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हर रोज हसीन शाम को इतने लू वाली गर्मी है, शाम को ऑफिस से आने के बाद ठंडे ठंडे पानी से दोबारा शावर में नहाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की दिनचर्या शुरू हो पाती है और हम थोड़े से रिलैक्स हो पाते हैं। तो चलिए आपके दिल दिमाग को हम थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि गर्मी ज्यादा है और ठंडे पानी से नहाने का इसमें जो मजा है वो तो और भी है ही। पति पत्नी और वो इस फिल्म का गाना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, रविंद्र जैन का संगीत।
1: ओ ठंडे ठंडे पानी।

0: दो पड़ोसियों से, झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।
1: मम्मी को तो डैडी से

आलू न दिखावे में बड़ा है न नाम में, लेकिन काम में सबसे बड़ा है। यही उसकी असली पहचान है, जो हर मौसम, हर सब्जी और हर थाली में फिट हो जाए, वही असली राजा कहलाता है। आलू, आलू की कहानी सादगी की जीत है, कम में भी सबसे ज्यादा स्वाद देने की कला है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे बटाटा वड़ा और फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। और एक हमारे साथी जो है, उन्होंने हमें अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की शुभकामनाएं दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की खोज दक्षिण अमेरिका में हुई थी और आलू की कहानी वहीं से शुरू हुई थी। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बात चल रही है तो आलू के पराठे, समोसे, पकौड़े से लेकर चिप्स, पापड़ तक सभी का स्वाद निराला है। सुबह सुबह आलू के पराठे मिल जाए, दोपहर में आलू की सब्जी और पूरी मिल जाए और शाम को समोसे मिल जाए तो कहना ही क्या। ये सिर्फ आलू ही नहीं, ये हमें सिखाता है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे आलू हर सब्जी में मिलकर इसका स्वाद बढ़ा देता है, वैसे ही हमें जीवन में होना चाहिए, सबके साथ मिलकर चलना चाहिए ताकि हमारा महत्व हमेशा बना रहे। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। यद्यपि आज आलू भारतीय रसोई का एक अभिन्न अंग बन गया है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से भारतीय मूल की सामग्री नहीं है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू महज एक सब्जी नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो निश्चल साथी है जो हर दूसरी सब्जी के साथ अपनी पहचान मिटाकर घुल मिल जाता है। कभी वह गोभी के साथ जुगलबंदी करता है तो कभी मटर के साथ मिलकर एक नया स्वाद रचता है। वह किसी राजा के थाल का हिस्सा भी है और एक गरीब की झोपड़ी में तसल्ली का निवाला भी है। और एक साथी लिख रही है कि मुझे तो पता ही नहीं आज आलू दिवस है, आज अजीब संयोग बना है, आज हमारी श्रीमती जी ने आलू के पराठे बनाए हैं, दही के साथ सेवन कर रहे हैं हम। बहुत धन्यवाद आपका। एक साथी लिख रहे हैं कि बेहद खूबसूरत गीत के साथ शुरुआत की है। वैसे आलू दिवस पर हमारे यहाँ आलू पालक टमाटर की सब्जी बनी है, मुझे आलू बहुत ज्यादा पसंद है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी रेसिपी पर सबसे ज्यादा आता है। कौन सी रेसिपी है जब आप ये कहते हैं कि ये दिल मुझे बता दे कि क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। भाई भाई फिल्म का गाना, गीता दत्त की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत, अशोक कुमार और श्यामा पर फिल्माया गया गाना।

आलू से बना हुआ कोई स्वादिष्ट नाश्ता जब आपके घर में बन रहा हो तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब वो सुगंध फैलती है तो ऐसा भी कभी होता होगा ना कि आसपास में आपके कोई पड़ोसी, आपके कोई नाते रिश्तेदार, आपके कोई दोस्त आपका दरवाजा खटखटाते होंगे और पूछते होंगे भाई आज क्या बन रहा है। एक साथी लिख रहे हैं, आलू वो सादगी है जो हर स्वाद में रंग भर देता है, इसलिए हर घर की रसोई में उसकी खास जगह होती है। हर सब्जी उसका साथ पाकर और भी स्वादिष्ट हो जाती है। आलू सच में रसोई का राजा है।

तो बताया क्या आपने कि आपका दिल आलू से बनी हुई कौन सी चीज पर आ गया है? बहुत सारे श्रोताओं ने इतनी सारी बातें लिखी है, लिखते हैं कि लाल टमाटर हरे मटर में मंडी चलने की ठानी, आलू भी तैयार हो गया, साथ चली गोभी रानी। मुझे आलू इसलिए पसंद है कि वो सभी के साथ बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए सबको आलू भाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आज भी लंच में दही वाले आलू बनाए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि उदयपुर जिले में फतेह स्कूल के पास में एक जगह है जहां के आलू बड़े बहुत फेमस है, मैं कल परीक्षा देने जा रहा हूं, जरूर वहां के स्वादिष्ट आलू बड़ों का आनंद लूंगा। और एक साथी लिख रहे हैं कि इबारत कहां से कहां पहुंचा दिया आपने, आज आलू दिवस पर गीतों का मजा मिलेगा। और लिखा है कि आलू दुनिया के हर कोने में मिलते हैं, आलू बिना कोई रसोई बन नहीं सकती, ये सभी सब्जियों में मिक्स हो जाता है, चिप्स और पराठा तो आलू के ही स्वादिष्ट होते हैं, खिचड़ी और तहरी में मिलाकर उसका टेस्ट भी बदल दिया जाता है जो सबको पसंद आता है। अब तो मिठाइयों में भी आलू का प्रयोग होने लगा है, समोसा तो बिना आलू के बन ही नहीं सकता, आलू की पकौड़ी तो चटनी के साथ गर्मा गर्म खाने में बड़ा ही मजा आता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है, आलू पौधे का भूमिगत तना होता है, जड़ नहीं होता है। एक साथी ये लिख रहे हैं कि आलू सब्जियों के राजा है, पर मैं तो कहूंगी रसोई की रानी है, एक माँ जानती है कि बच्चों को कैसे सब्जी खिलाना पड़ती है, आलू के साथ कुछ मिला दो तो खा लेते हैं, और हमारा जो बिहारी खाना है वो तो बिना आलू के पूरा ही नहीं बनता है, दाल भात चोखा लिट्टी चोखा, और अगर आलू नहीं है तो ये व्यंजन अधूरा है। संक्रांति में दही चूड़ा, उसके साथ आलू दम, सफर में जाना है पूरी के साथ आलू की भुजिया, बरसात के दिनों के लिए आलू का सूखोता, अतिथियों के लिए आलू के चिप्स, सर्दियों में आलू के अचार, आलू कचालू बेटा कहां गए थे। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आलू सब सब्जियों के साथ घुल मिल जाता है, और अपने यहाँ आलू का रायता बहुत पसंद किया जाता है जो दही के साथ बनाया जाता है। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि अगर ठंडे ठंडे पानी से ही नहाना था तो सूरज को और पास क्यों बुलाना था। बात तो आपकी सही है, लेकिन अगर इस गाने में अगर आप गौर करेंगे तो एक लाइन आती है कि आलू टमाटर का साग, जी हाँ, जब बहुत भूख लगी हो तो आलू टमाटर का जो साग होता है ना, वो हमारे मन को कितना ललचाता है, ये इसमें दिखाया गया है, इसीलिए हमने इस गाने को चुना है। तो सुनिएगा आप ये गाना। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू साधारण सा दिखता है लेकिन हर रसोई की जान है, हर मसाले और हर सब्जी के साथ मिलकर स्वाद दो गुना कर देता है, इसलिए उसे सब्जियों का राजा कहा जाता है। जिस थाली में आलू हो वो थाली अधूरी नहीं लगती, वो हर स्वाद को पूरा करने की ताकत रखता है। आलू की खासियत यही है कि वो खुद में सादा होकर भी हर व्यंजन को खास बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और बैराग फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। ऐसा कभी होता होगा ना

कि आपने फरमाइश की है कि मुझे आलू से बना हुआ समोसा खाना है, लेकिन बन कुछ और जाता है, आलू के पकोड़े बन जाते हैं या आलू की टिकिया बन जाती है, तो आपके दिल में यही आता होगा ना कि अरे मैंने तो ये बनाने के लिए कहा था पर आज तो ये बन गया है, कुछ अलग ही हो गया है। चलिए ऐसा ही कुछ गाना है, सुनते हैं बैराग फिल्म से।

ऐसा भी होता है ना कि रेसिपी कौन सी बनने वाली होती है और क्या बन जाती है, हम कोशिश करते हैं एक नई चीज़ कुछ बनाने की और कुछ और बनाने का सोचते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाता, कुछ और ही बन जाता है। हो सकता है कि वो उससे ज़्यादा स्वादिष्ट, और कभी कभी वो स्वाद जिसकी हम उम्मीद रखते हैं वो कभी नहीं आता है, तो भी मन बड़ा खिन्न हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू को ध्यान से खाओ, क्योंकि आलू बाहर से ठंडा होता है लेकिन अंदर से गर्म होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू ज़्यादा खाओगे तो आलू जैसे हो जाओगे, और लौकी खाओगे तो लौकी जैसे बनोगे। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सचमुच संयोग है, मैंने आज आलू के पराठे ही बनाए, पति देव को बहुत पसंद है, मक्खन और अचार के साथ। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की लौंज एक प्रकार की मिठाई है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सर्दियों में नए आलू को मिट्टी की हांडी में जिसमें आग तपती है उसमें रख देते हैं, उस पके आलू खाने का अलग ही आनंद और स्वाद है। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई इसके भी दिन बहुरे हैं और वो भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू के भल्ले भी बड़े स्वादिष्ट होते हैं, दही भल्ले की तरह ही। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू और दाल की बड़ी की चटपटी भाजी बहुत पसंद है, और तो और मैंने आपका कार्यक्रम सुनकर श्रीमती जी से वही भाजी का आग्रह किया, और उन्होंने भोजन बन जाने के बाद भी मेरी फरमाइश के अनुरूप मुझे भाजी बनाकर वो दे रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि किसी पड़ोसी ने तो दरवाजा नहीं खटखटाया, पर हाँ कई बार हमारी बेटी और उसकी सहेलियों ने जरूर कहा कि बाहर से अंदर आते ही कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आलू बेसन की, क्योंकि हम जब सैंडविच के लिए मसाला तैयार करते हैं तो उसमें अहम भूमिका तो आलू की होती है, पर उस पर और भी कई चीजें डाली जाती है, सबसे तेल, फिर उसमें थोड़ा जीरा, सौंफ और खड़ा धनिया, और फिर थोड़ा सा बेसन डालकर भुनना, फिर अमचूर या नींबू डालकर उसमें उबले आलू को डालना, और फिर कहीं जाकर इस मसाले को ब्रेड में डालकर सेकना, तब जाकर सबको खिलाना, और फिर उसके बाद सबकी तारीफ पाना। एक साथी लिख रहे हैं कि बंगाल का आलू, बिहार और मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें आलू से बनाई जाती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल थोड़ा मौसम का मिजाज ठंडा है, बारिश हो जाने से प्याज की पकौड़ी, समोसे और कुछ गर्म नाश्ता खाने का मन करता है, मौसम के साथ जुबान का मिजाज भी बदल जाता है तो अच्छा खाने का मन करता है, चाहे जितनी भी गर्मी हो, पर बाजारों में चाट के ठेलों पर खूब भीड़ होती है, आलू की टिक्की समोसे बहुत खाए जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आलू का जो आकार होता है गोल गोल होता है, लेकिन एक लंबे आकार की भी चीज होती है, और उसके बारे में भी बहुत सारी बातें इस गाने में कही गई है, तो उसे भी हम सुन लेते हैं। जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का गाना है, प्रतीक जोसेफ की आवाज से इन्हीं का लिखा हुआ गाना है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

जोड़ी नंबर वन इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत हिमेश रेशमिया का, और बड़े दिलचस्प अंदाज में इन्होंने जो है जीवन का फलसफा वो सिखाने की कोशिश की गई है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आलू की टिक्की के साथ चटपटी इमली की चटनी ऊपर दही से डाल दे, फिर खाने में स्वाद आ जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि व्रत में तो आलू बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उबला आलू और दही का रायता, फ्राई में फिंगर चिप्स, हर हाल में आलू बहुत अच्छा लगता है, समोसे तो आलू के बगैर बन ही नहीं सकते। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि आज ही मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि आलू टमाटर की रसीली सब्जी बनाना, कहते हैं कि डायबिटीज वालों को लाल आलू खाना चाहिए और उबले हुए आलू को 12 घंटे फ्रिज में रखने के बाद खाना चाहिए, जिसमें से आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि कटक का आलू दम दही बड़ा जिस किसी ने खाया उसे कटक घूमने आने का मजा आया, विश्व प्रसिद्ध आलू दम दही बड़ा के स्वाद सभी मुसाफिर के पेट भरने के लिए ये याद किया जाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे थे तो उनकी फरमाइश होती थी कि फिंगर आलू बनाने हैं, तो सच कह रहे हैं हम बनाते बनाते थक जाते पर वो सब खाते जाते थे, और तो और एक दो दोस्त भी आ जाते, वो दिन भी क्या दिन थे। आजकल तो मम्मी आलू ज्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा कहती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू तो हम लोगों के यहाँ पहले भी बोया जाता था और वो अगस्त सितंबर तक सब्जी का पूरा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके कम हो गया है ये। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू भारतीय रसोई की रीढ़ है, इससे यदि इसे सही और संतुलित तरीके से जैसे कि उबाल कर या बेक करके पकाया जाए तो ये सेहत और स्वाद दोनों के लिए बेहतरीन है। आलू भारतीय रसोई का राजा है जिसके बिना हर घर का भोजन अधूरा माना जाता है। स्वाद, पोषण और उपयोगिता के मामले में भारतीय व्यंजनों में आलू का स्थान सबसे ऊपर है। आलू वाकई स्नैक्स का राजा है, ये इतना वर्सेटाइल है कि इसमें कोई भी लाजवाब डिश मिनटों में बनाई जा सकती है। तो फिलहाल अगला जो हम गीत सुनवा रहे हैं उसमें तो केवल आलू टमाटर का जो साग होता है उसे ही कितने इस तरीके से इसमें हम सुनेंगे इस गाने में कि भूख होती है तब तो वो चीज़ हमें और भी ललचाती है, लेकिन नहीं भी भूख हो तो बोलने का जो अंदाज

इस के बारे में सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, आलू टमाटर का साग खा लिया जाए। संगीत किसका है बताइए हमें।

तो सबसे ज्यादा जो सब्जी या कुछ चीज बना के ले वो आलू की होती है, आलू की सब्जी और पूरियां या फिर मसाले वाली पूरियां या फिर आलू के पराठे या इस तरह की चीजें हम बना करके ले जाते हैं, या यहाँ तक कि हम जब सफर में जाते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो भी सबसे ज्यादा जो सब्जी आपको दिखाई पड़ेगी वो आलू की सब्जी ही होगी। एक साथी लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद शहर के जो आलू होते हैं वो भारत में नंबर वन तरह के आलू होते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने जमाने और आज तक आलू बैंगन की सब्जी सबसे ज्यादा गुजरात के घरों में खाई जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि ज्यादा खाओगे तो एसिडिटी करेगा। जी हाँ, कोई भी चीज हो उसे अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि छोटे छोटे आलू को जाड़े के दिनों में हर घर में तापने के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें भून कर बच्चे अक्सर कटोरी में नमक उसमें डाल करके खाते हैं, गरम गरम बड़ा टेस्टी होता है। पहले गन्ने की पेराई होती थी तो खोलते कढ़ाई में जब राब तैयार होने को होती थी तो छोटे छोटे आलू को धागे में गूंथ कर कढ़ाई में डाल देते थे, कितना मीठा और टेस्टी वो आलू के लिए जो है हम झगड़ा करते थे। अब तो गाँवों में गन्ने की पेराई बंद हो गई है तो मीठा आलू भी अब नहीं मिलता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल लाल आलू बहुत मिल रहे हैं जिनमें कम मात्रा में स्टार्च होता है और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की भाजी बैंगन का भरता, बोले जी बोलो तो क्या खाओगे, ये एक इस गाने के बारे में इन्होंने लिखा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सबसे सस्ता आलू है जो सभी सब्जियों के भाव ज्यादा हो जाते हैं, तो केवल आलू धनिया डालकर रसदार सब्जी चावल और रोटी के साथ खाने का जो मजा है वो बड़ा आता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज आलू की बातें सुनकर हमारी बेटी ने भी फरमाइश कर दी कि अभी तो खाना बन गया है तो डिनर में आज मस्त आलू की रसेदार सब्जी जिसमें डाली हो थोड़ी सी केरी और उसके साथ हो जाए थोड़े से जीरा राइस, ऐसा इन्होंने लिखा। एक साथी लिख रहे हैं कि आलू की बात हो रही तो मुझे चूल्हे की आँच में सेक कर आलू बहुत पसंद आते हैं। जब कभी लंबी यात्रा पर जाता हूँ तो मम्मी हमेशा ही आलू के पराठे और आलू की चटनी रखती है जो सूखी रहती है और आसानी से हम ले जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आलू की बातें तो हम कर रहे हैं उससे चटपटे व्यंजन भी, लेकिन हो सकता है कि हमारे कई साथी हो जिन्हें कुछ मीठी चीजें भी पसंद हो जैसे बर्फी वगैरह, इस तरह की चीजें भी तो उन्हें पसंद आती है, या फिर आलू से भी हम आलू की बर्फी भी बना सकते हैं। कई साथियों ने हमारे लिखा है कि आलू का हलवा बनाया जाता है, आलू की बर्फी भी बनती है। तो चलिए एक गाना सुन लेते हैं, बर्फी फिल्म का, स्वानंद किरकिरे के बोल, प्रीतम का संगीत है, आवाज किसकी है आप बताइए।

मोहित चौहान की आवाज में ये गाना आपने सुना। हमारे एक साथी की बात है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। आलू को हम सब्जियों का राजा कह सकते हैं, एक ऐसी सब्जी जिसके सहारे हम कोई भी उत्सव मना सकते हैं, कोई भी त्योहार की शान बढ़ा सकते हैं। सब्जियों को खाने में मुंह बिगाड़ने वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। गोभी आलू, मटर आलू, परवल आलू, कटहल आलू, टमाटर आलू, किसी भी कॉम्बिनेशन में सुपर हिट है। आलू समोसे में आलू, पराठे में आलू, पकौड़े में आलू। और एक साथी ने हमारी ये लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र ने आलू के महत्व को समझाने के लिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल की थीम है, जहां आलू उगते हैं वहां आजीविका फलती फूलती है। और ये थीम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे किसानों को सहारा देने में आलू की भूमिका को रेखांकित करती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि माँ के हाथ के बने आलू के पराठों का स्वाद अब कहाँ मिलेगा, आज आपने माँ की याद दिला दी। और एक साथी लिख रहे हैं कि भंडारे में आलू पूड़ी खाने का स्वाद तो खाने वाला ही जानता है। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि मेरी बेटी पूना के एक घर में रहकर पढ़ रही थी, मैं कभी कभार 10-15 दिन के लिए जाती थी। उसकी सहेलियों को बहुत आलू के भरवा पराठे और दही का रायता बनाकर खिलाया था। आए दिन यही फरमाइश उनकी होती थी। चलिए, धन्यवाद आपका। मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, और देव कोहली के बोल हैं, अनु मलिक का इसमें संगीत है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का ये गाना हमने सुना, और सचमुच जब समोसे की बात आती है तो ज्यादातर उसमें आलू ही डाल करके बनाया जाता है। आलू के बगैर समोसे का मजा हमें तो नहीं आता है। हो सकता है बहुत सारे साथी हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते हो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने आलू बोने का सबसे अच्छा तरीका जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण लिखा है। पूरा तो हम आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप चाहें तो ये बात आपके काम की हो सकती है कि उन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छा तरीका यह कि खेत में 3-4 बार गहरी जुताई करके और मिट्टी को भुरभुरा और समतल बना ले। बुवाई से पहले बीजों को फफूंदनाशक जैसे कि कार्बेंडाजिम से उपचारित करें और बीज को मेड़ों पर 5 से 7 सेंटीमीटर की गहराई में रोपे, जहां लाइन से लाइन की दूरी सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी इतने सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बारे में बहुत विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा है जो हो सकता है कि आपके काम का हो। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक ही इबारत रहती है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस नज़रिए से देखते हैं। किसी को इसमें बहुत कुछ अच्छा नज़र आता है और किसी को इसमें कुछ बिल्कुल नहीं भाता है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अब गिलास पानी से आधा भरा है, इसे आधा भरा कहें या आधा खाली कहें, ये हमारी सोच पर है। वैसे सबसे जो अच्छी बात यह है कि इससे हमें बहुत सारे गानों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब बात ऐसी है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने अपने जीवन में वो चीज़ें खाई होती है और हमें अच्छी लगती है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें कोई बीमारी हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आपको आलू नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है या तला हुआ नहीं खाना है, और तब हमारे दिल में एक ही बात आती है कि हाय रे वो दिन क्यों ना आए कि जब आलू की इतनी स्वादिष्ट रेसिपी बनती। चलिए अनुराधा फिल्म का गाना सुनते हैं।

और अब एक बड़ी सुंदर बात, आलू का रस चेहरे पर लगाने से ग्लो आता है, ऑलराउंडर है आलू, ये हमारी एक साथी ने बात लिखी है। और इसी के साथ कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज की त्रिवेणी में बातें होंगी आशा की, उम्मीद की। आशा क्या है? वैसे तो इसे परिभाषित करना या इसका वर्णन करना कठिन है, लेकिन आशा को हम तब पहचानते हैं जब हम इसे महसूस करते हैं और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आशा है अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना करना और उसे पाने की कोशिश करना। हम सभी के जीवन में आशा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये निराशा से बचाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये एक सकारात्मक भावना है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें जीवन का अर्थ, उद्देश्य और धैर्य प्रदान करती है। आशा कठिन समय में मानसिक शक्ति बनकर हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। आशा एक भावना है और सोचने का एक तरीका भी। कई बार जब हम हर तरफ से थक हार चुके होते हैं, हमें आशा की कहीं कोई एक किरण कहीं ना कहीं से किसी बाहरी कारण से भी मिलती है, तब हम फिर से ऊर्जा से भर जाते हैं। मुश्किल हालातों से उबरने में आशा की ज्योत जलाए रखना बेहद जरूरी है। आशा को हमें एक इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। आशा एक भावना है, एक मानसिकता है, जिसके जरिए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन और प्रतिकूल क्यों ना हो, आशा एक विश्वास ही तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।

आशा का अर्थ है आगे बढ़ते रहना, हिम्मत बनाए रखना और जीवन के अर्थ के साथ हर मुश्किल से उबरने का रास्ता खोजना। आशा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के बहुत कठिन समय में भी सहारा दे सकती है। यदि हम किसी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का अनुभव करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम सकारात्मक निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। कभी कभी हमारे दिलो दिमाग पर भय और निराशा आशा से कहीं अधिक आसानी से हावी हो जाती है। ये डर हमारे आशा के भाव को कमजोर करने लगते हैं। हालांकि हम अक्सर आशा को व्यक्तिगत स्तर पर देखते हैं, लेकिन आशा को सामूहिक रूप से भी अनुभव किया जा सकता है। राष्ट्र पर जब कोई संकट का समय आता है तब आशा और विश्वास का दामन थामे रहना आगे बढ़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। आशा हमें भविष्य के लिए बेहतर कल्पना करने और उसे पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करके जीवन को खूबसूरत बनाए रखती है, जिससे निराशावादी सोच दूर रहती है। आशा

विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय यदि मन में आशा हो तो मस्तिष्क अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। आगे बढ़ते रहने की ये इच्छा शक्ति, जिसे हम उम्मीद या आशा कहते हैं, ये जीवन को गति प्रदान करती है। इसीलिए आशा को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। आशा रखने से मन मस्तिष्क बेहतर ढंग से कार्य करता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि आशा अपने आप नहीं मिलती, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और इसे बनाए रखने के लिए हमें स्वयं से परे भी जुड़ना पड़ता है। आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन

आशा स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली औषधि भी हो सकती है। इसीलिए चाहे हम किसी भी कठिनाई से गुजर रहे हों या चुनौतियों से जूझ रहे हों, पहले से कहीं अधिक आशा की जरूरत है ताकि हम मजबूती से टिके रह सकें। आशा की एक किरण जीवन की मुश्किलों, असफलताओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देती है, जिससे व्यक्ति हार नहीं मानता। आशावादी दृष्टिकोण से जीवन में बदलाव आते हैं और हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आशा हमें जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। आशा ही जीवन की वो धुरी है जिस पर सुखद भविष्य की कल्पना टिकी रहती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां सुधर सकती हैं और आगे चलकर सब ठीक हो सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुँचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुँचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित

0: ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नाउलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा

0: ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
2: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा।

0: इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आशिक फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। देश के

सुरीली धड़कन विविध भारती से। अपना बना के देखो ये फिल्म का नाम है। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें, एसएच बिहारी की बोल, संगीत है रवि का।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आजाद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: ना तुम।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन के बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

0: याद सुहानी तेरी।
1: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

मनचाही गीत कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं के पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो है रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में। इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था, डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी माँ ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के 2-3 अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
3: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
2: कौवी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन हो?

0: हुआ डॉक्टर?
1: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
0: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
1: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है।
0: अरे
1: ये क्या,
0: गिटार?
1: गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
0: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
1: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है,
0: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
1: अच्छा,
0: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
1: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
2: नमस्ते डॉक्टर।
1: ओ नमस्ते,
0: कहाँ गई थी तुम?
2: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
0: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मेरी पत्नी जो ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
0: हम दोनों के लिए।
2: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
0: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
1: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ, फिर मिलेंगे।
0: अच्छा,
2: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हम वैसे?
0: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
2: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
0: इसमें शर्म का है कि क्या मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है? देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
2: अच्छा जी, तब तो एक काम करें। इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: डेजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, डेज़ी, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ, आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: अरे, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिरीना से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताओ। दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
0: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ भाई।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका लॉरेंस।
2: मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।

0: तो क्या मैं कंप्यूटर नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
0: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
0: Exactly.
1: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते, नमस्ते। तो मैं देखते ही समझ गया था
2: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
0: सब वो बातें रहने दीजिए आप। बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: चेस्ट में पेन है।
0: हाँ हाँ।
1: दिल की तरफ भी पेन है।
0: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
2: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
0: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी
2: जी,
0: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा। जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
2: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है।
0: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
0: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
2: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
2: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम
2: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
2: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
2: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: जरा आहिस्ता बोलो।
2: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
2: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
2: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
1: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
2: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी।
1: है?
2: इस कदर गिर तो नहीं गई हूँ?
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
2: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
1: क्या?
2: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
1: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
2: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक टेरर थे। टेरर?
1: मेरी समझ में नहीं आ रहा है आखिर बात क्या है।
2: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
1: तमीज से बात करो। मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
2: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
2: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रहे। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।

0: मुझे कुछ नहीं कहना है।
1: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहाँ बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूँ।
0: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
1: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
0: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
1: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
1: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया। बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
0: अच्छा।
1: हाँ अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
0: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
1: कितने रुपए खर्च हुए?
0: करीब 600। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
1: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
0: क्या?
1: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
0: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
1: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है गिरिजा। मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
2: गिरिजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
3: वो बेनी कहाँ है?
2: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
3: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
2: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
3: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है। वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
2: डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर, उनके बिना।
3: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
2: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
3: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
2: नहीं, मुझ में ये सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
3: धीरज रखो डेजी, धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
5: ओ डॉक्टर
4: भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या?
1: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
4: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
1: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
4: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
1: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है।

0: डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
1: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
2: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
2: अच्छा देखो तो।
0: लो देख लो।
2: साड़ी, ये अब काहे को? और यहां
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
2: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
2: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो बेनी? हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है। ऐसा मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
2: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसी ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देख कर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो। देखो ये ये ये ऐसे ऐसे।
2: अरे क्या क्या हुआ आपको?
0: डेजी
2: ले जाइए, ले जाइए ना। बेनी बेनी बेनी, कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा। लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। सहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से धर गए।
3: Oh, no.
2: सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
3: आखिर ये हुआ कैसे?
2: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ाया, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
4: डेजी, ये सब क्या?

0: छोटे बच्चों की तरह?
1: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरिजा।
0: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
1: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरिजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
0: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
1: गिरिजा
0: डेजी, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठकर बातें करेंगे।
2: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे, और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा?
2: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
7: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
5: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
7: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
5: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
8: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
9: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
8: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
10: थी धन्य जवानी।

0: अभिनेत्री साधना सिंह यानी नदिया के पार की गुंजा।
1: जोगी जी प्रेम भरो हमको कोई इसकी दवा यदि हो तो कहो।
0: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है। हाँ। कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है।
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ घर में भी।
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो सब बताती थी जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो विर्ज खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी इस साधना जी जो है वो ये बदमाशी

0: शादियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही
1: कर रही हैं
0: और गुंजा
1: करती रहूंगी।
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी, क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी।
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था, क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी।
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी, आप अभिनेत्री? आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप अभिनेत्री बनेंगी। तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए।
0: क्या
1: है ना। तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। थैंक

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूँ कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद किए हों।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत तो दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की है उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूँ।
0: अच्छा, वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद थी, उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो मैं वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर वो सीखी होती तो मैं बंध जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ।
0: हाँ,
1: तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया, कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सच। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती थी। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी,
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग,

0: वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए. तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया. और जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ या सुंदर लग रहा हूँ, चले आते हैं एकदम, मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके. तो मुझे नहीं लगता कि वो, पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को. हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है. और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं
1: जी. तो थोड़ा सा खुद को परख के आए, ऐसा आपका कहना है. और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय भी जरूरी है. ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी. इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ. एक ये ईगो भी सामान्यतः लोगों में होता है कि हमने किया है. तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं? कुछ तैयार नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना.
1: हाँ,
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी,
0: है ना. हमको वहाँ भी लाइनें याद करनी होंगी
1: जी,
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता. नहीं तो एक्टिंग तो कहीं, हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं क्योंकि हमको पता है, वो अपनी समझ है
1: जी,
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव, कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं
1: जी.
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है.
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है.
0: हाँ, तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊँ. ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ.
1: जी जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं. तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं. तो मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी पसंद सुन ली जाए.
0: अच्छा, ऐसा
1: जी. तो कोई गीत बता दीजिए जो
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग अच्छे लगते हैं. तो कुछ दिल ने कहा, ऐसी भी बातें होती हैं.
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत
0: और बहुत मीठा संगीत है.
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा.

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी
0: जी।
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ।
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में, और बाकी तो छोटा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदतन
0: अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहाँ पे।
0: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। शॉल की जरूरत नहीं। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरावर्णम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरावर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धर्ता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं,

0: तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
1: नीचे का जी।
0: लेकिन वो ले गए
1: जी
0: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई। मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी, ओवरवेल्म्ड एकदम। मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या, काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती। तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम लोग हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं,
1: वही सेम फिल्म।
0: हाँ सेम फिल्म, लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल। मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी, जुड़ना ऐसी फिल्म
1: जी,
0: से
1: जी।
0: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
1: जी,
0: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने ही बनाई। तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: जी जी उसके बाद ही।
0: हाँ तो मस्ती में की बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज हैं
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी।
1: अच्छा,
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ। तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी, तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी।
1: हाँ।
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी।
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी
1: जी, जुगनी
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: बहुत
0: है
1: अच्छी फिल्म जी।
0: तो ये नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब, तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी। उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी।
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल।
1: अच्छा।
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके। दे वेरी ड्रिवन, सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है, है ना, सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं, पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं।
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से, तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके, तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल, तो उन्होंने बताया यही है। तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ। तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत।
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है, तो आपको क्या अलग लगा पहले का? और
0: मुझे ये लगा कि वो कम्फर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था।
1: अच्छा।
0: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे।
1: हाँ।
0: कि ऐसा ही करना है। और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी
1: जी। हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा।
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए। वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके।
1: अच्छा, हम जानना चाहते हैं वो किस्सा।
0: वो किस्सा मैंने बताया, मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है। तो मैंने कहा अब नहीं करूंगी। तो ये बिहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है। तो फादर ने बोला, तो आए उन्होंने सब जमाया सब काम।
1: हाँ।
0: और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ। और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने
1: जी।
0: तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने। इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले अरुण गोयल के दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली,
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर, और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर
1: मेरी वही लड़की हीरोइन चाहिए थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं कराई।
0: होता ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी,
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर इन लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको।
0: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा,
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: हाँ, वो
0: बहुत अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी।
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा।
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते
1: पीते। हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं। अच्छा। सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा।
1: कि मुझे आनी चाहिए, क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे, तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारा पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब

0: कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या.
1: अच्छा,
0: ऐसा था.
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, गुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे.
0: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते हैं
1: जी,
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी, और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था, चंदन चंदन ऐसा
1: बहुत,
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है.
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं.
1: रविंद्र जैन वहाँ पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे, गाया जा रहा होगा. कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा. अगर आप
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत है,
0: और मैं करने वाली हूँ, तो वो भी एक्साइटमेंट था. और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ.
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं, तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से.

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है, तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई होंगी शायद?
1: बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है क्योंकि, और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी
0: जी,
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था।
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो,
1: बट जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहाँ पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह विराजमान होंगे
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था, उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने
1: में, और सुना रहे थे पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी यू नो
0: जी,
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे,
0: शब्द भी लिख लेते थे
1: एक सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे,
1: 32 होंगे 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का
0: लगातार,
1: दादा कह रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो उनसे
0: और कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है।
1: उसके बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं, और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती हो, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने
1: आपसे, क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार
0: जी। और जब टूर करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो आनंद ही अलग आता होगा,
1: वो तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है, तो आई थिंक वो अखड़पन में सब कुछ सीख गई, अल्लड़पन कहते ना
0: ये, कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई,
1: ये बात है। मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो।
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना, लगेगी तो संभाल लेना। बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं, और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे घूमते?
1: नहीं नहीं, बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, क्योंकि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था।
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: तो यानी आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा मिला, दोनों जगह
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे
0: जी,
1: तो जहाँ भी हैं बस खुश रहे
0: जी। बिल्कुल साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
1: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो, उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती भी नहीं,
0: क्योंकि मेहनत करो अपनी,
1: अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोला 100%। अब देखते हैं क्या होता है।
0: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
1: हाँ।
0: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती है। हाँ। ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है।
1: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
0: जी,
1: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
0: ऊर्जा सकारात्मक।
1: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ।
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में है, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊँ या मर जाऊँ।
0: अरे
1: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीजें हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था।
0: क्या बात है।
1: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमॉस्फेयर अपने आप ठीक होगा, तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो, क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम
1: मैं
0: भी सुन लें।
1: कोशिश करती हूँ। चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ। वो मतलब मेरे लिए भगवान भी है, सब कुछ है
0: जी।
1: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
0: जी।
1: उनका गाना गा देती हूँ
0: जी।

पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता।

0: और अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर दो घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी।
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ये ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती माएं
0: जी।
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई
0: जी।
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। अच्छा। और साड़ियां, वीव्स वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है ये, ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है, कैसी है पहेली
0: जी,
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। अच्छा। बहुत सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है।
0: अरे वाह।
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि ये सब देखें।
0: फिल्म है कैसी है पहेली।
1: कैसी है पहेली,
0: जरूर से हम सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आए, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

FM 102.3.6 MHz, मीडियम वेव 212.1 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण है। शाम के 5 बज रहे हैं, हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: ये खिंची खिंची सी शाम और ये उलझे उलझे से ख्याल, कैसे बताऊं तुम्हें क्या है मेरा हाल। और फिलहाल आपके मन को खुशहाल करने के लिए लौट आई हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त लक्षता, और मेरे साथ है
1: आपकी रेडियो दोस्त इशिका। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहाँ होता है एक अलग एहसास जो होता है बेहद खास, क्योंकि इस कार्यक्रम की नींव है आपका विश्वास।
0: तो दोस्तों, इसी विश्वास को कायम रखते हुए ले चलते हैं आप सभी को एक नायाब खुशनुमा सफर पर,
1: जहाँ होंगी यूजफुल जानकारी, उसमें होगा एंटरटेनमेंट का तड़का और होंगी चटपटी बातें, क्योंकि साथ है इशिका और
0: लक्षिता। ये तो जाहिर सी बात है। तो कैसी हो इशिका, सबसे पहले मैं ये पूछूंगी तुमसे।
1: मैं बहुत अच्छी हूँ लक्षिता, और तुम कैसी हो?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और काफी दिनों बाद ये मुलाकात हमारी हो रही है।
1: बिल्कुल,
0: और आशा करते हैं आज का दिन काफी अच्छा निकलेगा हमारा, आज की शाम, मतलब कहने का मतलब ये है।
1: बिल्कुल,
0: तो बिना किसी देरी के आइए दोस्तों, करते हैं आज की शाम का आगाज, ले चलते हैं आपको सफर पर और सुनाते हैं आज की शाम का ये पहला गीत जो आपको जरूर झूमने पर मजबूर कर देगा।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, जहां आज आपका साथ दे रही हैं आपकी दो रेडियो दोस्त, मैं लक्षिता
1: और मैं इशिका।
0: तो बने रहिए हमारे साथ शाम 6 बजे तक। इशिका, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है ना, जैसे दिल के अंदर बहुत सारी बातें जमा सी हो गई हैं और कुछ अधूरे सवाल, कुछ अनकहीं तकलीफें, कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते और अक्सर मन में ही रख लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, बाहर से तो सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मन भारी सा रहता है। और सच कहूँ तो हम में से ज़्यादातर लोग इस दौर से गुजरते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा लक्षिता। और कई बार हम सोचते हैं कि अगर अपनी परेशानी किसी को बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, कहीं हमें कमजोर ना समझ ले। लेकिन इसलिए हमें मुस्कुराहट का एक नकाब पहनना पड़ता है हमेशा उस वक्त।
0: बिल्कुल सही।
1: और हर सवाल के जवाब में बस इतना कह देते हैं हम कि मैं ठीक हूँ। लेकिन दोस्तों, हर बार मैं ठीक हूँ कहना जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि कई बार लोग डर जाते हैं कि लोग हमें जज कर लेंगे या हमारी सिचुएशन को जज कर लेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जरूरी नहीं कि आप किसी ऐसे इंसान को बताएं जो आपका क्लोज ना हो। आप उन लोगों को बताइए जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं। देखिए, दिल की बातों का भी अपना एक वजन होता है। जितना उन्हें हम मन में दबा कर रखते हैं, उतना ही वो वजन बढ़ता जाता है। और ये बिल्कुल सही बात है। फिर अगर छोटी सी बात हमें मानो परेशान करने लगती है, मन खराब रहने लगता है, हम ओवर थिंक करने लगते हैं, और फिर वहीं से हमारी हेल्थ इश्यूज, हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा लक्षिता। और दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी अपने से खुलकर बात करते हैं तो समस्या भले पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन मन थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है और खुशियां बांटने से बढ़ती है।
0: ये तो बिल्कुल सही बात बोली तुमने शिका। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मन खराब रहता है, और जैसे तुम्हारे और मेरे साथ भी काफी बार हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: कि हमारा मूड थोड़ा भी खराब रहता है तो हम पूछ लेते हैं ना एक दूसरे से कि तुम्हें क्या हुआ, कोई तो बात है इशिका, कोई तो बात है। फिर वहीं से जब तुम, पहले मन नहीं होता बताने का, लेकिन फिर धीरे धीरे अपने आप तुम खुद बताने की कोशिश करती हो।
1: बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों को कि पहली बात तो अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन इफ इन केस आप नहीं

0: कहीं भी जाते हैं कभी शेयर करना, तो आप अपने उन लोगों के साथ अपना वो समय बिताइए जिनके साथ रह के आपको बहुत अच्छा लगता है और आपका मूड चिलपिल हो जाता है, आपको खुशी मिलती है, तो ऑटोमेटिक ही अगर आप बात शेयर नहीं भी करेंगे ना तो भी आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: देखिए साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप उन लोगों के साथ टाइम अपना व्यक्त कीजिए जिनके साथ आपको ये जिंदगी खूबसूरत लगती है।
0: बिल्कुल।
1: देखिए कई बार हमें सलाह की जरूरत नहीं होती, बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो बिना हमें जज किए हमारी बात

0: तुरंत लगती हैं।
1: बिल्कुल
0: देखिए, कई बार हमें सलाह की ज़रूरत नहीं होती, बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो बिना हमें जज किए हमारी बात को बस सुन ले, जो ये ना कहे कि तुम गलत हो या तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि बस इतना सा कह दे कि मैं सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, तुम बस कहो तुम्हें जो कहना है, अपनी मन की भड़ास निकालो।
1: बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ही सुंदर बात कही तुमने। और दोस्तों, क्योंकि यही सुनने और समझने का एहसास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है,
0: ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम मन में चीज़ें रखते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हम खुद ही अंदर रख कर और सब चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आप खुद को खो रहे होते हो।
1: बिल्कुल,
0: तो ज़रूरी है आपके अंदर जो है वो बाहर आए और पता चले कि आपकी क्या मानसिक स्थिति है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान करके रख देती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो अगर आज आपके दिल में कोई भी बात है, कोई चिंता है, कोई डर है या कोई ऐसी कहानी है जो आप लंबे समय से अपने अंदर दबाए हुए हैं, तो उसे किसी भरोसेमंद दोस्त, जैसे कि मेरी दोस्त है इशिका, मैं इससे सब बातें शेयर करती हूँ और इशिका भी मुझे सब बताती हैं, या फिर किसी परिवार के सदस्य या अपने किसी करीबी से जो आपका अपना आपको लगता हो, उनसे साझा करिए, आपको काफी अच्छा महसूस होगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा लक्षिता तुमने। और दोस्तों, मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी आपके दिल में कोई भी बात है तो अपने दोस्तों से उन बातों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हर बात हम हमारे बड़ों को या फिर हमारे साथ जो रहते हैं कोई प्रोफेशनल भी है तो हमें नहीं बता
0: नहीं
1: पाते बहुत सी बार। हमारी कोई प्रॉब्लम भी होती, कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम भी हमें होती तो भी हम उनसे शेयर नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जिंदगी में भगवान ने एक रिश्ता हमारा ऐसा बनाया है जो कि पहले से तय था, वो होता है दोस्ती का रिश्ता। तो दोस्ती में आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मतलब सामने वाले को समझा सकते हैं अपनी बात,
0: क्योंकि प्लस पॉइंट है सामने वाला बुरा भी नहीं मानता और जज भी नहीं करता।
1: बिल्कुल, और दोस्ती के रिश्ते का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि शायद सारे रिश्ते में आपको कहीं ना कहीं कोई जजमेंट मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है जहां कुछ भी हो जाए लेकिन आपका जो मित्र है, आपका जो दोस्त है, वो आपको कभी भी जज नहीं करेगा।
0: तो सुन रहे हो ना दोस्तों, ये इशिका कह रही है, तो इसका मतलब यही है कि इशिका भी अपने इस कर्तव्य को पूरा अच्छे से निभाएंगी।
1: बिल्कुल, मैं निभाती हूँ।
0: इसीलिए
1: तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, मजबूत वही नहीं होता जो हर दर्द अकेले सहले, मजबूत वो भी होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने मन की बात कह सके। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुप चुप रहने लगा है,
0: तो उससे बस एक बार प्यार से पूछ लीजिए कि सब ठीक है ना, अगर कोई बात बताना चाहते हो तो मैं हूँ, मुझे बता सकते हो। हो सकता है आपकी ये एक बात सामने वाले के दिल का बोझ हल्का कर दे।
1: बिल्कुल दोस्तों, जिंदगी की राहें आसान तब नहीं होती जब समस्याएं खत्म हो जाए, बल्कि जिंदगी की राहें तब आसान होती है जब उन्हें साझा करने के लिए अपने लोग साथ रहें।
0: और इसीलिए तो वो कहते हैं ना, दिल की बात साझा हो तो बोझ हल्का हो जाता है और रिश्तों में अपनापन और भी गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, अपने मन में जो भी है भड़ास उठाइए, फोन लगाइए अपने चाहने वालों को, अपनों को, और बता दीजिए सब कुछ, पर ऐसा भी नहीं फिर हर किसी को।
1: बिल्कुल,
0: और कहते हैं ना, ज्यादा भी नहीं खुलना चाहिए, लेकिन आपको बस सिलेक्टिव लोगों के सामने ही अपनी चीजें आउट करनी चाहिए। और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। चलते हैं इसी के साथ कार्यक्रम में आगे। और क्या कहती हो इशिका, आप क्या करना चाहिए हमें?
1: जैसा कि तुमने बात की रिश्ता गहरा करने की, तो हमारे दोस्तों के साथ रिश्ता गहरा करने का एक और तरीका भी है, यानी कि उनको प्यारे प्यारे गीत सुनाना, क्योंकि हमारे दोस्तों की खुशी में ही हमारी खुशी है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो क्यों ना फिर से हमारे दोस्तों को सुनाते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: तो फिर बताओ कौन सा वाला प्ले करें?
1: तुम्हारी चॉइस से।
0: चलो ठीक है, ले चलते हैं दोस्तों आपको गीत संगीत की दुनिया में, सुनाते हैं आज की शाम का ये दूसरा प्यारा सा खुशनुमा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम में आगे और बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट नॉलेज कॉर्नर की ओर,
1: जहां आज हम बात करने वाले हैं गोवा स्थापना दिवस के बारे में। दोस्तों, आज यानी कि 30 मई के इस खास दिन पर हम बात करेंगे भारत के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय राज्यों में से एक गोवा के स्थापना दिवस की।
0: दोस्तों, गोवा स्थापना दिवस हर साल 30 मई को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1987 में गोवा को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और ये भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था।
1: हालांकि गोवा के इतिहास में दो महत्वपूर्ण तिथियां विशेष रूप से याद की जाती हैं। दोस्तों, पहली है गोवा स्थापना दिवस, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। इस दिन गोवा को दमन और दीव से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था।
0: दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है गोवा मुक्ति दिवस, जो हर वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा लगभग 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था।
1: बिल्कुल अच्छी तुमने जानकारी दी शिका दोस्तों को। साथ ही दोस्तों, गोवा केवल अपने खूबसूरत समुद्र तटों, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध परंपराओं, कला, संगीत और विविधता के लिए भी पूरे देश में जाना जाता है और हर एक इंसान का ड्रीम होता है कि वो गोवा एक ना एक बार विजिट करे।
0: क्योंकि वो गोवा को एकदम एंजॉय वाला एक उस जगह से देखते हैं कि जाएंगे, एंजॉय करेंगे, एकदम बीच वाला।
1: इवन मेरी खुद की भी विश लिस्ट में है कि मैं गोवा विजिट करूं, एक बार घूमूं वहां पर, क्योंकि मैंने जितना सुना है वहां बहुत मजा आता है और जो बीचेस हैं वो वाइब बहुत ज्यादा क्रेजी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा भी मन है कि मैं वहां जाऊं।
0: बिल्कुल।
1: एंड होपफुली तुम्हारा भी होगा।
0: हाँ बिल्कुल,
1: तो हम साथ प्लान कर लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आइए इस अवसर पर हम गोवा के लोगों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दें और भारत की विविधता में एकता की भावना को और मजबूत बनाने का संकल्प लें।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज के प्रोग्राम में मज़ा काफ़ी आ रहा होगा, क्योंकि अभी और भी ढेर सारी बातें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले इशिका, तुमसे मेरा एक सवाल है।
1: पूछो।
0: तुम किसी ऐसी सब्जी को जानती हो जो हर सब्जी के साथ एडजस्ट कर लेती है?

0: तुम आलू की बात तो नहीं कर रही हो?
1: तुम तो बिल्कुल स्ट्रेट समझ गई यार, बहुत बढ़िया।
0: ये मैं क्या कोई भी समझ जाएगा?
1: हाँ, क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी के साथ एडजस्ट करना जानता है।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की, जो प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, आलू दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में मानी जाती है, लेकिन आज ये लगभग हर देश की रसोई का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, कह सकते हैं। भारत में भी आलू का विशेष महत्व बन गया है।
0: बिल्कुल ठीक कहा लक्षिता। और दोस्तों, सब्जियों से लेकर स्नैक्स और अनेक पारंपरिक व्यंजनों तक इसकी उपयोगिता हर घर में दिखाई देती है। संयुक्त राष्ट्र ने आलू के पोषण, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका में इसके योगदान को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की पहल की है।
1: इशिका, तुमने भी देखा होगा कि आजकल लोग काफी सारी डिशेज नई नई क्रिएट करने लग गए हैं आलू से। जैसे पोटैटो बाइट्स हो गए हैं, और कुछ सूजी में मिक्स करके उनकी कुछ अलग से शेप बना कर।
0: आज तक लोग फ्रेंच फ्राइज खाते थे, और आजकल
1: अलग अलग चीजें,
0: पोटैटो लॉन्ग फ्राइज बनने लग गए हैं।
1: बहुत सारी
0: चीजें तो बहुत ही एडिक्ट हो गए हैं सब चीजों
1: और के। हर चीज में आलू, हर चीज में आलू। मैदा में मिक्स करना है आलू, सूजी में मिक्स करना है आलू। तो मतलब कहीं ना कहीं आलू बहुत ज्यादा डिमांड में अभी चल रहा है। दोस्तों, आलू में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी, पोटेशियम और कई आवश्यक पोषक तत्व होता है पाए जाते हैं, जो संतुलित आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं आलू हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए स्पेशली।
0: बिल्कुल। और साथ ही दोस्तों, भारत विश्व के प्रमुख आलू उत्पादक देशों में शामिल है। हमारे किसान आधुनिक तकनीकों और उन्नत किस्मों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: देखिए दोस्तों, बदलती जलवायु और बढ़ती आबादी के बीच आलू जैसी फसलें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।
0: और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस हमें ये संदेश देता है कि कृषि, पोषण और सतत विकास के लिए आलू जैसी फसलों का महत्व समझें तथा किसानों के योगदान का सम्मान करें।
1: तो दोस्तों, ये हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस के बारे में, और पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आप सभी को इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा संगीत, क्योंकि अब मन हो चला है थोड़े से एंटरटेनमेंट का। तो एंटरटेनमेंट का तड़का तो जरूरी है ना इशिका?
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए सुनाते हैं आपको ये प्यारा संगीत, जिसका नाम है एक वारी आ।

0: इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवानी में, और आपका साथ ऐसे ही बना रहे हमारे साथ। तो इशिका, अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट देश हमारा में कहाँ ले जाने वाली हो आज हमारे दोस्तों को?
1: तो लक्षिता, आज हम हमारे दोस्तों को लेकर जाएंगे भारत के एक ऐसे सुदूर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान की यात्रा पर, जिसका नाम है कैंपबेल बे।
0: क्या बात है दोस्तों, कैंपबेल बे भारत के दक्षिणतम क्षेत्रों में से एक है और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पर स्थित है। चारों ओर फैला नीला समुद्र, घने वन और अद्भुत जैव विविधता इसे प्राकृतिक प्रेमियों के लिए विशेष बनाती है।
1: और दोस्तों, ये क्षेत्र अपने समृद्ध वन्य जीवन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ स्थित कैंपबेल बे नेशनल पार्क अनेक दुर्बल वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर है। ये राष्ट्रीय उद्यान पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: कैंपबेल बे केवल प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक ही नहीं है दोस्तों, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। भारत के समुद्री तटों और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी विशेष भूमिका भी है।
1: और दोस्तों, यहाँ का शांत वातावरण, स्वच्छ समुद्री तट और प्राकृतिक संपदा हर आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही कारण है कि कैंपबेल बे को भारत के छिपे हुए प्राकृतिक खजानों में गिना जाता है।
0: तो दोस्तों, यदि आप प्रकृति की अनोखी दुनिया को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो कैंपबेल बे निश्चित रूप से आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये हमने बात की एक ऐसी खूबसूरत जगह के बारे में जहाँ पर आपको जरूर एक अच्छे सुकून का एहसास होगा। क्या कहती हूँ इशिका?
1: बिल्कुल, और मैं तो कहूंगी कि हमारे दोस्तों को यहाँ पे जरूर घूमने जाना चाहिए जब भी उन्हें मौका मिले।
0: और इसी से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कल का मौसम कैसा था ना, हवाएं चल रही थी, आंधी तूफान, कुछ याद है तुम्हें?
1: हाँ, याद है ना,
0: काफी तेजी से हवा

0: चल रही थी और
1: पूरे दिन बहुत तेज धूप थी और रात में इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि बस मुझे लगा बस आज तो बहुत तेज बारिश बारिश होने वाली है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और मौसम धीरे धीरे ऐसे ही चेंज होगा तो अच्छा रहेगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि
1: बिल्कुल बहुत
0: गर्मी
1: अच्छा
0: तो
1: है।
0: बहुत हो रही है। वैसे एक बात कहूँ कि गर्मी कितनी भी तेजी से पड़े या कुछ भी हो, लेकिन मैं कभी भी गर्मी को मेरा फेवरेट मौसम नहीं बोलूंगी। मेरा फेवरेट हमेशा सर्दियां ही रहेंगी मेरी
1: सेम
0: फेवरेट,
1: सेम सेम
0: क्योंकि
1: हियर।
0: मैं गर्मी सहन नहीं होती,
1: बिल्कुल मेरा भी फेवरेट सीजन जो है वो विंटर सीजन ही है और हमेशा वही रहेगा।
0: चाहे सर्दी में कितना भी ठंड लगे लेकिन
1: बिल्कुल, चाहे 10 जैकेट पहन लेंगे लेकिन
0: हाँ,
1: वही है ना
0: पर
1: कि
0: हम
1: गर्मी।
0: लॉयल हैं सर्दी के लिए ऑनेस्टली कहें तो। तो चलिए
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक हवाओं का प्यारा सा गीत हम आपको सुनाते हैं और आपकी शाम को और खुशनुमा बनाते हैं, बिल्कुल मौसम की तरह। तो चलिए ले चलते हैं फिर से आपको गीत संगीत की दुनिया में, और ये प्यारा सा गीत आपके लिए है।
2: और ये एहसास है वक्त
0: तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए इस प्यारे से गीत को।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: तो दोस्तों, ढेर सारे गाने हमने सुन लिए, ढेर सारी जानकारी हमने ले ली और बातें भी कर ही ली. वो माना कि हमारी बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बातें तो हम कर ही चुके हैं.
1: बिल्कुल.
0: तो अब क्या हम नेक्स्ट कर सकते हैं अंशिका, क्या बताओ हमारे दोस्तों को?
1: क्यों ना हमारे दोस्तों को कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में भी बताया जाए.
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हमारे दोस्त काफी स्पोर्ट्स से दिलचस्प रखते हैं, स्पोर्ट्स में ना
1: दिलचस्पी
0: रखते हैं. सॉरी,
1: इट्स ओके.
0: तो चलिए ले चलते हैं आपको खेल गतिविधियों के और देते हैं जानकारी स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में.
1: बिल्कुल.
0: दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2026 के फाइनल्स में जगह बनाई है. फाइनल्स में उसका मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा, यानी कि आरसीबी से होगा.
1: और दोस्तों, साथ ही गुजरात के कप्तान शुभम गिल ने क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द मैच बने.
0: दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में अपने प्रदर्शन को लेकर लगातार चर्चा में हैं. WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर ने भी उनकी सराहना की है.
1: और दोस्तों, साथ ही नीदरलैंड की फुटबॉल टीम 2026 विश्व कप की तैयारियों में जुटी है और उसे सेमीफाइनल का प्रबल दावेदार माना जा रहा है.
0: वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ ने रूस की भागीदारी पर भविष्य में प्रतियोगिता दर प्रतियोगिता आधार पर फैसला करने का संकेत दिया है.
2: आवाजें जो बरसों से हमारे जीवन के हर रंग में रच बस गई हैं,

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: ने व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए नया ट्रेंड एवं इन्वेस्टमेंट फॉर्म्स शुरू कर दिए हैं।
1: और दोस्तों, भारतीय सेना का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 मेघालय में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें 13 देशों ने भाग लिया।
0: वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। हालांकि तेल कीमतों और मानसून को लेकर चिंताएं बनी हुई है।
1: और दोस्तों, साथ ही भारत ने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
0: वहीं दोस्तों, एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की संभावित सूची जारी हुई है। युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को जगह मिली है।
1: और दोस्तों, भारत ने पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य योगासन को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करना है।
0: वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कई प्रतिष्ठित हस्तियों को सम्मानित भी किया गया है दोस्तों।
1: और दोस्तों, साथ ही कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में देश का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात सहित कई क्षेत्रों में प्री मॉनसून बारिश की संभावना जताई है, जिससे गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स में बस इतना ही। ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में और सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत।

तो चलिए दोस्तों, साथ ही एक नज़र डाल लेते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर और जान लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है हमारे आसपास हमारी दुनिया में। दोस्तों, भारत और कनाडा

जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।

0: कौशिका, मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या कभी किसी ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम बदल गई हो या तुम अब पहले जैसी नहीं रही?
1: बिल्कुल, बहुत बार। और ऑनेस्टली ये लाइन अक्सर वही लोग बोलते हैं जिन्हें हमारी आदत होती है और हमारी वैल्यू नहीं होती।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि जब तक हम हर चीज पे इट्स ओके बोलते रहते हैं, तब तक सबको हम बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हर वक्त अवेलेबल रहो, सबकी प्रॉब्लम सुनो, खुद अपसेट हो फिर भी दूसरों को प्रायोरिटी दो, तो लोग उसे प्यार नहीं समझते, नॉर्मल समझने लगते हैं और फॉर ग्रांटेड
0: लेने
1: लगते
0: लगते।
1: हैं।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, और धीरे धीरे वो थैंक यू भी बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि लगता है उन्हें कि ये तो इनकी एक आदत, ये ड्यूटी है इनकी कि ये हमें मना नहीं कर
1: बिल्कुल
0: सकते।
1: बिल्कुल, और उन्हें हमेशा ये फील होता रहता है कि ये इंसान है, ये तो मतलब हमारे लिए ये तो हमेशा ही रहेगा।
0: लेकिन सच बताऊं दोस्तों, हर बार एडजस्ट करते करते एक पॉइंट के बाद इंसान अंदर से थक जाता है और कहीं ना कहीं

0: मन में दुखी हो जाता है।
1: और फिर एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब हर चीज़ टॉलरेट नहीं करनी, हर डिसरिस्पेक्ट पे चुप नहीं रहना, हर बार खुद को सेक्रीफाइस नहीं करने देना है।
0: और बस उसी दिन लोग बोल देते हैं कि तुम अब बदल गए हो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे हो।
1: बिल्कुल। और जबकि रियलिटी ये होती है दोस्तों कि फाइनली आपने खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया होता है।
0: क्योंकि सच तो ये है कि आपकी वैल्यू तब तक नहीं समझी जाती जब तक आप अपनी लिमिट्स डिफाइन नहीं करते।
1: क्योंकि लोग वहीं तक आते हैं दोस्तों जहां तक आप उन्हें आने के लिए अलाउ करते हैं।
0: अगर आप हर बार डिसरिस्पेक्ट इग्नोर करोगे तो सामने वाला कभी ना कभी ये नहीं समझेगा कि उसकी बातें आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही हैं।
1: और अगर आप हर वक्त अवेलेबल रहोगे तो लोग आपकी प्रेजेंस की वैल्यू करना भूल जाएंगे।
0: इसीलिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है और ये एटीट्यूड नहीं होता,
1: क्योंकि ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट।
0: और जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज को जरूर समझेंगे,
1: और जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं दोस्तों उन्हें वही बाउंड्रीज प्रॉब्लम लगने लगती है।
0: तो याद रखो, आपकी वैल्यू तब समझी जाती है जब आप खुद को लूज करना बंद कर देते हो।
1: क्योंकि जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा कि लोग वहीं तक आते हैं जहां तक आप उन्हें आने के लिए अलाउ करते हैं।
0: इसीलिए वो कहते हैं ना
1: कि हर बार एडजस्ट करना
0: जरूरी नहीं। दोस्तों फिलहाल हमें भी हमारी बाउंड्रीज को देखते हुए हमारी घड़ी की तरफ देखना है, जो कि अब इशारा कर रही है कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली बार, करेंगे ढेर सारी बातें, और तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और इस मौसम में अपना बचाव करें। कहीं भी बाहर जाएं तो मुंह ढकें, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तो ही निकले। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपनी दोनों रेडियो दोस्त, मैं लक्षिता
1: और मैं शिका। नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे।

ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना

0: के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम बॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडिया वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा हुआ और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म कटी पतंग का ये गीत सुना, आवाज थी किशोर कुमार की। और आइए अब सुनते हैं अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म वक्त से, आवाज आशा भोसले की है, साहिर का गीत है और संगीत है रवि का।

आकाशवाणी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत सुनवाने से पहले हम आपको कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 2 जून को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है हर्निया रोग के निदान और आधुनिक विकल्प। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर CP सिंह से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, मंगलवार दिनांक 2 जून को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 0744-29-411-42। सूचना समाप्त हुई और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया है फिल्म अनाड़ी से। आवाज लता मंगेशकर की है, नगमा निगार है हसरत जयपुरी और मौसीकार हैं शंकर जयकिशन।

0: होगा।
1: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
2: और आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत। फिल्म हमराज के इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने, आवाज महेंद्र कपूर की।

इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत अब खत्म हुआ। आकाशवाणी कोटा बूंदी का ही चंबल चैनल है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और उसके बाद होंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी की जयपुर केंद्र से, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं।

0: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आम जन बीच की धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। वे आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जनरल द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, यह अभियान अब भी जारी है। जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 553

0: करें। 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान को खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाना जाना चाहिए। श्री चौहान आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों के संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देने, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे गांव तक पहुंचाना है। केंद्रीय मंत्री ने अभियान के तहत पंचायत स्तर पर मशीनों के वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लाभों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों के साथ न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और पारदर्शी तरीके से ही कराए जाते हैं। वे आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1 जून से जयपुर में शिविर लगाए जाएंगे। 3 दिन चलने वाले इन शिविरों में पात्र लाभार्थियों को द्वितीय ऋण की किस्त स्वीकृति और वितरित की जाएगी। ये शिविर जयपुर नगर निगम और एक निजी बैंक के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे। इसे स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके व्यवसाय के विस्तार में मदद मिलती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बताया है। श्री शर्मा आज जयपुर में राजस्थान नगरपालिका कर्मचारी फेडरेशन के महाअधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन की सफलता में भी नगरपालिका कर्मचारियों की अहम भूमिका रही है। श्री शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगरपालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहते हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार

0: कार करने में भी सभी की भागीदारी को आवश्यक बताया। महाधिवेशन में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, नगरीय विकास मंत्री झाबड़ सिंह खर्रा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के डी रेगुलेशन फेज वन के तहत किए जा रहे सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राज निवेश पोर्टल के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाकर समयबद्ध निस्तारण के प्रयासों से राजस्थान निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है। अप्रैल 2026 की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9000 आवेदनों में से 6000 से अधिक आवेदनों को मंजूरी दी गई है। आवेदनों को मंजूर करने के मामले में राज्य में जयपुर जिला पहले स्थान पर रहा, जहां लगभग 2000 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 1300 से अधिक आवेदन स्वीकृत हुए। पुलिस मुख्यालय ने पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की घोषणा की है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, प्रशासन तथा उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए चयन समिति की अनुशंसा पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिरोही जिले के एक विश्वविद्यालय में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों, योग साधकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह के साथ भाग लिया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। नागौर शहर के पास जोधपुर बीकानेर मार्ग पर आज दोपहर एक कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा डुकोसी और राजुवास गांव के पास हुआ। दुर्घटना में कार में सवार 2 महिलाओं और एक बच्चे सहित 4 की मौत हो गई। सभी मृतक जोधपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रदेश में धूल भरे आंधी का दौर आज भी जारी रहा। सीमावर्ती और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आज दोपहर बाद अचानक आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिलों में अचानक बदले मौसम से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेतीले अंधड़ की शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर क्षेत्र से हुई, जिसके बाद इसका प्रभाव आसपास के जिलों तक फैल गया। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि दोपहर बाद आए रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
1: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहां तेज धूप और गर्मी का असर रहा, जिससे आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गाँव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: प्रदेश में कई स्थानों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए और बिजली के पोल धराशायी हो गए। राजधानी जयपुर में भी शाम को बादल छाए रहे, बिजली कड़कने के साथ ही धूल भरी आंधी चली और कहीं कहीं बारिश हुई। कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से जारी आंधी बारिश से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज करीब 30 जिलों के लिए आंधी बारिश के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि होने के आसार जताए हैं। केंद्र ने आंधी और तेज हवाओं, बिजली चमकने के साथ लोगों से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश का ये दौर अगले 3-4 दिन जारी रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का पहला चरण पूरा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भवन का नवीनीकरण, प्रवेश और निकास मार्गों का पृथक्करण, नई पार्किंग व्यवस्था, बुकिंग कार्यालय और रिटायरिंग रूम का उन्नयन किया गया है। इस काम में लगभग 20 करोड़ रूपये की लागत आई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए

तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरपालिका कर्मचारियों को सरकार और आमजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और प्रदेश में आज दूसरे दिन भी धूल भरी आंधी का दौर जारी, सीमावर्ती इलाकों में रेतीले अंधड़ से जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कप्तान खान कलर ने तैयार किया है। जालौर जिले को बीते महीने महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। वहीं भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने जिले का दौरा कर आमजन के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले दिनों जालौर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिले में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई। पंचेरी गांव में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं का धरातल पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने उनकी सरकार और केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए आम जन से इनका अधिक से अधिक लाभ लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं और लाभार्थियों से संवाद कर उनसे सफलता की कहानियों को सुना। उन्होंने गांव का पैदल भ्रमण कर जायजा लिया और लोगों के साथ चाय पीकर चर्चा की। ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जीवाराम सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर को दिल्ली से सीधा रेल सेवा से जोड़ने की लंबे समय से चली आ रही जिलेवासियों की मांग बीते दिनों पूरी हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में जालौर से होकर गुजरने वाली दिल्ली भुज एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की। उन्होंने जालौर पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस गाड़ी का जिले के रानीवाड़ा, मारवाड़, भीनमाल, मोदरान और जालौर में ठहराव होगा। रोजाना चलने वाली इस गाड़ी से जालौर वासी अब जयपुर और दिल्ली से सीधे जुड़ेंगे। वहीं गुजरात के भरूच, अंजार और गांधीधाम तक भी सीधी पहुंच हो सकेगी। गाड़ी की शुरुआत होने से आमजन में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गंगा दशमी के अवसर पर 25 मई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान आदर्श अमृत सरोवर बागोड़ा पर श्रमदान रखा गया। जिला स्तरीय आयोजन में प्रभारी मंत्री के बिश्नोई शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक मजबूत संकल्प है। अभियान के तहत जिले भर में रोजाना श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों के साथ जल संरक्षण की शपथ दिलाई जा रही है। हरियालो राजस्थान के तहत जिले में इस सीजन में 19 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री के बिश्नोई ने ये जानकारी देते हुए आम जन से अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। श्री बिश्नोई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बागोड़ा स्थित खेतलाजी तालाब पर पीपल का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसी सिलसिले में बीते दिनों आहूर में संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। अभियान में पशुपालन विभाग की ओर से जिले की 308 गौशालाओं में स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। जिले के भेटाला में आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के तहत तंबाकू और नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। ग्रामीणों को तंबाकू और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। जालौर जिले में मतदाताओं द्वारा स्वगणना पोर्टल पर जनगणना जानकारी दर्ज की गई। 1 से 15 मई तक चले स्वगणना अभियान के तहत अब जनगणना कर्मी लोगों के घर घर पहुंचकर सूचना अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए आवासों की सूची, सुविधाओं, संपत्तियों और अन्य आवश्यक आंकड़े एकत्रित करने के साथ ही मकान पर नंबर लिखने का काम किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय परिसर में पिछले दिनों एक दिवसीय प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और

0: रोजगार विभाग की ओर से लगाए गए इस शिविर में 110 बेरोजगारों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया गया। जिले भर में इन दिनों सूरज अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ गर्मी के तीखे तेवर बने रहने से आमजन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। अधिकतम तापमान के 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने से दिन के समय बाजार और सार्वजनिक स्थान सूने दिखाई दे रहे हैं। जालौर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार।

समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो, भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवारे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियों ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिनी धूलो उड़बा सागे आंधी चाली, सरहदी हलका माए रेत रात तूफान और जिंदगी माथे असर पड़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो है कि भारत री फौज आला दर्जा री सावचेती राख रही है और जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर शुरू करण बाबत ही तैयार है। वे आज पुणेरा खड़कवासला री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी माए 150वां बैच री पासिंग आउट परेड माए बोल रहा है। ई मौके जनरल द्विवेदी कहो कि ऑपरेशन सिंदूर उकसावा रो जवाब सटीक और पक्का इरादा सागर देवण रा भारत रा बूता रो दर्शाव कीन्यो है। वह कहो कि वो अभियान हाल ही चाल रियो है। जनरल द्विवेदी पास आउट वेवन वाला कैडेटाओं व्यावसायिकता नेतृत्व और देश सेवा रा आला मानका ने बनाया रखन बाबत कहो। फौज रा मुखिया ई कोर्स ने पास करन वाली महिला कैडेटां री सराहना करता था कहो कि हिम्मत पक्का इरादा और फौजी बेहतरी बगैर लिंग भेद रो गुण है। अकादमी 353 कैडेट स्नातक री डिग्री हासिल कीनी। इस आगे दोस्ताना रिश्ता वाला देशां रा 21 कैडेटां ने डिग्री दी रीजी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत बचाओ अभियान ने खेतां किसाना और गांवां ने जोड़बारो मोटो अभियान बनावन बाबत कहो है। श्री चौहान आज नई दिल्ली माए खेत बचाओ अभियान री तैयारियां रे बारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। वे कहो कि इ अभियान रो मकसद खाद ने बुद्धिमानी काम लेवन, किसाना ने मौसम जुड़ी जानकारियां और राय टेम सर देवन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो गांवां री जनता ताई सीधो पुगावनु है। खेत बचाओ अभियान 1-30 जून ताई आखा देश माए चलायो जावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए काल समारा 11 बजा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इनरो प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री रा दफ्तर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल सागे न्यूज ऑन AIR ऐप माथे ही करियो चावेला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहो है कि देश माए चुनाव संविधान चुनावी कानून रे मुजब और साफ कोई सागे कराया जावे है। वे आज नई दिल्ली माए निर्वाचन आयोग री नुमाइंदगी करण वाला वकीलां रा दूजा राष्ट्रीय सम्मेलन माए बोल रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहो कि लोकसभा चुनाव रे दौरान साफ गोई जवाबदेही और निपक्ष तरीका वोट देवनो तय करण सारू करीब 1,08,00,000 सरकारी कर्मचारी तैनात करया जावे है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE रो पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून नु काम करण लागेला। विद्यार्थियां री परीक्षा री कॉपियां रा सत्यापन और उजू जंचावन री साफ

0: प्रक्रिया तय करण सारू ओ पोर्टल शुरू करियो जा रहे है। जयपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रा तहत पात्र रेहड़ी पटरी वाला ने कर्ज मुहैया करावण सारू नगर निगम और एक गैर सरकारी बैंक कान्यू मेलर 1 जून खास शिविर लगाया जावेला। 3 दिन रा आ शिविरा में पात्र लोगों ने कर्ज री दूजी किस्त दी जावेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका माए काम करने वाला ने सरकारी योजनावां री जानकारी जनता ताई पहुंचावण रा काम माए खास कड़ी बताया है। वह आज जयपुर माए राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन रा महाधिवेशन माए बोल रहा है। मुख्यमंत्री कहो कि स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन री कामयाबी माई नगर पालिका कर्मचारियां रो खास काम रहो है। श्री शर्मा कहो कि स्वच्छ भारत अभियान देश माय साफ सफाई रा काम ने जनता रो आंदोलन बना दीनो है।
1: मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वो कड़ी हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ भी मिले और हमारे माध्यम से कोई भी हमारा परिवार का भाई, कोई भी कर्मचारी अगर उसको किसी तरह की परेशानी हो तो उसका समाधान करने का काम भी आपका है। नगर पालिकाओं के कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मी हो, अग्निशमन कर्मचारी हो, जलापूर्ति कर्मचारी हो, ये दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे।
0: मुख्यमंत्री विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 रो संकल्प सांचो करण माए सगणा री भागीदारी ने जरूरी बताई। कार्यक्रम माए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य रा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्राई मौजूद रहा। प्रदेश माए निवेश सारू राज निवेश पोर्टल माथे मिली 9,000 अर्जियां मायों 6,032 मंजूर कर ली रिजी है। अर्जियां मंजूर करण रा काम माए जयपुर प्रदेश माए अव्वल रहो, जठे मिली करीब 2,000 अर्जियां मायों 1,332 ने मंजूरी दे रिजी। मुख्य सचिव वेश निवास आ जानकारी दीनी। पुलिस मुख्यालय बेहतर काम करण वाला 123 अहलकारां और कर्मचारियां ने महानिदेशक पुलिस डिस्क और प्रशस्ति रोल ऊन नवाजण रो ऐलान किन्नो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री ओर निकाली जिया हुकमरा मुजब पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक सिपाही लेवल ताई रा अहलकारां और कर्मचारियां रो मान करियो जावेला। नवाजी जावण वाला अहलकारां माए पुलिस री सिखावण देवण रो काम देख रहा अतिरिक्त महानिदेशक HGR सुहास, पुलिस महानिरीक्षक राजेंद्र सिंह, राहुल प्रकाश, परिस देशमुख, पुलिस उप महानिरीक्षक जय यादव, मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह शामिल है। 21 जून ने मनाया जावन वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रा सिलसिला माए प्रदेश माए नैरी नैरी ठोड़ा योगाभ्यास रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। आज सिरोही जिला रा एक विश्वविद्यालय माए योगाभ्यास रो कार्यक्रम रखी जियो। इन माए विद्यार्थी, शिक्षक और जनता उमाऊ सागे भाग लीनो और योग ने रोजमर्रा री जिंदगी रो हिस्सो बनावण री सोगन लीनी। नागौर कन जोधपुर बीकानेर गेला माथे आज दोपहर कार रे ट्रक री फेंट माए आ जावण 4 जना री मौत वेगी। पुलिस रे मुजब डुकोसी और राजूवास गांव बीचे व्या हादसा रे कारण कार माए सवार 2 महिलावां और 1 बच्चा समेत 4 जना री मौत वेगी। अरब मौसम, प्रदेश रा पाकिस्तान री सरहदू लागियोड़ा और उत्तराद आतुणी हलका माए आज दोपहर री पोर जोरदार रेतीलो तूफान आयो। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और सीकर जिला माए आए जोरदार आंधियों दिन माए अंधारो महसूस वेवण लाग्यो। रेत रा तूफान री शुरुआत हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलाओं भी जो थोड़ी देर माए आरे सारे रा मोटा हल्का माए पसर गयो। माणा चूरू खबर नवीस बतायो कि रेत रा तूफान जिंदगी माथे घणो असर पड़ियो।
2: चूरू में आज अचानक मौसम में बदलाव आया है। दोपहर पहले यहाँ तेज धूप और गर्मी का असर रहा, जिससे

0: आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया और तेज अंधड़ आया। तेज रफ्तार से हवाएं चली जिससे लोगों के टिन सेट उड़ गए हैं। तेज अंधड़ से पेड़ पौधे भी काफी टूटकर नीचे गिर गए। गांव में अच्छी बारिश हुई है, साथ ही चूरू में चने के आकार के ओले गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी में थोड़ी राहत मिली है। वहीं तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
1: कई छोड़ा 60-80 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार हूँ बायरो बाजो, जिनो धूलारो गुबार छा जावन रे कारण दूर ताई निजर नी आयो। इस दौरान लोगा ना दिन माए गाड़िया ने लाइटा चासनी पड़ी। जोरदार बायरो बाजनो कई छोड़ा रूखड़ा टूट गया और होर्डिंग्स उखड़ गया और बिजली री पूर्ति माथाई असर पड़ियो। राजधानी जयपुर माए सिंझानी पोर बादला मंडी गया, धूलो उड्यो, आंधी चाली और कठे कठे बारिश हुई। आंधी बारिश हूँ पारो 10 डिग्री सेल्सियस ताई उतरियो है। मौसम केंद्र जयपुर प्रदेश में आज करीब 30 जिला सारू आंधी बारिश सागे कठे कठे ओला पड़ बारा आसार चताया है। केंद्र आंधी चालन जोरदार बायरो बाजन और बिजली चमकन री बगत सावचेती राखन सारू कहो है। मौसम केंद्र रे मुजब आंधी बारिश रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। श्री गंगानगर जिला रा सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा काम रो पहलो दौर पूरो फेंक्यो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन बतायो के अमृत भारत स्टेशन योजना रा तहत स्टेशन भवन ने बेहतर बनावन, स्टेशन माए दाखिल भेवन और बाहर जावन रा न्यारा न्यारा दरूजा बनावन, गाड़िया उबी करण री नूवी व्यवस्था विकसित करण समेत कई खास काम करी जिया, जहां माथे करीब 20 करोड़ रुपया रो खर्चो आयो। इस आगे वठे करीब 10 करोड़ रुपया रा खर्चो 12 मीटर चौड़ो पैदल पुल बनायो जा रियो है और सूरज री रोशनी 50 किलोवाट बिजली पैदा करण री मशीन आई लगाई जा रही है। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहो भारत री फौज जरूरत पड़िया ऑपरेशन सिंदूर रो दूजो दौर चलावन सारू तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए विचार बतावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नगर पालिका कर्मचारियां ने सरकार और जनता बीच खास कड़ी बताया। और प्रदेश माए आज दूजा दिन ही धूलो उड़वा सागे आंधी चाली। सरहदी हलका माए रेत रा तूफान जिंदगी माथे असर पड़ियो। सागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो खेओ। नमस्कार।
2: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। संध्या के 7 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का अपना कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन बाला सभी करसान भाई बाणा का ताई आपका साथी जुगल भाई को गणो गणो राम राम। करसान भाई बाणाओ आज चे शनिवार और शनिवार का दिन आपन कोई न कोई गांव में चलना जा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संस्कार, वहाँ की खेती बाड़ी और वहाँ का मठ मंदिरा का बारा में जानकारी ले चा। आज मैं आया चा ग्राम भोजिया केड़ी, भोजिया केड़ी तहसील अंता जिला बारा। जब आपन कोटा से बारा चला चा तो अंता से बाई ओर 7 किलोमीटर बस्यो, बहुत ही सुंदर गांव छे। जब मैं यहाँ गांव में आया तो एक किराना की दुकान लाग रही थी, अंदरा सर अपना करसान भाई बन भट्टिया छा, वहाँ सुकरा राम राम साहब।
1: राम राम साहब,
0: काई नाम छे आपको?
1: बसंती लाल।
0: बसंती लाल जी, ये गांव में कतरी दुआड़े देखी आप?
1: मैंने 50 दुआड़े देखी।
0: जन्म यहाँ कोई छे?
1: यहाँ कोई।
0: अरे वाह सा, बस यो जो गाँव दिख रहे हो छे बाहर तो बहुत सुंदर छे, यो पहली बसाई छो?
1: बढ़िया, आदर्श गाँव छे।
0: आदर्श गाँव छे ना। एक बात बताओ, कयो कतला साल पुरानो गाँव होगो?
1: 5-7 साल पुराना। तो मानो
0: 5-7 साल तो 2-4 पीढ़ियां तो ताकि होगी
1: होगी
0: है ना। कतरा ग्राम की बस्ती चे?
1: 500 ग्राम की बस्ती।
0: अरे वाह, बहुत बड़ो गांव। तो खुद में ही ग्राम पंचायत चाहिए? मतलब अकेला ही गांव की?
1: ग्राम
0: रायपुर भी चे पास, वहाँ 50 घर होगा।

0: और आज यो जो उत्पादन हो रही ज्यादा यो भी खा रहे जो
1: यो खा रहे थे
0: तो टाइम की जो रोटी पानी बड़ा जी साग सब्जी जी ऊम का स्वाद मन आज का मंत्र जग
1: राधन को
0: कैसे अंतर
1: है? वो चना का डीरा तोड़ तोड़ जी रोटी खा ले जी भी स्वाद लगे जी
0: है ना
1: मीठा मेन बनो जो
0: बताओ
1: अरबान को तो भूसो बनो
0: अबार तो कोई काई नहीं रहा ना
1: का नहीं रहा ना पर वो चीज न लग अबार का चढ़ाई स्वाद लग मुंडो बड़े जबान का मुंगा की जी दाल रांध रखा हो जरा अपन हम तो स्वाद बड़ो जो अबान के दाल में स्वाद ही न बने
0: स्वाद ही न बने और पहली तो जैसे ज्वार की रोटियां भी थी ना
1: ज्वार
0: रोटी
1: खाओ
0: मिर्चियां हरी मिर्चियां सु तोड़ रही खा लेते वो भी
1: हरी मिर्चियां भी हरी मिर्चियां भी होती
0: हैं
1: सूं पर हरी मिर्चियां परचियां खूब होती मिर्चियां भी हां गाड़े पर बेच बजाओ है
0: ना बेची आपने
1: मन ने बेची बनिया ना मक बड़ा बड़ा ना
0: तो अब ना वो मिर्चियां
1: और अब तो काई भी कोई
0: नहीं है ना अच्छा अब तो खाली यूं वो क्या के बरसात में तो अट्टी जैसे धान भी बाओ चट्टी
1: धान कम बहुत कम कोई जवड़ा खेत में को मतलब
0: अच्छा धान नो आप क्या नहीं
1: ना तो ये करा कोई ना पहले करा जब करा कोई ना
0: कर
1: न रहा जब करे था
0: अच्छा न रहा जब तो ये बरसात में नर ना
1: दवाया के मारे सब गुटकी न बरसात में ना
0: अच्छा बरसात में नर ना आप या तो की टाइम की आओ छे सभी फसला में तो फिर अट्टी खरीब में काई काई बाओ छे फिर ता यहां
1: सोयाबीन सोयाबीन बांधे ज्यादा तक सोयाबीन नहीं होते मके वाला
0: तो काई साहब सुख देते होगी सोयाबीन
1: भाई कड़े दो ढाई भी कहां से डेढ़ दो
0: तो कम कट वाला
1: बहुत कम कट वाला
0: ना देखो क्योंकि हर साल ही वही वही बाओ चाची जो तो आपना जो बड़ा बुड्ढा चाहो वो भी तो कहे भाई प्रति फसल
1: फसल तो प्रति बाओ पर सोयाबीन के लाओ और छह काई
0: अच्छा जैसे पहली भूसो बनो जो आप तो घाटा फेरे जा
1: घाटा फेरे
0: तो घाटा फेरे जो भूसो बनो चो रही एक बार को तो जानवर उम भी वो ज्यादा दमदार रहो जो
1: दमदार रहे जो यार
0: उम गहूं भी
1: तो कल खाओ जा जानवर मेरे बच्चा रो तगड़ो जो बन दो ऐसे उठ गयो
0: वो कट गयो और फिर वो मैं थोड़ा गणा नाज भी आओ
1: नाज रो तो रथ रो
0: अब यहाँ मजीना में तो काय भी ना
1: चापड़ो जो बन तो चापड़ो जो खाना नुला वो कर बस सफेल तो मैं तो छन दंगी को रुपो भी आओ जो
0: हाँ
1: भाई रंगी की उनको कण भी आओ
0: और अब तो मशीना से जो सारे काम आते हो तो भूसो भी मशीना से
1: मशीना से बने जाते मशीना से
0: ना तो अब तो भूसो भी मंगो मल बला गयो चाहे जी करसान भाई बन चाहे जो आपकी बात चाहे सुन लिया चाहे ये जैसे आप लोग अब आगे जैसे ज्यादा ज्यादा दवाया को उपयोग कर तो यहाँ दवाया को रासायनिक खाद ही कम करा और एक जैविक खाद खेती की आड़ी बढ़ा अपन तो थोड़ा थोड़ा यदि एक एक आधा बीघा से भी शुरू करा
1: अरे वो आप आपको खबर ठीक है बगैर खाद ना आज ओढ़ देना तो दो कुंडल बीघा गहूं निकल
0: पर
1: अबान की तारीख पर देखे भाई।

0: देता रहेगा तो एक दिन तो हुआ तो पैर भी खत्म हो गया।
1: आपको कब ठीक जो हम मान ली
0: पैर भी तो पाचा होगा
1: ना ने वो तो आपको कब ठीक जो ना तो कमल जिसे हमारी बानो सात कुंडल आठ कुंडल बिगा गम कुंडल गया वो दो कुंडल तीन कुंडल बिगा गया हमारे तो गी में भी कसबू ना रही ना तो पहले कमल छियाद में कसबू आओ
0: चाह जो पहले यू कचा कर जो बाटिया पोर जो बाटिया चोपड़े चा ना और वो कल तो आंगले की दो दिन तक खुशबू न जाओ
1: जाओ
0: अरे बार तो घी मसाम बटिया ना तो खुशबू ना हो
1: अरे जमरी जवान को घी तो
0: अब
1: तो गीत जमरी
0: गर्मी में।

0: अरे बार तो घी मसा में बटे ना तो खुशबू ना हो।
1: अरे जमरियो जवान को घी तो अबार तो कोई गीत जमरियो
0: जमरियो
1: अबार अपन बोल कोई गीत जमरियो जी।
0: अब काय कहो जी भाई है ना। अच्छा राम राम साहब।
1: राम राम
0: और यही बोझे केड़ी गांव में जमा घूमता घूमता अटी पंचायत समिति की आड़ी है पंचायत की आड़ी। तो यहाँ एक और करसान साथी अपना बटे हुए अच्छा वहाँ से करा। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: काय शुभ नाम चा आपको?
2: परमानंद।
0: परमानंद जी अबार काय काम करो चो आप?
2: बस यहाँ को खेती को करा जी।
0: खेती को जी। और पशु कतनाक चे?
2: चार छह जानवर।
0: छह दूध के दे रहा जब
2: दो बसिया दे रही।
0: दो बसिया दे रही। तो कतनो दूध दे देते हो गए?
2: वो डेढ़ डेढ़ से सवा सवा किलो।
0: बस तो मान तो सिया सुना जग आठ आठ दस दस किलो दूध दे चुके गए बसिया तो
2: दे जो नरे चारो खाओ और भरपूर बाट मतलब जे दे जे
0: खिलाए पिलाए कान करो जो तवा
2: अटी दूध ही न बकतनो ये तेल केमिकल की
0: नहीं। तो आप तो दूध काय भाव दूध दे चो आप?
2: 70 रुपया 100 ग्राम क्रीम पे ले जी।
0: वो डेयरी वाला आता होगा वहीं दियो चो आप?
2: दुकानदार ले जी
0: 70 रुपया में। अच्छा वो क्रीम खाडर?
2: क्रीम खाडर।
0: और यूं आम ग्राहक दे तो 40-50 रुपए किलो?
2: 50 रुपए किलो दे।
0: 50 रुपए किलो
2: 60-70 जैसे भाव सूद दे जैसे।
0: अच्छा उससे दे
2: पड़े तो ले दे।
0: अच्छा फेट के हिसाब से? अच्छा
2: फेट का हिसाब डेयरी वाला ले जी।
0: वो तो डेयरी वाला ले जी।
2: अभी आप 70 का नहीं देगा 50 देगा तो कम हम थोड़ा पानी डाल कम हिसाब से कर दे जी।
0: वही बात। तो घी तो अगर कोई हो जाता होगा
2: घी तो अगर कोई हो
0: जाए आज आपके दूध हो चाहे आप चमक चाहे जितना बटिया थी एक पर भी चमक
2: घी दूध
0: ये तो अंतर चलो बात को घर को दूध दे दिखाऊंगा अपन तो आपका चमक रहेगी ना
2: चमक
0: रहे। और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा बच्चा बच्ची भी स्वस्थ रहेगा रहेगा ना। तो अपना अपना परिवार को तो ध्यान रखा ना कम से कम वहाँ के लेके ही करा
2: वहाँ के लेके करे
0: दूसरा के लेके ना तो आप घर के लेके
2: एक दो
0: घर का लेके ही करा ना
2: घर लेके करे
0: है ना। अच्छा राम राम साहब।
2: राम राम।
0: और करसान भाई बहनों में घूमता घूमता यहाँ ग्राम पंचायत में आ गया। ग्राम पंचायत बहुत ही बढ़िया ग्राम पंचायत है यहाँ की गांव के बाहर बनी हुई है। और यहाँ यहाँ का जो साथी है वो मल्या है वासु करा। राम राम जी।
3: राम राम साहब।
0: काय नाम है आपको?
3: राजेंद्र समझ।
0: राजेंद्र जी आपको जो गाँव चाहिए बोझा केड़ी
3: जी
0: इमा स्वच्छता को काई काम चल रही
3: है संबंधित यहाँ काम चल रहे साहब मजदूर आते हैं
0: हाँ।
3: और वो नाली की नियमित साफ सफाई करते हैं
0: नियमित
3: झाड़ू वगैरह निकालते हैं घरों से कचरा उठा के गाड़ी लगा रखी है वो
0: कचरा
3: गाड़ी चलती है।
0: अरे वाह वाह वाह
3: बिल्कुल साफ सुथरा है और कुछ
0: है ना। हाँ माँ देखियो माँ ने पूरा रोड बहुत बढ़िया बड़े हुए छे सुथरो छे सारो है ना। स्वच्छता के लिए घर घर जो शौचालय छे वो भी पूरा बन चुका
3: लमसम सब बना रहे हैं कुछ के तो बने गए 80% तो बने हुए हैं।
0: अच्छा
3: और कुछ बाकी हैं तो अभी लोग बना भी रहे हैं और कुछ के बाकी हैं तो चल रहा है काम हो
0: तो जागरूकता बड़ी
3: जागरूकता बड़ी है साहब लोग जागरूक हैं पहले की अपेक्षा काफी समझदार है पढ़े लिखे लोग हैं हर चीज समझते हैं।
0: अच्छा
3: काफी विकास है साहब।
0: और कचरा पात्र जैसे घर घर में कचरा पात्र कचरा उमड़ गाड़ी में डाले जाए लोग
3: जी सर घर घर में कचरा पात्र है सूखे कचरा का अलग है और गीले कचरा का अलग है जैसे गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं
0: डालता तो गाँव में काई विशेष हुआ देखिए आप बताए
3: इसे काफी गाँव में राहत मिली है सर इससे बीमारियां नहीं हो रही गाँव में गाँव के लोगों का स्वास्थ्य ठीक ठाक है
0: बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा जैसे यहाँ विकास का काम जैसे यहाँ कोई बड़ा विकास का काम का हो या यहाँ
3: सर यहाँ बड़े विकास के काम जैसे सार्वजनिक चौक हनुमान जी मंदिर पे एक कार्यशाला का निर्माण हुआ है जो मतलब उसकी साइज 6x200 का वो टेंट सेट बनाया तो उसमें है ना किसी भी धार्मिक आयोजन कथा वगैरह तो बहुत बढ़िया वहाँ पे वो आए सबसे बड़ा काम है। और दूसरे काम है जो खेल मैदान नेता साहब यहाँ पे
0: अच्छा।
3: तो खेल मैदान का भी 4 दीवारी का काम चल रहा है प्रगतिरत है
0: खेल मैदान बढ़िया
3: बढ़िया शानदार स्टेडियम बन रहा है
0: बहुत बढ़िया। और जैसे वो रोजगार के लिए का काम चल रहे हैं
3: रोजगार के लिए सर जो सरकार की स्कीम चल रही है नरेगा के तहत यहाँ पर बहुत सारे काम स्वीकृत हैं अभी कुछ चल रहे हैं काम मॉडर्न तालाब का भी चल रहा है तार फेंसिंग चरागाह भूमि में विकास कार्य ग्राम रायपुरे में चल रहा है और बोझाखेड़ी के अंदर भी कुछ मेड़बंदियां वगैरह चल रही है
0: बहुत बढ़िया।
3: और दूसरे काम जल्दी शुरू करने के लिए प्रयास किया जाए
0: आगे जो भी प्रयास है, बहुत
3: रोजगार देने के लिए,
0: रोजगार दे।

0: अच्छा, जैसे आपके यहाँ जो रोजगार जुड़वा का लेकर मान लो जो न जुड़ पाया और जो जुड़ गया तो वहीं काय करनी पड़ेगा?
1: जुड़ गया तो उनको तो दिक्कत नहीं है, जो नहीं जुड़े तो उनको प्रेरित करेंगे, उनको किसी न किस तरह से उनके जॉब कार्ड वगैरह बना के नरेगा या किसी लोन के माध्यम से ऐसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत की ओर से प्रयास किया जा रहा है।
0: अच्छा, अच्छा आज जो सरकार को जो नमामि गंगे जल योजना चल रही है इसके तहत काय करियो आज यहाँ ग्राम पंचायत में?
1: जल गंगा के तहत सर आज हमारे ग्राम रोज अखेड़ी में बावड़ी पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, महिलाएं आई और उन्होंने बावड़ी में जल देवता की पूजा प्रतिष्ठा की और वहाँ पे साफ सफाई का कार्य किया और नृत्य गान वगैरह ऐसे
0: महिला
1: बहुत सारी महिला
0: सुंदर कार्यक्रम,
1: बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ।
0: अच्छा अच्छा, और इस पानी बचा बाकी भी हुआ दी होगी वहाँ सारी सब कुछ भाई आपका जो कुआ बावड़ी जो साफ सफाई रखो
1: इनके बारे में जानकारी दी थी कि भाई जल ये तो जीवन है और जल को अपन को संचय करना है, भूमिगत जल की मात्रा अपन को बढ़ाने के लिए प्रयास करना है, कुआ बावड़ियों को अपन को गंदा नहीं करना है, स्वस्थ रखना है चाले ताकि अपने पीने योग्य पानी रहे।
0: है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपकी ग्राम पंचायत में कुल कितना वार्ड है?
1: इसमें प्रेजेंट टाइम सर 9 वार्ड है।
0: 9 वार्ड,
1: 9 वार्ड
0: तो यो एक ही गांव पड़े जी इमा या
1: इसमें 3 गांव आते हैं साहब?
0: कोसा कोसा
1: रायपुरिया है, लदवाड़ा है,
0: बोझेखेड़ी। अच्छा, तो बड़ो गांव यो बोझेखेड़ी,
1: बड़ा गांव बोझेखेड़ी।
0: अच्छा, कुल कितना वोटर होगा इमा यू?
1: वोटर सर 3500-3400 के आसपास,
0: 3500-3400 के लगभग। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपने देखा कि यहाँ शिक्षा की काय व्यवस्था है? शिक्षा का,
1: शिक्षा की भी सर व्यवस्था है, भी तो ग्रामीणों में काफी विकास है। विद्यालय पहले 10वीं तक चलता था, माध्यमिक था, आज वो कर्म उन्नत हो गए सीनियर तक है,
0: 12वीं
1: तक है। इनके अलावा प्राइवेट स्कूल भी है।
0: अच्छा, जो और बच्चों के लेकर अलग से कोई स्कूल चाहिए या एक ही स्कूल में चाहिए?
1: एक ही स्कूल है, उसमें सामूहिक रूप से लड़का लड़की दोनों पढ़ते।
0: अच्छा, और पशुओं की चिकित्सा के लेकर व्यवस्था चाहिए?
1: पशु चिकित्सालय है।
0: अरे वाह, पशु चिकित्सालय,
1: पशु चिकित्सालय साहब बैठते हैं।
0: अरे,
1: पुरानी ग्राम पंचायत भवन पे बैठते हैं।
0: अच्छा,
1: और काफी पशुपालकों की बढ़िया सेवा करते हैं।
0: बढ़िया सेवा करते हैं, सही बात है। और जैसे आज चिकित्सा के लेकर आम या नर्स भाई या कोई बटे
1: यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है।
0: अच्छा,
1: दो उप स्वास्थ्य केंद्र है। बोझेखेड़ी में भी उप स्वास्थ्य केंद्र, ANM वगैरह डॉक्टर वगैरह बैठते हैं और गोली दवाई मरीजों का इलाज करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे
0: जाते,
1: और एक निःशुल्क दवाई मिलती है और एक आयुर्वेदिक भवन है।
0: अच्छा,
1: जहाँ पे लोग आते हैं,
0: वेदजी बैठता होगा,
1: वेदजी बैठते हैं वहाँ भी,
0: बढ़िया व्यवस्था है आपके यहाँ तो।
1: और एक उप स्वास्थ्य केंद्र रायपुरिया में, दोनों गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है।
0: अच्छा, दोनों गाँव में स्वास्थ्य केंद्र है, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आपके यहाँ जो ये ग्राम पंचायत जैसा विधवा पेंशन चे, वृद्धा की पेंशन चे, या और कई तरह का ये सब काम?
1: हाँ, सब मिल रहे हैं साहब। वृद्धावस्था पेंशन भी मिल रही है, विधवा पेंशन भी लोगों को मिल रही है। पालनहार का भी लाभ कुछ जो पात्र है उसके लाभार्थियों को मिल रहे हैं,
0: वहाँ में भी मिल रहा है। बहुत बढ़िया। जल जैसे हर घर नल हर घर मतलब जल व योजना, उनके तहत भी यहाँ काम हुए?
1: जल जीवन मिशन का काम भी यहाँ पे चल रहा है। अभी कुछ घरों में तो कनेक्शन हो गए।
0: अच्छा,
1: और कुछ में काम अभी चल रहा है प्रगति पे, हर घर नल हर घर जल वो कार्यक्रम चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत। अभी कुछ कनेक्शन हो चुके लोगों के, और कुछ हो रहे काम प्रगति पे, बहुत बढ़िया चल रहा है।
0: तो लगभग पूरा गाँव में नल हो गया, वहाँ का बोझ जाएगा?
1: बिल्कुल,
0: आवेदन दे दिया होगा सब?
1: आवेदन कर रखे हैं,
0: पाइपलाइन अब बिछी होगी,
1: पाइपलाइन बिछा रखी है, सब
0: बढ़िया काम होगा,
1: बढ़िया काम रहेगा।
0: और पूरा गांव सीसी हो रहा है, जैसे मंदिर के आडिस हो गया है तो पूरा गांव सीसी हो रहा है, तो
1: पूरे गांव में लमसम सभी गलियों में कहीं भी कीचड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर गली में यहाँ के सरपंच साहब हैं, प्रधान साहब हैं, तो उन्होंने काफी पैसा लगा करके इन गांव को इंटरलॉकिंग बनवाए हैं और नाली नाला ऐसे बहुत सारे विकास कार्य करवाए हैं, बढ़िया काम हो रहे हैं साहब। नाला बना हुआ है, नालियां बनी है, इंटरलॉक बन रहे हैं, सीसी रोड बने हुए हैं,
0: बहुत
1: गांव में जगह जगह व्यवस्था है,
0: बहुत बढ़िया।
1: बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, और जो नई बस्ती है वहाँ पे कुछ इंटरलॉक वगैरह नाला नाली के काम अभी प्रगति व्रत भी है साहब, चल
0: रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपने आकाशवाणी कोटा से बात करी, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब,
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: और करसान भाई बनाओ, देखो यहाँ बोझेखेड़ी में मां घूमता घूमता ये किया खेत पे आ गया जा, तो यहाँ एक करसान

0: भक्तीच्या आमनामा सुकरा राम राम साहब
1: जय श्री राम
0: काय नाम छे आपको
1: राजेंद्र नायक
0: राजेंद्र जी अबारी आपका खेत बतो अपने काय लगा राख्यो जियो
1: या खीरा
0: हाँ
1: गिलकी लौकी मूला ग्वार
0: अरे वाह ये सब लगा रखे जे के बीघा का साग सब्जी चाहिए
1: साढ़े तीन चार बीघा टोर जी
0: साढ़े तीन चार बीघा में तो सिंचाई को क्या ट्यूबवेल चाहिए आपका
1: हाँ ट्यूबवेल का सिंगल फेज मोटर डाल रहेगी जैसे पल्लो सिस्टम जैसे ही चेक कर रही है
0: अच्छा अच्छा तो यीशु सिंचाई हो जाओ चो बराबर
1: आओ।
0: बहुत बढ़िया तो अबार इमत जो सब्जी मचे तो काय काय पसंद आ गई आपका
1: गिल की चालू हुई जी केवल फर्स्ट हार्वेस्टिंग करी
0: गिल की तो चालू होगी अब बाकी
1: फूल आ रहे हैं सब
0: लौकी करिया का सब
1: खीरा का फूल सारे सब
0: अच्छा तो ये में कोई हारी बीमारी तो ना रही बार
1: प्रेजेंट टाइम को उनका है भी
0: हाल तो कोई ना
1: दवाई आठ दिन दवाई छिड़कनी पड़े जी
0: अच्छा दवाई छिड़क रहा जो आठ दिन तो आ बार तो कोई भी हो कोई ना
1: कोई ना फिलहाल
0: अच्छा अच्छा अच्छा एक बात बताओ कि जैसे आपका मन में कैसे आए कि आप नहीं गर्मियों में भी साग सब्जी करनी चाहिए
1: मारा तो यूँ आए कि मन में तो जैसे यहाँ सोयाबीन जी 25-35 हजार का बीज मोज ये खेत में तो मैंने सोची 15 हजार खर्चो जाओ जी 20 हजार बचे जी तो सोयाबीन न करनी मैंने जैसे हमारे कोई मित्र गण जवाने की लौकी बढ़िया रह जैसे रह जे तो मन लौकी करनी जी पर मन सोई 4-5 आइटम कराए को भाव नरियो दी को रहो
0: अरे वाह वाह बहुत बढ़िया
1: तो यो सिस्टम कर रहे को 20 हजार बच रहे सोयाबीन में तो आपने 20 हजार ही सुबह बची सके जे कोशिश तो करा
0: सही बात है
1: तो 15-20 हजार होकर जो इमा जाओ
0: बहुत बढ़िया
1: ये कर रही हो खेती या कर ली सब्जी की खेती
0: बहुत बड़ी अच्छा जैसे आपने पहली हार्वेस्टिंग करी चे इमा कितना किलो कड़ी है बार
1: कुछ गलती मारी भी होगी जी
0: अच्छा
1: ना तो इम चार तेली निकलती
0: चार
1: पर दो तेली सही निकली
0: पर चार तेली तो उत्पादन ही हुए ना तो
1: उत्पादन हुए पर वो
0: तो ये एक तेली कितना किलो की जी
1: वो 9 किलो 10 किलो
0: दस किलो की तो भी 40 किलो गिल की एक बार में थोड़ी आपने
1: पलो हार्वेस्ट
0: और काय भाव बकी आपकी
1: या 12-10
0: 12-10 बहुत बढ़िया तो 12 रुपया 10 रुपया किलो तो 12 रुपया से भी बकी तो 4 बार थे यानी 500 रुपये गिल की एक दिन में बकी आपकी तो रोज हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी अब तो रोज
1: नहीं एक दिन छोड़ रही
0: एक दिन छोड़ रही एक दिन बहुत बढ़िया तो अब गिल की अभी के बाद में लौकी शुरू हो जाएगी आपकी
1: लौकी के फूल आ रहे खीरा के फूल आ रहे
0: और खीरा का ही फूल आ गया
1: फूल आ रहे
0: ये चालू हो जाएगी यानी सब मिलाकर कम से कम 100-200 किलो रोज आपका
1: खड़वा
0: के शुरू हो जाओगे बहुत बढ़िया तो ये जो अन्य जो फसल करा जा अपन उसको तो बहुत बढ़िया लागो ना आप ही भी
1: तो बढ़िया लाग रहे हो
0: और फिर मांग तो चेचनी सब्जियां की तो रात और दिन मांग चे
1: मांग चे
0: है ना तो करनी चाहिए क्योंकि अब गर्मी में तो खेत खाली रहते ना आपको अब आपने कम से कम साग सब्जी लगावा की सोची तो कम से कम
1: वो तो मैंने गर्मी का है मन तो बारिश का जुगाड़ जो करियो जी न तो मु गर्मी का तो मूंग भी कर फिर हो सके जो
0: हाँ मूंग भी कर सके जो
1: पर मन पूरी बारिश को जुगाड़ करियो जी
0: अब ये टेट बारिश था
1: सोयाबीन करनी मैंने
0: सोयाबीन करनी तो ये तो सारी 4 महीना चलेगी आपका कम से कम तो 4 महीना तो है तो बहुत बढ़िया काम हो जाओगे सोयाबीन से तो लाख गुना सही चेक सब्जी को
1: देखो भगवान खाए करे
0: बहुत बढ़िया ये जो करसान भाई बनचे जो आपकी बातचीत सुन रहे थे जैसे आपका मन में खेती स्वटर सब्जी के आइडिया आप आया छो और यो बढ़िया काम छे असे ये अटी तो बाधित सोयाबीन ऊटी बाधित गहूँ और ईसु ज्यादा काय भी न सोचे तो आगे जो जमानो ची इमें तो एक्स्ट्रा अलग से करवा की आवश्यकता
1: है करनी तो पड़ेगा ये तो मु भी यो वही करते आ रही जो ये कर रही जो यो पहली बार मारो भी सोच बदलियो भी जो मैंने एक बार पोल्ट्री भी डाल ली देसी मुर्गा मुर्गिया की
0: अच्छा
1: 300 बच्चा ला मन तैयार कर रो कर सिस्टम प्रयास तो करनी पड़ेगा
0: मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ नहीं हो तो नवाचार करनी पड़ेगा
1: अगर यो ठीक ठाक चले तुम एक साथ साथ बकरी फार्म और डाल बाबू
0: ये और बकरी फार्म
1: खेती संबंधी सिस्टम जे चारा पानी हो जाओगा
0: और वहाँ सारो पालन हो जाओगे और आज मांग भी बहुत है यहाँ की तो बकरी कीन बकरा कीन और यहाँ से आय भी बढ़िया चे
1: और ये 2 साल में 3 बार भी आया हो जी
0: 3 बार भी आया हो फिर भी एक बार में 2 बच्चा भी दे दे या एक भी दे दे तो भी बढ़ोतरी चलों की तो
1: अच्छा अच्छा
0: तो अलग अटर काम करनी ये जो युवा साथी जो आंद्रा पढ़िया लिखा जा आप तो एक अलग अटर काम कर रहे जो यही काय सलाह दे बचाओ जो काय कब बचाओ
1: यार करनी तो यही पड़ोगो क्योंकि ये पढ़ गया तभी ये खेती पे आनो ये अरे एक गेहूँ सोयाबीन वो पास नो रही
0: न हो रहा
1: सोयाबीन 1.5 बोरी 1 बोरी कट रही है ऊपर भी रिक्स है गेहूँ बार 8-9 कट जा अच्छा रह गया
0: छह रह गया
1: तो लो से तो अटर ही करो या तो गर्मी में मूंगी कर फिर रो
0: ज्यादा

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: करसान भाई बहनों अपन गाँव भोजिया खेड़ी में घूमया, यहाँ का मंदिर देखा, यहाँ का विकास का बारे में बात करी। बहुत ही सुंदर गाँव छे। फिर कोई न कोई गाँव में चलेंगा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संस्कार, वहाँ का गीत, वहाँ का खेत, वहाँ का कल्याण फिर बात करेंगे। अब आपका छाती जुगल भाई कहता है आज्ञा दियो। राम राम।

0: अभी हमारे ग्रामीण श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं परिचर्चा, पर्यावरण संतुलन के लिए मिलकर उठाए कदम। प्रतिभागी हैं श्री ब्रजेश विजयवर्गीय, श्री अमित सिंह राठौड़ और श्री लेखराज शर्मा।
1: श्रोताओं, कई बार हम सुनते हैं कि पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है, हमें पर्यावरण संतुलन के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, लेकिन क्या है वो कदम, हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना है? जी हाँ, हम जानेंगे विशेषज्ञों से। इसी विषय को लेकर के आज हमने एक परिचर्चा आयोजित की है हमारे स्टूडियो में और इस परिचर्चा में हमारे साथ रहेंगे श्री लेखराज शर्मा जी जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, श्री ब्रजेश विजयवर्गीय जी जो हैं चंबल संसद के संयोजक और डॉक्टर अमित सिंह राठौर जी, आप डायरेक्टर हैं ओम कोठारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर में। आइए श्रोताओं, इनसे जानते हैं कि हम पर्यावरण संतुलन के लिए क्या कदम उठाएं। श्री लेखराज शर्मा जी, परिचर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आपने कई लेख लिखे हैं पर्यावरण असंतुलन पर और पर्यावरण संरक्षण पर, आप कई लोगों से मिलते भी होंगे, कुछ आपके रिसर्च भी होंगे, क्या बातें आपको लगती है, क्या छोटी छोटी वो बातें हैं जिनकी वजह से आज हमें ये परिचर्चा आयोजित करनी पड़ी है, यानी पर्यावरण संतुलन के लिए हमें सजग होना पड़ा है?
2: जी मैम, एक्चुअल में क्या है, पर्यावरण की जो स्थिति है वो हमारे देश के अंदर बहुत ही गंभीर विषय होता जा रहा है।
1: बिल्कुल,
2: दिन प्रतिदिन वृक्षों की, जंगलों की कटाइयां हो रही है जिससे हीट वेव चलती हुई है, जो अपन जो कह रहे हैं ना गर्मी इतनी तेजी से पड़ रही है, उसका कारण क्या है, उसका मेन कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है वो वृक्षों की कटाई। जब तक हम इन वृक्षों की कटाई को नहीं रोकेंगे तब तक अपना ये जो पर्यावरण है वो सही नहीं हो पाएगा। इसको सही करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने पड़ेंगे अपने को। सेकेंडरी चीज क्या है, अपनी जो पॉलीथिन आती है ये इतना नुकसान करती है, अगर एक बार ये जमीन में चली जाती है तो वो जमीन भी बीमार हो जाती है और इंसान भी बीमार हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग बाग रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग कर रहे हैं खेती के लिए, वो जो फसल पैदा हो रही है वो फसल किस तरीके की है अपन उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपन ज्यादा उसको ज्यादा अपने उसका वजन बैठे उसके लिए अपन उसको बो तो देते हैं लेकिन वो कितनी बड़ी नुकसान दे, वो जहर होता है। तो इसलिए ये जो बहुत छोटी छोटी जो चीजें जिनका आप बता रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज पर बहुत गहनता से विचार करने के बाद में तभी

0: अपने को ये पर्यावरण है जो अपना संतुलित रहेगा, और ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: इसके लिए मैडम हर आदमी को अपने आप को खुद को अवेयर होना पड़ेगा। मेरे पास में जहां मैं रहता हूं वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, ग्रीनरी कैसी होनी चाहिए, वहां पर साफ सफाई किस तरीके की होती है, अपने जो पहाड़ है, खनन है, ये सब पर्यावरण की चीज है मैम। तो इनको सबको अपनी एक अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, अपना एक नैतिक दायित्व मानते हुए, किसी भी चीज को, हर चीज को सरकार के ऊपर ही छोड़ देना वो नहीं है, अपनी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये है मैम जी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा है सरकार से ज्यादा। श्री ब्रजेश विजयवर्गीय जी, आप चंबल संसद के संयोजक हैं, यानी जल से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आपके पास है, और जल से जुड़ा हुआ आपने काम भी कई वर्षों तक आपने जल संरक्षण के क्षेत्र में काम किया है। ऐसा क्या हुआ कि जल के संरक्षण की नौबत आन पड़ी?
2: जल हमारे जो पंच महाभूत है उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में है, और हमारा शरीर भी अधिकांश जल से ही बना है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सत्य।
2: एक पत्रकार के रूप में जब मैंने रिपोर्टिंग की तो उसमें अपने आसपास के क्षेत्रों के सभी जल स्रोतों को अपनी आंखों से जाके देखा और उनकी स्थिति का अध्ययन किया, और जो उनकी हालत खराब हो चुकी थी उसमें को लेके कहीं कहीं पीड़ा थी। जैसे तालाब हैं तो इन सबको लेके मैंने एक पुस्तक लिखी आज से करीब 30 साल पहले, जल निधि। तो कहते हैं कि लिखते लिखते लव हो जाता है, तो हमें भी पर्यावरण पर लिखते लिखते इसी जल जैसे विषय पर एक उसके प्रति एक प्रेम जैसी भावना होगी। जब हम किसी से प्रेम करने लगते हैं तो उसमें संरक्षण का भी विचार आता है, कि केवल वो केवल यही नहीं होता कि हम उससे जो है अफेक्शन रखते हैं। तो इसी के नाते हमने देखा कि हाड़ौती क्षेत्र में सबसे बड़ा जल स्रोत है हमारा चंबल। हमने देखा कि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जीवन रेखा है, और पूरे राजस्थान की निगाह चंबल के पानी पे।
1: बिल्कुल।
2: इवन जयपुर तक, जयपुर में भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। अभी बीसलपुर से जा रहा है, लेकिन उसके लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही है। सवाई माधोपुर के लिए बन चुकी है, बूंदी में चंबल से जा रहा है, और भी कई शहर जो है चंबल से पानी पे, चंबल के पानी के ऊपर निगाह जमाए हुए हैं। तो इसमें अर्थात जल राशि है। जल राशि इसलिए कहता हूँ मैं कि जल एक वो नहीं है, एक राशि के समान महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम हमारी राशि को काउंट करते हैं,
1: बिल्कुल
2: उसको सेफ रखते हैं, उसी प्रकार हमें पानी को भी सेफ रखना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे हाथ में जो है कि इसको कौन करता है, जल स्रोतों को खराब सरकार करती है या समाज करता है या और कोई करता है। सरकार और समाज एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, और सभी की नैतिक जिम्मेदारी है और संवैधानिक दायित्व भी है कि उनको जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। अब बात आती है आम आदमी के हिस्से की, आम आदमी क्या करे। आम आदमी जल को प्रदूषण से मुक्त करने के उपाय अपने स्तर पर वो कर सकता है। जैसे कि हमारे साथी शर्मा जी ने बताया कि पॉलीथीन प्लास्टिक
1: जी।
2: पॉलीथीन प्लास्टिक का कचरा एक जहर के समान है जो हमारी नदियों को, हमारे तालाबों को, हमारी कुएं बावड़ियों को, सबको प्रदूषित कर रहा है। हमारी जो यूज एंड थ्रो की आदत है, यूज करो और फेंको, तो ये जो एक कल्चर के रूप में हमारी सोसाइटी के अंदर विद्यमान हो गया है, इस आदत को बदलने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम इस आदत को नहीं बदलेंगे, और इस आदत को बदलने के लिए हमारी एजुकेशन पॉलिसी में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि हम नई पीढ़ी से ये उम्मीद करते हैं कि वह इस तरह की के उपाय करेगी। जब तक उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा तो ये केवल दीवारों पर नारे लिखने से, केवल संगोष्ठियां सेमिनार करने से, भाषणों से स्थिति में को हम ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारी शिक्षा में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का भाव जागृत होना

0: चाहिए, हमारी शिक्षा नीति है उसके अंदर ये तत्व आने चाहिए, जब भी हम नई पीढ़ी से बदलाव की उम्मीद करेंगे। 160 साल के व्यक्ति को समझाना पानी का महत्व, यह कोई ज़्यादा बेहतर बात नहीं होगी कि हम एक नए बच्चे को समझाएं, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और इसी जगह हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं कि हमारी नई पीढ़ी को हम सिर्फ कैरियर ओरिएंटेड बनाते जा रहे हैं, कैरियर उनके जीवन में इतना हावी हो गया है कि उनको इन चीज़ों पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि हम किसी बच्चे से पूछते हैं पानी कहाँ से आ सकता है, तो वो सीधा सा जवाब देता है टैप में से आता है,
1: बिल्कुल
0: उसके आगे उसके थॉट्स ही नहीं है। हमने जो पॉलीथीन प्लास्टिक हमारे यूज करके फेंका है वो कहाँ फेंकना है, उसको एक चीज बता दी डस्टबिन में फेंकना है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, उसके थॉट्स में वो चीज़ नहीं है।
1: बिल्कुल
0: हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, हमारी जमीन को करता है, हमारे खेतों को करता है, और जब उसमें आग लगा के कचरे का निस्तारण किया जाता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में फैलता है, तो वो वायु प्रदूषण का भी कारण बनता। और हमारे यहाँ बड़े बड़े पहाड़ कचरे के हो गए और इतने ऊंचे पहाड़ हो गए हैं दिल्ली के वजीराबाद में कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है,
1: बिल्कुल
0: कचरे का ढेर,
1: बिल्कुल ये तो स्थिति शोचनीय है।
0: और वहाँ के जो है भूगर्भ जल भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, और जो सतही जल है लेयर वाटर वो भी खराब हो चुका है। जब ये सारी चीजें खराब हो रही है तो वर्षा जल से हम की एक एक बूंद को बचाना ये हमारे विचारों में आना चाहिए, जब भी हम जल को आने वाली पीढ़ी के लिए बचा पाएंगे और कल को सुरक्षित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमित सिंह राठौर जी, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, एक स्वाभाविक बात है कि उद्योगों में आना जाना आपका रहता है, तो उद्योगों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें पर्यावरण प्रदूषण में जो एक सबसे बड़ा कारण जो माना जाता है वो उद्योगों को माना जाता है, ऐसा क्यों है?
2: देखिए, जब हम उद्योगों की बात करते हैं तो उद्योग कई प्रकार के हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जब काम होता है तो बहुत सारे केमिकल्स का उपयोग होता है, वो केमिकल जब गैस छोड़ते हैं तो सीधा पर्यावरण के साथ मिलते हैं,
1: बिल्कुल,
2: और उसका जो वेस्ट है जो निकलता है वो सब जल के साथ मिलता है, तो हम वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी करते हैं। जो अभी 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं, तो इस बार 2026 की जो थीम है वो भी यही है, क्लाइमेट एक्शन रिपेयरिंग अवर रिलेशनशिप विद नेचर, यानी जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई और प्रकृति के साथ संतुलित संबंध। इस थीम का मुख्य उद्देश्य केवल कार्बन उत्सर्जन कम करना नहीं बल्कि जीवन शैली, उद्योग और विकास के तरीकों में पर्यावरण अनुकूल बदलाव लाना है। और जब तक ये बदलाव हम नहीं लेके आएंगे, हमको ये मानना पड़ेगा कि हम पर्यावरण को संतुलित नहीं कर पाएंगे। हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, यानी जैव विविधता, लेकिन मनुष्य ही इस जैव विविधता को बहुत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। हम कहते हैं कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, हम हमेशा ये कहते हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए। हम अपने अधिकार की बात जरूर करते हैं लेकिन जब हमारी कर्तव्य की बात आती है हम सब लोग पीछे हट जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आज जो वृक्षों की कटाई की हम बात कर रहे हैं, यदि मैं कोटा शहर की बात करूं तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन लाखों वृक्षों को जो बरसों पुराने वृक्ष थे उनकी अंधाधुंध कटाई हुई है। हमने कॉन्क्रीट का जाल सब जगह फैला दिया है। यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो रोड के दोनों साइड्स जहां पर पहले कच्चा हुआ करता था आज हमने उसको सीमेंट कंक्रीट से पक्का कर दिया है। तो आप मुझे बताइए जब बारिश गिरेगी तो वर्षा जल कैसे धरती के अंदर जाएगा और वाटर लेवल बढ़ेगा। आज वाटर लेवल हम देख रहे हैं कि पाताल तक पहुंच रहा है। तो ये स्थिति आने वाले समय में हमारे को जल बचेगा ही नहीं, और कहते हैं कि जल है तो जीवन है,
1: बिल्कुल,
2: तो हमारा जीवन किस तरह से आगे बढ़ पाएगा? आने वाली जनरेशन के लिए हम बहुत बड़ा मतलब घातक प्रयास कर रहे हैं। हमें अभी भी सचेत रहना चाहिए कि हमारा जो भूजल है वो इतना डेप्थ में जा रहा है कि हमारे लिए आज हम चंबल की बात करते हैं, हम चंबल के पास रह रहे हैं लेकिन कई एरिया आज भी ऐसे है जहां पानी नहीं है, लोग सुबह सुबह डब्बे लेके बाल्टी लेके घूमते रहते हैं, कई किलोमीटर तक जाते हैं तब जाके उनको पानी

0: नसीब हो पाता है। चंबल की यदि हम बात करें, चंबल के अंदर डायरेक्ट सीवरेज के इतने सारे नाले डायरेक्टली मिल रहे हैं जो चंबल को जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके कारण यदि हम हेल्थ हैजार्ड्स की बात करें तो बच्चों के अंदर पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही है। उसका मेन कारण ही वाटर पॉल्यूशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हम जो सभ्य समाज की बात करते हैं, हम हवन सामग्री, पूजा सामग्री जो भी करते हैं वो सीधा पानी के अंदर प्रवाहित करते हैं। तो समझदार लोगों को ये समझना चाहिए कि कम से कम हम लोग तो वाटर को पॉल्यूट नहीं करें।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरा आप सभी से, जो जो भी श्रोता है जो सुन रहे हैं, मैं यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को खुद को सजग रहते हुए सब तरह से प्रयास करने पड़ेंगे ताकि प्रकृति को बचा सकें, वृक्षों की कटाई को, जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उनको रोकें, और जो वाटर पोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं जाने अनजाने के अंदर वो नहीं करें। सीमित संसाधनों के साथ जितना उपयोग हमको पानी का करना चाहिए उतना उपयोग करें, ताकि हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति क्योंकि वृक्ष रहेंगे तो जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल होगा।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि ये जैव विविधता का कारण है, ये एक साइकिल है। यदि एक भी चीज को हम डिस्ट्रॉय करेंगे वो पूरे हर तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा।
1: बिल्कुल। लेखराज शर्मा जी, जैसा आपने कहा कि प्लास्टिक भी है और कई चीजें हैं, आपके लेख रहे हैं उनमें मैंने भी कुछ लेख पढ़े हैं आपके, तो आप जब पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ कोई भी आलेख लिखते हैं उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया आपको कभी मिली है?
2: जी,
1: सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बताएं।
2: मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूं आपके लिए। मैं एक बार किसी उच्च अधिकारी महोदय के पास बैठा था, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था, तो वो बोले यार मेरे ताऊ जी को कैंसर है। तो मैंने कहा ये कैसे कहते पता चला, तो उन्होंने बोला कि वो जिस तरीके से वो थे वो चाहे होटल से और उस पॉलीथिन में पैक करा करके पीते थे। होटल पैसे जो चाय आती थी उसको पॉलीथिन में पैक करा करके लाते थे और कंटिन्यूसली में कई सालों से वे यही कर रहे थे
1: जी।
2: तो जब उनको जब चेक किया तो उसमें जहर पाया गया, कैंसर का लक्षण पाया। तो इसीलिए आपने जो कहा है कि मैंने उसी हिसाब से मैं आर्टिकल लिख करके मैं एक अवेयर करता रहता हूं कि अपन को ये जो छोटी छोटी चीजें इन पर बहुत ध्यान दें। कई बार अपन होटल ढाबों वालों के पास में जाते हैं, विशेषकर हॉस्पिटल के आसपास आप ज्यादा देखिएगा, उसके मरीज अंदर हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो उनको खाना लेकर के लिए किस में लेकर के जा रहे हैं?
1: पॉलीथिन
2: के अंदर लेकर के, वो स्लो पॉइजन जहर है, वो कैंसर आता है उससे, वो सीधा अपने किडनी पे इफेक्ट करता है उससे। इसीलिए अपने को सरकार बोलती है पॉलीथिन मुक्त, पॉलीथिन दोनों चीजें सरकार ने तो बोल दिया, उन्होंने तो अपना काम कर लिया, लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारी है। अपन कहीं भी जाते हैं जल्दी में जा रहा हूं भाई मैं होटल पे चाय दे दे पैक कर दीजिए फटाफट, समय नहीं है, ये नहीं है। आप चाय लेने के लिए होटल पे जा रहे हैं तो एक कोई केटली लेकर के जाइए, या वहां से इस तरीके की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंट से उस तरीके से होता रहे। तो सबसे पहले अपने को जो ये पॉलीथिन है, ये नारे लगाने से, स्लोगन लिखने से इससे कुछ नहीं, हर चीज को जब तक अपन अपने ऊपर किसी चीज का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे तब तक वो चीज संभव नहीं है। हर आदमी को सोचना पड़ेगा, प्रत्येक इंसान को सोचना पड़ेगा, किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है कि ये पर्यावरण के बारे में सोचना। इन छोटी छोटी चीज, पर्यावरण है क्या, पर्यावरण है क्या, यही चीजें हैं पर्यावरण। परि एक संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है चारों तरफ, आवरण यानी चारों तरफ का आवरण, यही पहाड़ है, नदियां हैं, ये अपने वृक्ष हैं, यही पर्यावरण है। और इनको जब तक अपन सेफ नहीं करेंगे, अब आपने पॉलीथिन के लिए क्या है, पॉलीथिन एक उस तरीके के, वो जहां भी हो जाए वो कभी 100 साल में भी खत्म नहीं होगी।
1: बिल्कुल।
2: और जिस जमीन में वो गड़ जाती है वहां की उसकी मृदा को खत्म कर देती है, उससे अपनी फसल भी नहीं हो पाती है, और फिर उसके धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जिसके जो जो अवगुण है वो उस जमीन के अंदर प्रभावित होते रहते हैं और वो जमीन बंजर हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती है। दूसरा मैंने एक निवेदन किया था, रासायनिक उर्वरक
1: जी।
2: वर्तमान में क्या है, किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इन रासायनिक उर्वरकों का इतना विशेष इस्तेमाल कर रहा है कि अपन सोच भी नहीं सकते। पहले अपन देखते थे खेत के अंदर गेहूं बहुत कम मात्रा में होता था, लेकिन वो प्योर होता था, ऑर्गेनिक होता था वो। आज क्या हो रहा है, उसकी जो लागत है वो भी बढ़ गई, खाद, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, ये वो इस तरीके करके, वो है क्या, वो सब जहर है।
1: बिल्कुल।
2: उससे उसको अपने को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक अपन ये सबसे कम इनमें खाद खेत में कम से कम अगर जरूरत है तो ही डालो,

0: बिल्कुल मत डालिए, तभी जाकर के ये भारत भी मजबूत होगा। ऐसे आज आदमी है बिल्कुल उसके अंदर कोई ताकत ही नहीं है, खाता क्या है, सब्जी है वो कहां से आ रही है, किस तरीके की आ रही है, वो सभी को पता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें ना मैम, ये सारी चीजें पर्यावरण के लिए, इन्हीं सभी चीजों को मिलकर के पर्यावरण बनेगा। ये
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने जो बात की कि किसानों
0: जी,
1: ने
0: जी
1: अनावश्यक जो रासायनिक प्रयोग किया, इस क्षेत्र में आपको कोई विशेष ऐसी बात नजर आई क्या, जब आप आलेख के लिए आप अगर रिसर्च करते हो तो कोई ऐसी विशेष बात जो बहुत ज्यादा, जिसने पर्यावरण को रासायनिक खादों के अलावा बहुत बड़ी बात कोई ऐसी नजर आई जिसने असंतुलन को बढ़ावा दिया?
0: मैं आपको बता देता हूँ, पंजाब से एक ट्रेन आती है बीकानेर के लिए
1: जी,
0: ठीक है, उसको उस ट्रेन का ही नाम कैंसर ट्रेन पर रख दिया लोगों ने।
1: ओहो हो,
0: और सबसे ज्यादा जो रासायनिक उर्वरक खादों का जो उपयोग होता है वो पंजाब के अंदर होता है। अब आप उसी से आइडिया लगा लीजिए कि किस तरीके से लोगों को वहां पर डेथ, मतलब वो ये हो चुका है इसके अंदर। तो कोई भी चीज आवश्यकता के अनुसार होती है वो तो होती है सही, बिना आवश्यकता के अनुसार उसको अपन ज्यादा लाभ कमाने के लिए, ज्यादा वजन बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज हो उसका अगर ज्यादा से ज्यादा अपन इस्तेमाल करेंगे ना तो वो बहुत नुकसानदायक होता है। लिमिट में होनी चाहिए हर चीज, क्योंकि लिमिट में क्यों होनी चाहिए कि ये भारत है, इसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है, ये जनसंख्या भी अपने आप में बहुत बड़ा पर्यावरण का एक कारण है, जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। आज अपने अंदर जनसंख्या वो बढ़ती हुई जा रही है देश की, ये सबसे बड़ा जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है वो जनसंख्या से हो रहा है। आप छोटे छोटे अन्य देशों में देखिए वहां की जनसंख्या है किस तरीके से, वहां का क्षेत्रफल क्या है, अपने यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो जनसंख्या है। जनसंख्या पर सबसे पहले कंट्रोल लगना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, जनसंख्या कंट्रोल होगी तो पर्यावरण ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाएगा।
1: बिल्कुल, और जनसंख्या के साथ शायद अपनी आदतें भी कंट्रोल करनी चाहिए जिससे ज्यादा होगा,
0: जिससे ज्यादा होगा जी।
1: बिल्कुल, ब्रजेश विजयवर्गीय जी, आप जल के क्षेत्र में जो आपने काम किया और आपने अभी कुछ समय पहले उससे संबंधित बातें भी बताई, जल प्रदूषण किन किन कारणों से, क्या क्या वो चीजें हैं जो जल को अति प्रदूषित कर रही हैं जिसकी वजह से आज हम सादा पानी नहीं पी सकते
2: जी? जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है हमारा म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसका निस्तारण की कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया है नहीं, जो है उसको हम मन से स्वीकार करते नहीं है। जैसे कि चंबल में सैकड़ों गंदे नाले गिर रहे, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगे हुए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट जब बनाए जाते हैं तो उनमें कितनी कैपेसिटी से वो पानी आएगा, कितनी कैपेसिटी से शुद्ध होगा, उसका सही आकलन होता नहीं है। तो हमारे यहाँ तीन जो ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं उनमें से एक भी फिट नहीं है, हम दावा नहीं कर सकते कि वह सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमने पैसा भी खर्च किया और गंदे नाले भी ट्रीट नहीं हो रहे, वह सब उसमें जा रहे हैं। जैसे हम चंबल की बात करें, हम कोटा की आबादी चंबल के किनारे बसती है, तो चंबल की अपनी स्ट्रीम में शहर का पेयजल स्त्रोत है और वहीं से पानी लिफ्ट करके उसको सप्लाई किया जाता है, और सबसे बड़े बड़े गंदे नाले उसी जगह गिर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो ये हमें देखना होगा, का मतलब हमें भी देखना होगा और सरकार को भी देखना होगा, क्योंकि आम आदमी के हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, जब प्रदूषित जल सप्लाई हो रहा है तो वो किस प्रकार से पिएगा, वो तो पिएगा इसी जो आ रहा है उसको, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार के साथ शासन, समाज और संत और महाजन, इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। जब तक तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा हम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का कंप्लीट समाधान नहीं कर पाएंगे।
1: डॉक्टर राठौर, आपने अभी जब उद्योगों की बात की, तो जब कोई भी इंडस्ट्री इस्टैब्लिश होती है, कोई भी उद्योग जब उसकी स्थापना होती है, तो उस वक्त मॉरल एथिक्स भी होते हैं, समाज के प्रति वो उसकी वैल्यूज जो है, उसके मूल्य है, वो भी निर्धारित होते हैं। तो उस वक्त क्या इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं ये भूल जाते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री या जो हमारा उद्योग इस्टैब्लिश होने वाला है, स्थापित होने वाला है, उससे इस समाज पर या पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उन्हें उस वक्त याद नहीं रहता है?

0: मेरा इस जगह ये मानना है कि जब भी किसी उद्योग का एस्टेब्लिशमेंट होता है
1: जी,
0: तो वो शहर से काफी दूर होता है इनिशियल लेवल पे, लेकिन जब उद्योग स्टार्ट होता है और वो अपनी गति से काम करता है तो उसके पास धीरे धीरे बस्तियां बसना स्टार्ट हो जाती है। और जब उद्योग स्थापित होता है तो उसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनको एक एनओसी लेना पड़ता है ताकि वो उद्योग पे स्टार्ट कर पाए। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ये जो गवर्नमेंट के जो मापदंड है उसको देखते हैं कि वास्तव में इससे जो कार्बन उत्सर्जन होगा उसका प्रॉपर वे के अंदर ये लोग सेटलमेंट करेंगे या नहीं, और उद्योगों को ये डायरेक्शंस दिया जाता है कि जितने वृक्ष आपको आसपास लगाने हैं वो उनके लिए मैंडेटरी है। यदि आज मैं आपसे बात करूं कोटा के अंदर, देखिए चारों तरफ वहां पर हरियाली का आवरण बिछा हुआ है और आए दिन वो काफी वृक्षारोपण भी करते हैं, और जहां पर उनकी जो धूल वगैरह जहां निकलती है वाटर शावर का भी इंतजाम किया हुआ है ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के अंदर नहीं उड़े ताकि वायु प्रदूषण न हो सके। जब लोग आपस में बसेंगे तो आप जानते हैं कि कोटा या किसी भी शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सीवरेज की।
1: बिल्कुल,
0: जो सीवरेज प्लांट है वो सफिशियंट नहीं है, और जो घरों से निकलने वाला मल है वो डायरेक्टली नाली में मिलता है और नाली से मिलके नदी के अंदर प्रवेश करता है। आज भी यदि हम कोटा शहर की बात करें मुश्किल से 1.5 लाख घर सीवरेज लाइनों से जुड़े हैं डायरेक्टली, जिसका जो मल है वो सीधा एचटीपी प्लांट के अंदर जाता है, बाकी जो वाटर है वो सीधा चंबल नदी के अंदर मिलता है। तो आप समझ सकते हैं जो पोल्यूशन है वो किस तरह से विकराल रूप से हम लोगों के द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए खाली हम एक उद्योगों को जिम्मेदारी दें ये संभव नहीं है। उद्योगों ने तो अपने लिए आज की तारीख में बहुत अच्छे प्रयास किए। कार्बन उत्सर्जन यदि हम कहें तो वास्तव में इतना नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन मैं यदि बात करूंगा वायु प्रदूषण की तो वायु प्रदूषण है, और हम किसी भी शहर की बात करें, आज बड़े से बड़े शहर की बात करें छोटे शहर की बात करें, हमारा जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो इतना हाई हो चुका है कि वास्तव में सांस लेना दुर्लभ है। यदि हम पहाड़ियों पर जाते हैं तो आप देखिए वहां हमें कितना अच्छा महसूस होता है, और जैसे हम वापस शहर के अंदर आते हैं तो हमारे सांस लेने में कितनी तकलीफ होती है। उसका मेन कारण ये जो पॉपुलेशन है वो तो एक है ही सही, उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है चार पहिया वाहन। जिस गति से 4-व्हीलर्स बढ़े हैं उनके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है ये भी वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक है। आज हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बार बार यही कह रहे हैं कि कम से कम हम लोगों को सोलर एनर्जी का उपयोग करना चाहिए, एयर का अच्छा से उपयोग करना चाहिए, लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सोलर का प्रोडक्शन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जब सोलर का होगा, जिस तरह से आज यदि हम कोटा या कोटा के आसपास बात करें तो हम कोल पावर का उपयोग कर रहे हैं जो हमारे वायु प्रदूषण के लिए सबसे खतरनाक है।
1: बिल्कुल,
0: और उससे निकलने वाला जो जल है वो सीधा नदी में मिलता है, वो भी हमारे लिए वाटर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए, जितना हम रोकेंगे जितना हम सजग होंगे, और इसमें मैं अगेन आपसे फिर यही निवेदन करूंगा इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता बहुत आवश्यक है। यदि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को दोष दें तो खाली वो उससे काम नहीं चलेगा। हम सिंगल पॉलीथीन की जब हम बात करते हैं तो हम बार बार ये कहते हैं, सरकार कहती है कि आप पॉलीथीन यूज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, तो मेरा सिर्फ इस जगह यही कहना है क्यों नहीं ऐसे प्लांट को ही बंद करते हैं। हम प्लांट बंद नहीं करते, लेकिन जागरूकता में जितने बहुत सारे NGOs हैं जो इसके ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं उनको बच्चों को बताने के लिए स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारे लेक्चर्स हम लोग कंडक्ट करवाते हैं ताकि बच्चे इस जगह सजग रहे। इवन सरकार ने भी कहा है कि नो सिंगल यूज पॉलीथीन आपको कहीं यूज नहीं करना। इवन हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की बात करें हम सिंगल पॉलीथीन को यूज ही नहीं करने देते। आज हमें शर्म आती है कि हम एक बैग अपने साथ हमेशा साथ कैरी करें। पहले भी हम देखें पूर्व काल में हम चले जाएं तो हमेशा एक थैला हमेशा होता था, जूट का थैला हो चाहे धोला, लेकिन आज हमारा जो स्टेटस सिंबल है हमें ये अलाउ नहीं करता कि हम थैला साथ में रखें। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हम पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें। अभी शर्मा साहब ने जो बात बताई थी वो बहुत सार्थक है कि आज जिस तरह से हम लोग केमिकल का जो उपयोग कर रहे हैं, जो मिलावट खाद्य पदार्थों में हो रही है, ये जहर का काम कर रही है। चाहे हम फ्रूट्स की बात करें, चाहे वेजिटेबल्स की बात करें, चाहे मैं इवन नॉन वेज की बात करूं, सब में मिलावट है, और इतनी मिलावट है वो कैंसर का

0: रखे। और जो स्टडीज बता रही हैं कि 2030 तक भारत के अंदर जो कैंसर पेशेंट होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल नगण्य है। तो इस पे सबको सबको मिलके ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं कि जो किसान है वो अपने लिए 1 या 2 बीघा में ऑर्गेनिक खेती का काम करते हैं, लेकिन आप ऑर्गेनिक खेती में ठीक है, आप अपने लिए वेजिटेबल उगा भी लेंगे, लेकिन आपको बाहर का तो खाना पड़े तब भी पड़ेगा। लेकिन सबको ये सोचना चाहिए कि आम जनता के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और आम जनता यदि वास्तव में देखा जाए तो इसके ऊपर त्रस्त है। और जो आज जितनी बीमारियां बढ़ रही है, और जिस मशरूमिंग की तरह जो अस्पताल प्राइवेट अस्पताल बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लाइन लगी हुई है, ये उसका मुख्य कारण है। इसलिए हमको सबको मिलके पॉल्यूशन के ऊपर, चाहे पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे ट्री कटिंग की हम बात करें, क्योंकि सब वापस अगेन मैं कहूंगा ये सब बायोडायवर्सिटी का कारण है और उसी के जो साइड इफेक्ट है हम अस्पतालों में देख रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपने अभी कहा कि पॉलीथीन जो है हम स्टेटस सिंबल की तरह अब कैरी नहीं करते हैं, उसे लेकर ही नहीं जाते हैं। एक स्टेटस सिंबल और भी है, वो है 4 व्हीलर या 2 व्हीलर। 2 व्हीलर तो खैर अब स्टेटस सिंबल ही नहीं रहा, 4 व्हीलर स्टेटस सिंबल हो गया है। अगर आप उच्चाधिकारी हैं तो आपके पास कार होनी आवश्यक है, और एक के साथ अगर आपके पास एक है तो दूसरी भी होनी आवश्यक है।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज
1: इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे।
0: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आज आपने जो 4 व्हीलर की बात की है, मैं तो कह रहा हूँ एक घर में 3 प्राणी और 3 ही कार बाहर खड़ी होती है। हर व्यक्ति के लिए एक इंडिविजुअल कार चाहिए। और ये जो कार है, जो ठीक है कार का उपयोग सभी को है मैं मानता हूं, लेकिन जो कार आई थी वो इसलिए आई थी कि वो फैमिली के लिए यूटिलाइज हो। लेकिन ये देखा जा रहा है कि एक सिंगल पर्सन उस कार का उपयोग करता है और उसी के कारण जो पॉल्यूशन हो रहे हैं वो इसी के कारण हो रहा है। जो आज पहले हमने कभी नहीं देखा कि कभी जाम लगा करता था, लेकिन आज आप किसी भी मेट्रोस के अंदर चले जाएं, वो आपको घंटों घंटों सिर्फ रास्ते में निकलने के लिए, अपने ऑफिस तक पहुंचने में, या कहीं भी आप जाना चाह रहे हैं वहां तक पहुंचने में घंटों आपको वेस्ट करना पड़ता है। और जब आप लाल बत्ती के ऊपर रुकते हैं 1 मिनट के लिए, तो आप सोचिए कि आप कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और वही आपके हेल्थ हैजार्ड्स को बढ़ावा दे रहा है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। और आज जो स्टेटस सिंबल जो 4 व्हीलर को बनाया है, होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, उसके लिए मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा, लेकिन इसीलिए अब सरकार चाह रही है कि लोग ईवी का उपयोग करें, ताकि जो उत्सर्जन है कम हो, सीएनजी का उपयोग करें। जितने अच्छे अच्छे पहले सीएनजी की बहुत कम उपलब्धता थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सीएनजी के जो स्टेशन हैं वो बहुत जगह अब स्थापित हो चुके हैं। तो सीएनजी का उपयोग करें, ईवी का उपयोग करें, ताकि जो वायु प्रदूषण है उनको हम भले हम गाड़ी यूज करें लेकिन उसका उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वायु प्रदूषण को संतुलित कर पाएंगे।
1: जब बात हम लाइफस्टाइल की करते हैं, हमारी जीवन शैली की करते हैं, तो उसमें बहुत बदलाव हुआ है पिछले कई वर्षों में। इतने फेर बदल हुए हैं कि एक जो 90 वर्ष का व्यक्ति है और आज जो एक 9 से 10 साल का बच्चा है, दोनों की लाइफस्टाइल बिल्कुल विपरीत कहूंगी मैं तो, बदलाव भी नहीं कहूंगी या विकसित भी नहीं कहूंगी, बिल्कुल विपरीत है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल के साथ आज हम पर्यावरण में भी बदलाव देख रहे हैं, तो क्या हमारी जीवन शैली में वो छोटे छोटे कदम होने चाहिए जो पर्यावरण के अनुरूप हो।
2: जी, आप कितना भी बड़ा काम करिए, उसकी सभी की शुरुआत एक छोटी चीज से ही होती है। ठीक है, काम भले ही वो छोटा रहे लेकिन उसका अर्थ क्या है, ये है मेन चीज। अपने को ऐसा लगता है कि अपन, आप सर ने बताया था कि कैरी बैग लेकर के जाएं, हम कहां जा रहे हैं और किसको दिखा रहे हैं, स्टेटस है क्या हमारा, किसको दिखाना चाहते हैं अपन। जिस दिन हमारे दिमाग से ये साइकोलॉजी निकल जाएगी कि हम सब एक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब उस दिन ये सारा पर्यावरण का एक सबसे बड़ा जो अपने दिमाग के अंदर जो प्रोटोकॉल भरा हुआ है, वो जिस दिन तक, जब तक वो इंसान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक भी पर्यावरण में बहुत ये सारा विशेष उसकी उसी के अंदर आता है। दूसरा क्या है, सारे काम बहुत, कोई भी काम देख लो, बड़ा काम कोई नहीं है, सभी काम छोटे हैं, और देखा जाए तो वो सभी काम बहुत बड़े हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप उसको किस तरीके से देखते हैं। क्या अपने घर की सफाई करना छोटा काम है, क्या आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, छोटा काम है क्या आप

0: अपने पार्क की सफाई कर रहे हैं, क्या आप अपने मंदिर की सफाई कर रहे हैं, क्या आप रास्ते के आगे से भी, क्या है, छोटा काम छोटा है लेकिन उसका आउटपुट कितना बड़ा आता है। आज किसी काम को मान लो मैं मेरे घर के सामने करता हूं तो हो सकता है मेरे को देख करके मेरा पड़ोसी भी उस पर झाड़ू लगाएगा, वो भी मैंने मान लो मेरी कॉलोनी के अंदर कोई वृक्ष लगाया तो वो भी लगाएगा। अपने यहां क्या है, एक दूसरे को देख करके सारी चीजों का एक हुड़ मची हुई होती है। लेकिन कुछ आप अगर अच्छा करेंगे तो कुछ लोग बाग ऐसे भी होते हैं, और उसको नेगेटिव बोलने की किसी की आदत होती है वो तो नेगेटिव ही बोलेगा, लेकिन अपने को उन नेगेटिवों की बात नहीं सुन करके, अपने को अपने ही मन की बात सुन करके, किसी फालतू की बात को ध्यान में नहीं रखते हुए आप जो कुछ कर रहे हो वो अपने देश के लिए कर रहे हो, अपने पर्यावरण के लिए कर रहे हो, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हो। अगर पर्यावरण है तो आगे आने वाली पीढ़ी है, पर्यावरण के अभाव में जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, बिना पर्यावरण के कुछ भी नहीं है। आप अपनी जो ये श्वास आती जाती है ये क्या है, पर्यावरण ही तो है। जिस दिन अपनी श्वास बंद हो जाएगी, श्वास कहां से आती है, ऑक्सीजन कहां से, पेड़ों से आती है। तो जिस दिन ये पर्यावरण ही नहीं रहेगा, वन ही नहीं रहेंगे, वृक्ष ही नहीं रहेंगे, पहाड़ नहीं रहेंगे, नदी नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा, तो इंसान भी नहीं रहेगा। ये सब कुछ है तो ही इंसान है, इनके अभाव में अपन इंसान की, जीवन की या भावी पीढ़ियों की कोई भी किसी भी प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हम।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल। एक छोटा सा यहाँ बात आती है कि जब बच्चे को शुरू से बाल्यावस्था से सिखाया जाता
0: जी,
1: है तो उसके उसका जो सीखा हुआ है वो जीवन भर उसके साथ रहता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये विद्यालय स्तर पर
0: जी
1: क्या छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं?
0: बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है, कोई भी चीज की शुरुआत होती है वो छोटे रूप में होती है, और जो छोटे रूप में बाल्यावस्था में जो चीज याद रह जाती है वो लाइफ टाइम बोले जीवन चलती है। विद्यालय में देखिए कोई भी किसी भी काम को थोपना और एक अपने आप में करना,
1: बिल्कुल
0: दोनों चीजों में फर्क होता है। अभी सरकार ने पिछली बार कहा था कि हर बच्चे को 10 पौधे लगाने, 20 पौधे लगाने, ठीक है वो उन्होंने अपने कागज के आंकड़े तो पूरे कर लिए, लेकिन वो फिजिकली कहां है? मैं पौधा लगाऊंगा, मेरी इच्छा से लगाऊंगा, किसी के कहने से नहीं लगाऊं। लेकिन ये एनवायरनमेंट, ये माहौल बनेगा कब? जब हम आपस में एक दूसरे को सीखेंगे, कोई लालसा करेंगे बिना किसी उसके अपने लोभ लालच के, अपन ये पर्यावरण से, जब हम पर्यावरण को समझेंगे, पर्यावरण को, बच्चे को यही नहीं पता है कि पेड़ लगाने का अर्थ क्या है, पेड़ क्यों लगाया जाता है। जब तक उसको ये चीजों की पता नहीं चलेगा कि एक क्यों लगाया जाता है, हमारे जीवन में क्या काम आएगा, हमारे जीवन में क्या काम आएगा। अभी सर ने बताया था थोड़ी देर पहले कि वो कचरे अपना घर का कचरा डस्टबिन में डालते हैं, तो उसको यही नहीं पता है बच्चे को तो वो कहाँ जा रहा है। इसीलिए जब तक बच्चों में ये चीज नहीं बताई जाएगी कि भाई हमारा जीवन कैसे चलता है, पर्यावरण में क्या है, पहाड़ क्या है, नदी क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, अग्नि क्या है, तो विद्यालय के अंदर सबसे पहले अपने जो प्राइमरी विद्यालय है उनमें सबसे पहले नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो सबसे अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया कर, अच्छी चीज है, सब्जेक्ट पढ़ाइए, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ में आपको ये नैतिक शिक्षा, अपना पर्यावरण, अपना जीवन, अपना ये सारी चीज बताना बहुत जरूरी होती है। और बच्चे के दिमाग में कोई भी, आज बच्चा 100 में से 99% तो लेकर के आ रहा है, लेकिन वो अपने पिताजी से पिताजी कहकर के नमस्कार ही नहीं कर रहा है, अपनी माताजी के पैर छू करके ही नहीं जा रहा है। तो आप वो 99% लेकर के आगे उसको यही नहीं पता ये मेरे अंकल जी आए, ये मेरे ताऊ जी आए, तो ये सारी चीजें कहां से होती हैं? ये घर से होती है, शुरुआत होती है। अब जैसा हम बच्चों के साथ में अपन जैसा बोलेंगे, बतराएंगे, बातचीत करेंगे, उनको समझाएंगे, वो भी वैसा ही करेंगे। आजकल क्या है, परिवार के अंदर भी बच्चों को समझाने का किसी के पास समय, हर आदमी इतना व्यस्त है पता नहीं वो क्या करता रहता है, ये समय थोड़ा सा बहुत ज्यादा होता जाता है। समय आप किसके लिए जी रहे हैं? अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। जब तक अपन उन अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, आप अपने दादा दादी को, बच्चे को दादा दादी के बारे में नहीं बताएंगे, आजकल के कुछ माँ बापों को तो ऐसे मैंने देखा है वो दादा दादी के पास तो बैठने ही नहीं देते अपने बच्चों को, वो तो ये अपने को जो पहले जो चीजें चलती थी उन चीजों पहली ही चीजों पर ही आना पड़ेगा। स्टेटस दिखाने से, फालतू की बातें करने से कहीं कुछ नहीं होता है, और ये कोरोना आया था इसने सब चीज अपने को सिखा भी दी थी, फिर भी इंसान क्या है सुधरता समझता नहीं है, लेकिन कोरोना एक सीख दे करके गया, जिस तरह जैसे जैसे लोग अलग हो रहे थे ना सबको एक किया था उसने। इसीलिए विद्यालयों में सबसे पहले बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखानी चाहिए, हर चीज के बारे में बताना चाहिए अपने को, उसके बाद में ही अपन देखो हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं हर किसी चीज का तालमेल होता है।
1: बिल्कुल।

0: पर्यावरण एक ऐसा मतलब चारों तरफ में पर्यावरण बनता कब है, जब सभी चीजें अपनी सकारात्मक बनती हैं तभी वो पर्यावरण है। अब अपन घर में झगड़ा कर रहे हैं, पड़ोसी देख रहे हैं, तो वो काई का पर्यावरण है। पर्यावरण कब होगा, जब हमारा हम अच्छे तरीके से रहेंगे, पड़ोसी भी उस तरीके से रहेंगे, कोई भी सड़क पे कोई जा रहा है, कोई पेड़ में कोई डाली में कुछ कर रहा है, कोई पत्ती तोड़ रहा है, ये सारी चीजें बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन इनका आउटपुट बहुत ज्यादा है। अपन कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह, जब तक हम नैतिक, वो कहें हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो हर चीज की शुरुआत अपने को खुद को करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम पर्यावरण के बारे में। और दूसरी चीज, एक चीज और है, अभी आगे 5 जून को अपन पर्यावरण दिवस मनाएंगे। पर्यावरण का कोई दिवस नहीं होता है, पर्यावरण तो हमेशा 24 घंटे मनाया जाता है। मनाए जाने का मतलब उसकी एक दिन ला करके फोटो खिंचा करके या ये पौधे लगा करके, ऐसे नहीं होता है। आपने कोई पौधा लगाया है, जब तक वो बड़ा नहीं होता, जब तक वो फल वाला है तो फल नहीं देता, छाया वाला है तो छाया नहीं, तब तक आपको 50 पौधे मत लगाओ, आप तो 2 ही लगाओ, लेकिन जब तक उनकी आप पूरी केयर टेकिंग, जब तक वो पूरा डेवलप नहीं हो जाए तब तक उसको छोड़ो मत। अब हमारे यहाँ क्या, आज पौधा लगा दिया, वो फोटो खिंच गया, फेसबुक पे लगा दिया, स्टेटस लगा दिया, ओके, हम उस गिनती में आ गए कि हमने पर्यावरण को बचा लिया। क्या फोटो स्टेटस लगाने से पर्यावरण बचता है? अपने को धरातल पर जाना पड़ेगा इन सारी चीजों के लिए। जी
1: बिल्कुल ब्रजेश जी, जब जल संरक्षण की बात आती है तो कई कदम हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है उठाए जाने के पक्ष में रहते हैं, तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि हमारा जल जो है वो अब तक तो प्रदूषित हुआ है लेकिन अब प्रदूषित होने से बच जाए?
2: जल प्रदूषण के लिए मैंने पहले भी कहा है और कई जगह मैंने लिखा भी है कि व्यक्ति को अपनी आदतें ठीक करनी पड़ेगी, आदतें ठीक करनी पड़ेगी। हमारी जो एक गलत आदत इन सभी चीजों को बिगाड़ रही है और उसको ठीक करने के लिए आवश्यक है कि वो चीजें संस्कार में आनी चाहिए। हम जिस जल का उपयोग खाने पीने के लिए और अपने जीवन को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, उस जल में जब हम मलमूत्र बहाते हैं, मैंने देखा है कि गंगोत्री जहाँ से गंगा जी निकलती है वहाँ भी लोग अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ते हैं।
1: बिल्कुल,
2: पॉलीथीन पाउच, गुटके, अपने अंग वस्त्रों को वहीं छोड़ के आ जाते हैं। जिस गंगा को हमने पूजनीय माना है, इसका दिवस भी मनाया है हम सब लोगों ने, गंगा अवतरण दिवस, जल का बहुत बड़ा स्त्रोत, जिसको भागीरथ जी कड़ी तपस्या करके धरती पर लेकर आए थे, उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? हमारा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। और इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी हो ऐसा मैं नहीं मानता, आम नागरिकों को ठीक होना पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि सरकार मना करती है बार बार कि इसका उपयोग मत करो, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो अपनी आदतों को ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये शिक्षा, संस्कार, इस सारी चीजें एक साथ चलेगी, उसके बाद ही हम जो है जल प्रदूषण को नियंत्रित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल राठौर जी, आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, युवा जो है आपके इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेते हैं, तो आपको क्या लगता है आज युवाओं की क्या जिम्मेदारी है?
3: मेरा ये मानना है कि जैसा कि अभी शर्मा साहब ने भी बोला था कि बच्चों को छोटे से क्लास से ही हमें ये सिखाना चाहिए, पर्यावरण के बारे में बताना चाहिए, नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। तो मेरा इस जगह ये कहना है कि हर पुस्तक के अंदर ये सब है, मौजूद है, और बच्चों को आज भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन उनको प्रैक्टिकली नहीं समझाया जा रहा। जो कमी है वो प्रैक्टिकल की कमी है। मेरा मानना है कि जितने भी विद्यालय हैं उसमें ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि जब बच्चा पहली क्लास में प्रवेश ले, पहली क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, उसको ये कहा जाए, क्योंकि जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ेगा वो 12th तक, हम ये मान के चलते हैं 12th तक उसी विद्यालय के अंदर वो अपनी एजुकेशन लेगा, तो पहली क्लास में उससे वृक्षारोपण कराया जाए और उससे ये कहा जाए कि इस 12 साल तक आपको इस पौधे को संभालना है, और जब वो पौधा पेड़ बन जाए, क्योंकि 12 साल में डेफिनेटली वो फल भी देने लग जाएगा, और उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण को ऑटोमेटिकली सहज लेंगे।
1: बिल्कुल,
3: आज हम स्कूलों में देखते हैं

सबको, जो भारत सरकार है उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई है, जिसमें जो हम कहें स्वच्छ भारत अभियान है, नमामि गंगे योजना है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा को डालें, हम हर लेवल पे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हमको ये देखना चाहिए धरातल पे कितना उतर रहा है। एक वृक्ष माँ के नाम, बहुत पेड़ लगे, बहुत पेड़ लगे हैं। सरकार ने मैं कहूंगा कि वन विभाग ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ बांटे हैं, लेकिन मैंने ये

0: बहुत पेड़ लगे हैं सरकार ने, मैं कहूंगा कि वन विभाग ने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पेड़ बांटे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उन वृक्षों का वो हाल हुआ है लगा के लोगों ने, जो सेल्फी खिंचाने के बाद कभी जाके ये नहीं देखा कि उस पौधे की स्थिति क्या है, अगले दिन जाके किसी ने उसको वाटरिंग तक नहीं की।
1: बिल्कुल।
0: तो वो पौधा पेड़ कैसे बनेगा? और मेरा मानना है जितने पेड़ उस समय लगाए गए उसका यदि 1% भी बच जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन हकीकत में देखें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहता हूं कई घर बहुत छोटे हैं, आज हम देखते हैं कि लोग मल्टी स्टोरीज के अंदर रह रहे हैं, वहां पर वृक्ष लगाना संभव नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम गमले तो लगा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसमें पेड़ लगा सकते हैं। आज हम ये देख रहे हैं, आज इतनी अवेयरनेस हो गई, ऑक्सी प्लांट, बहुत सारे ऑक्सी प्लांट्स अवेलेबल है जो आप इंडोर में आराम से उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो ऑक्सीजन दे। तो मेरा सिर्फ इतना आज ये कहना होगा, वो कहता है ना आचार्य तुलसी का एक शब्द जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राज स्वयं सुधरेगा। तो हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं करूं बल्कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूं। तो मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, पहले कुछ टाइम से ये छूट गया है, वरना मैंने अपने महाविद्यालय में हम लोगों ने यही प्रणाली हमेशा की थी, हमने एक वृक्ष मित्र समिति बना रखी थी
1: जी।
0: और जब बच्चा प्रवेश लेता था तो हम उसको वृक्षारोपण कराते थे, और वृक्षारोपण कराने के बाद कहते थे कि 2 साल तक, क्योंकि हमारी पीजी कॉलेज है तो 2 साल ही बच्चा हमारे साथ रहता है, कि इसका देखरेख आपको करना है। और उस परिसर में हमने बहुत वृक्ष लगाए और उनको बचाने की कोशिश भी की, जबकि जो हमारा महाविद्यालय है वो ऐसी जगह पे जहाँ टोटली स्टोन एरिया है और 1.5 फीट के अंदर ही फत्तर आ जाता है। उसके बाद भी यदि आज आप कभी आपको मौका मिलता है आप मेरे महाविद्यालय में आए, आप देखेंगे हम आज भी हरियाली से सुजज्जित हैं। तो मैं सभी से ये कहूंगा कि हम लोग खुद स्वयं एक एक वृक्ष जरूर लगाएं, हर हमेशा लगाएं, और हर घर के बाहर यदि आपके पास जगह है तो वृक्ष जरूर लगाएं, नहीं है कोई बात नहीं आप गमलों में लगाएं। यदि हर व्यक्ति ये कर लेगा तो मैं कहता हूं ऑक्सीजन की कोई कमी आने वाली ही नहीं है। आज हम देख रहे हैं विश्व के अंदर कई ऐसे देश हैं जहां पानी की एक बूंद नहीं है,
1: बिल्कुल
0: पूरा सूखा पड़ चुका है
2: जी।
0: और ये जितना भी पृथ्वी के ऊपर पानी उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, मात्र 1% जो पीने योग्य है। यदि हम उसको आज भी नहीं सहेजेंगे और जिस तरह से हम दोहन कर रहे हैं और उसको रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। सरकार ने आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए, बड़े बड़े मल्टीज के लिए बोल दिया है कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग करना होगा। वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे बड़ी हंसी आती है जब आज हम वही, जब आपने स्टेटस सिंबल की बात मेरे से पिछले क्वेश्चन में की थी तब ये था कि हम आज वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं। वाटर बॉटल्स के अंदर जो रिसर्च कहती है 2000 मॉलिक्यूल होते हैं प्लास्टिक के, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, और वो जब हम पानी के साथ अंदर बॉडी में जाते हैं वो कैंसर का कारक बनता है। तो हम सब पढ़े लिखे होके शिक्षित होने के बाद भी उन वाटर बोटल का यूज कर रहे हैं। आज आप शादी ब्याह में कहीं भी जाएंगे, बड़े बड़े शादी में होंगे, वहां वाटर बोटल ही दी जाती है, कैंपर नहीं रखा होता। यदि कैंपर्स रखे हुए तो वहां भी आप देखेंगे प्लास्टिक की ग्लासेस रखा जाता है, क्यों नहीं वहां स्टील का लोटा रखा जाए। यदि छोटी छोटी चीजें हम अभी से इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे तो मेरा मानना है कि हम वास्तव में पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे। मेरा मानना है जब हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं 1972 से, यूनाइटेड स्टेट ने 1972 में ये सोचा था, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि इस बात को लगभग 54-55 वर्ष हो गए। मेरे हिसाब से आज भी हम उससे भी गिरी हुई स्थिति में है। तो हमने इन 55 वर्षों में क्या किया ये सोचनीय है, और हम सबको पॉजिटिव स्टेप उठाते हुए, ये कोई देखा जाए तो ये सिखाने वाली बात नहीं है, मुझे पानी भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। हमने कोरोना काल में देखा है लोग ऑक्सीजन के लिए किस तरह से तड़पे हैं, और तड़पे ही नहीं भाई, कई लोगों की जाने चली गई विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए। तो हमें वो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए और उसको देखते हुए पॉजिटिव इंप्लीमेंट हमारी लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में करना चाहिए, तभी इस दिवस की भी सार्थकता होगी। और सेकंड वन, इस डिस्कशन का फायदा भी तभी हो पाएगा, और जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे कहूंगा इन छोटी छोटी बातों का आप अपनी लाइफ में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने जहां भी आप वर्क करते हैं वहां इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, तो वास्तव में ये सार्थक होगा और हम पर्यावरण के लिए कुछ कुछ स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। वरना जिस स्थिति में आज हम खड़े हैं तो वो तो वास्तव में बहुत शोचनीय और दयनीय है। तो आने

0: वाला समय इतना खतरनाक होगा कि हम उसकी आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यदि मैं आज आपसे नागौर की साइट की बात करूं, आज वाटर बोतल हम यूज कर रहे हैं, जो मैंने अभी भी बोला था, वाटर बोतल की जो एज होती है यानी कि एक्सपायरी डेट लगभग एक महीने बाद होती है, दो महीने बाद होती है। मुझे बड़ा ताजुब होता है, हम जब चंबल का पानी यूज कर रहे हैं, कितने वर्षों से यूज कर रहे हैं, उसकी तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जो हम जल का दोहन कर रहे हैं उसके कितने वर्षों पुराना पानी है, आपको पता है? जब हम लोग घर में, मैंने अपनी दादी को भी देखा है, वो जब नल आता था सुबह सुबह, जो मटके के अंदर, घड़े के अंदर पानी भरा हुआ होता था, वो ढोल देती थी कि ये तो बासी पानी हो गया। मुझे आज भी ये समझ में नहीं आता वो बासी पानी कैसे हो गया, उसमें ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल तैयार हो गया जिसकी वजह से वो बासी हो गया। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि हम पानी का सदुपयोग करें, और जो मिथ है कि पानी की एक्सपायरी डेट होती है, पानी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जब तक कि वो गंदा नहीं हो, हमें उपयोग उसका सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम पर्यावरण की रक्षा किसी न किसी रूप में कर सकें।
1: बिल्कुल लेखराज जी, क्या कहेंगे आपके सामूहिक हमारा कोई एक ऐसा प्रयास जो पर्यावरण संरक्षण की ओर हो?
2: जी, सामूहिक प्रयास, जब हम सभी ये ठान लेंगे, सामूहिक एक आवाज कब बनती है, जब किसी भी चीज के बारे में अपने खुद अपन को समझना पड़ता है। हम पर्यावरण के बारे में ही नहीं समझ पा रहे कि पर्यावरण होता क्या है, तो फिर हम सामूहिक प्रयास कैसे? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि पर्यावरण क्या है, किस वजह से अपन जीवित है। दूसरी चीज यह है, कम से कम अपने को फोर व्हीलर का, कई चीजों का, इनका कम से कम उपयोग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं उपयोग करना चाहिए, लेकिन कम से कम करना चाहिए इन चीजों, अगर जरूरत है तो ही। अब जैसे आप रोड पर कोई गाड़ी स्टार्ट खड़ी हुई है, उसकी साइड में होकर के निकल करके पैदल चल रहे हैं, तो आपको क्या कैसा लगेगा? आपको, आप निकल नहीं पाएंगे। अपना 4 डिग्री टेम्परेचर तो इन फोर व्हीलरों के, इनके एसी के कारण हो रहा है।
1: बिल्कुल
2: ठीक है ना। तो अपन को सामूहिक प्रयास ये करना चाहिए, हर चीज को मितव्ययता से, जहां जितनी जरूरत है, पानी की भी जितनी जरूरत है उतना अपन को लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, कहीं अपन जा रहे हैं, गिलास में पानी आया, अपन ने थोड़ा सा पी लिया और उसको छोड़ दिया।
1: बिल्कुल,
2: आपको कम पीना है, आधा बोलिए भैया आधा गिलास लेकर के आइए आप, ठीक है ना। वेस्ट नहीं जाता पानी जैसी महत्वपूर्ण चीज, ये वेस्ट के लिए नहीं है। अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहाँ एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैं एक बाल्टी पानी से नहा लेता हूँ, मेरे लिए 10 लीटर पानी काफी सफिशियंट है। और लोग बाग क्या है, वो लगा करके नहाते रहते हैं, पानी डुलता रहता है, शावर लगा कर। ये तो अपने को खुद हर चीज पे पहले ही दूंगा, देखिए वो कितने बड़े आदमी, वो कह रहे मैं तो मेरे लिए तो एक बाल्टी काफी, उसी से मैं जीवन से, कितनी उम्र हो गई, वो अभी बोल करके गए यहाँ कोटा आए थे तब वो। तो अपने को हर चीज को सोचना पड़ेगा, और सामूहिक आवाज कैसे बनेगी, जब मैं आपको देखूंगा, आप और किसी को देखेंगे, मैं मेरे बच्चे जब मेरे को देखेंगे, पड़ोसी जब देखेंगे, जब वो एक ऑटोमेटिक ही सामूहिक चीज बनेगी। हमारे को उसके बारे में सकारात्मक सोचना पड़ेगा, जल है तो कल है, पर्यावरण है तो कल है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमको एक सामूहिक सोच होती है, इंसान की एक ह्यूमैनिटी होती है, भाई अपन जीवन कैसे है, किस तरीके से जीवित है। जब तक अपन की ये चीज पता नहीं होगा, हम अभी आधे से लोगों को तो यही नहीं पता है हम जीवन कैसे हैं, कहाँ से ऑक्सीजन आ रही है, कैसे, पहले उस चीज का महत्व पता होना चाहिए कि इस चीज का कितना बड़ा महत्व है, क्या है ये हमारे जीवन में। जब तक हम सामने वाले को नहीं समझेंगे, उस चीज को नहीं समझेंगे, जब तक उसके महत्व के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी कदर नहीं करेंगे। और जब हम उसकी चीज की कदर करेंगे, वही पर्यावरण अपने आप में सुंदर, सुसज्जित, अच्छा बनेगा उसके अंदर। जी
1: बिल्कुल। ब्रजेश विजयवर्गीय जी, आपसे प्रश्न की, जो सिंगल यूज प्लास्टिक की बात अभी इतनी बार हमारे सामने आई, उससे हमारा जल बचे, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए?
3: दरअसल हम जब नीतियों का निर्माण करते हैं या कोई डायरेक्शन जारी करते हैं सोसाइटी के लिए, तो उस पर गहन विचार विमर्श नहीं होता। सिंगल यूज प्लास्टिक कितने लोग जानते हैं?
1: बिल्कुल।
3: कि क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, ये केवल कुछ पढ़े लिखे लोग समझते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, आम आदमी को अभी भी पता नहीं है कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है। तो हमें एक तो ये, यदि प्लास्टिक खराब है तो हर प्रकार का प्लास्टिक खराब है, ये चीज समझना पड़ेगा। और इसमें डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि कौन सा प्लास्टिक रिसाइकिल के योग्य है, कौन सा प्लास्टिक रिस

0: रिसाइकल के योग्य नहीं, तो सिंगल यूज प्लास्टिक रिसाइकल के योग्य तो है, लेकिन उसका तंत्र हमारे सोसाइटी में या कहीं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कहीं भी नहीं है कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का करें क्या, उसको फेंकना ही पड़ेगा, वो कितना इकट्ठा करेगा। जैसे मैं अपने ऊपर लूँ, मैं कहीं से सीख के आया था, देख के आया था कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। हमने जो भी कैरी बैग्स आते हैं, शायद दूध की थैली है या सब्जी की थैली है, उनको इकट्ठा कर लिया। हम जब उसको लेके गए कबाड़ी के पास, तो उसने बोतल में से उसको निकाल के बाहर कर दिया और बोतल को ले लिया, तो वो तो वापस वेस्ट बन गया। तो हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा गहराई से इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ये चीज़ें समझानी पड़ेगी लोगों को। तो ये जो अंग्रेजी के वर्ड हम जो यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, सभी करते हैं, तो उसमें स्पष्ट बात नहीं होती कि जो कुछ लोग समझते हैं कुछ लोग नहीं समझते। आप किसी से पूछ लो क्या होता है सिंगल, सिंगल यूज डबल यूज क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें हम एक बार उपयोग करके के बाद फेंक देते हैं, और एक होती है कि जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं। तो ये इतनी सी चीज हम समझा नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, तो इसके लिए भी विचार करना पड़ेगा हमें, और ये चीज संस्कार में आनी चाहिए। मैं बार बार इसी बात पे जोड़ दूं।
1: राठौर जी, जब बात मैनेजमेंट की आती है, तो उसमें एक विषय है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम कम से कम रिसोर्सेस को यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेते हैं। क्या हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उनका भी कम प्रयोग, पुनः प्रयोग और पुनर्चक्रण, इस प्रक्रिया को हम किस तरह से हमारे जो विद्यार्थी हैं जो आज भी पढ़ रहे हैं, उनके क्या पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, या किस तरह से उनके आदतों में, या कहूं कि उनके मस्तिष्क में ये बात बैठा सकते हैं?
2: देखिए, इसकी जिम्मेदारी हमारी, मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि सामूहिक ही है। जब एजुकेशन की हम बात करते हैं, काफी अवेयरनेस सेशन हम लोग आज भी कंडक्ट करते हैं बच्चों को पर्यावरण के बारे में बताने के लिए, लेकिन जब वो घर जाता है वो भूल जाता है। वो स्कूल तक तो उस बात को याद है, लेकिन वो घर जाके भूलता है, तो उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी परिवार की भी है। यदि परिवार में जो बड़े हैं, यदि वो उन सब चीजों का उपयोग करेंगे, वो प्रैक्टिकली लाइफ में बच्चा देखेगा, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंट करेगा, और वो इम्प्लीमेंट करेगा तो बट नेचुरल है कि घर में जो हम पर्यावरण के लिए बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली ही सीखेगा। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, अभी हम सिर्फ बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, किताबी ज्ञान दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं कि बच्चा अच्छे डिविजन से पास हो जाए, लेकिन उस शिक्षा का प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो इम्प्लीमेंट करे वो हम बच्चे को नहीं सिखा। तो उसकी जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खाली एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं, के साथ साथ समाज की भी है, परिवार की भी है, तभी हम उस चीज को, उन बच्चों को पर्यावरण के बारे में बचपन से ही सिखा पाएंगे। यदि आज जो बड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं, हमारे जैसे लोग भी हो चुके हैं, हम इस बारे में चिंतन कर रहे हैं, लेकिन यदि उस बच्चे में बचपन से चिंतन हो जाएगा तो शायद न तो वो प्लास्टिक यूज करेगा, न वो पानी का दुरुपयोग करेगा, और वो पर्यावरण को शुद्ध भी रखेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी होती है, उसको जिस प्रकार आप ढालेंगे उसी प्रकार से वो आगे बढ़ेगा और समाज को, सोसाइटी को, पर्यावरण के लिए अच्छे कार्य करेगा। तो मेरा मानना है कि इस जगह हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, अवेयरनेस सब लोग कर रहे हैं, और इसकी गति को और बढ़ाना चाहिए, और उसको प्रैक्टिकल कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो बताना चाहिए, तभी बच्चा उसको ले पाएगा। क्योंकि आज जो बच्चा है वो बच्चा पुराने जमाने वाला बच्चा नहीं है, आज वो साइंटिफिकली जानना चाहता है कि वास्तव में मेरा ऐसा करने से उसके परिणाम क्या होंगे। तो बच्चों को परिणाम भी दिखाने पड़ेंगे, जब पॉजिटिव परिणाम आएंगे तो बच्चा अपने आप मानेगा।
1: पर्यावरण संतुलन के लिए हम क्या कदम उठाएं, इस विषय पर आज हमने जो परिचर्चा आयोजित की, उसमें श्री लेखराज शर्मा जी, श्री ब्रजेश विजयवर्गीय जी और डॉक्टर अमित सिंह राठौर जी हमारे साथ रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
4: पर्यावरण संतुलन के लिए मिलकर उठाए कदम, इस परिचर्चा को अभी आपने सुना। प्रतिभागी थे ब्रजेश विजयवर्गीय, अमित सिंह राठौड़ और लेखराज शर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आपको दे देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 2 जून को प्रातः 8:15 पर फोन इन कार्यक्रम का विषय है हर्निया रोग के निदान और आधुनिक विकल्प। जो श्रोता इस विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं वे टेलीफोन करके सीधे डॉक्टर सीपी सिंह से बात कर सकते हैं। समय एक बार फिर से सुन लीजिए, मंगलवार दिनांक 2 जून को प्रातः 8:15 से 9 बजे तक। हमारे टेलीफोन नंबर होंगे 0744-29-411-42। सूचना समाप्त हुई।

ये प्रसारण आकाशवाणी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। आप सभी को निशा धूत का नमस्कार।

अभी आपने आरडी बर्मन का संगीत सुना, फिल्म सनम तेरी कसम में इस गीत को आवाजें दी थी आशा भोसले, आरडी बर्मन और साथियों ने, और गीत लिखा था गुलशन बावरा ने। आकाशवाणी के चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और आइए अब सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जंगली से, आवाज मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, नगमा है हसरत जयपुरी का और मौसीकी शंकर जयकिशन।

ये प्रसारण आकाशवाणी के चंबल चैनल से किया जा रहा है। सोती हुई आंखों को सलाम हमारा, मीठे सुनहरे सपनों को आदाब हमारा, दिल में रहे प्यार का एहसास सदा, आज की रात का यही पैगाम हमारा।

0: अभी आप सुन रहे थे नौशाद का संगीत। फिल्म राम और श्याम के इस गीत को आवाज़ दी थी मोहम्मद रफ़ी ने और लिखा था शकील बदायूनी ने। इसके साथ ही आज का चित्रपट का संगीत समाप्त करने की निशा धूत को अनुमति दीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या होगी जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरामैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरामैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में

0: खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
2: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की

0: अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली SIP है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंह

0: सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। रात्रि के 9 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी तराने कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी में।

आकाशवाणी कोटा बूंदी के सभी श्रोताओं को राम नारायण मीणा का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओं, आपका इंतजार समाप्त हुआ और शनिवार का वो समय आ गया जब आप जुड़ते हैं हमारे केंद्र के उस प्रोग्राम से जिसमें हम आपसे बातचीत करते हैं, कोटा शहर के बारे में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं और जहां आप रहते हैं वहां के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण पृष्ठभूमि की जानकारियां देश भर के श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम देश भर के पर्यटन की जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने का एक बहुत ही प्यारा सा जरिया भी बन गया है। तो आज भी हम इसी तरह से हमारे श्रोताओं से बातचीत करेंगे और उनकी पसंद के गाने आपको सुनवाएंगे। तो चलिए अब सोशल मीडिया से थोड़ा सा ध्यान हटाइए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि इस प्रोग्राम में जीवन की सच्चाइयां हैं, दिल की बातें हैं और आप जैसे प्यारे प्यारे श्रोताओं से बरसों पुराना अपनापन है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आकाशवाणी कोटा का साप्ताहिक फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी।

0: सर ये बूंदी ब्रांच के नाल है ना सर?
1: हाँ जी।
0: ये बीचों बीच निकल रही है।
1: जी
0: आप राम नारायण जी मीणा हो ना?
1: हाँ मैं राम नारायण बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी सर।
1: आपको कैसा लगता है हमारे यहाँ से जो कार्यक्रम होता है हेलो आकाशवाणी और दूसरे कार्यक्रम?
0: सभी सभी अच्छे लगते हैं सर, चौपाल, आकाश, हेलो आकाशवाणी, हेलो डॉक्टर, युवाणी वगैरह सब।
1: तो आप क्या
0: रात के वो
1: जी हाँ बताएं, रात में कौन सा कार्यक्रम आता है?
0: रात को वो आता है ना वो चांदनी के फूल क्या?
1: अच्छा रात रानी के फूल।
0: रात रानी के फूल वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा पसंद आता है आपको वो कार्यक्रम?
0: सर पहले बहुत चिट्ठी पत्री करता था मैं रेडियो पे, अभी तो रेडियो अभी तो ये मोबाइल में सुनता हूँ मैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पहले काफी चिट्ठी पत्रियां लिखते थे आप?
0: हाँ सर पहले बहुत चिट्ठी पत्री लिखता था।
1: तो अभी क्या करने लग गए आप, क्या काम करते हैं?
0: मेरी पसंद क्या सर?
1: काम क्या करते हैं अभी आप?
0: काम तो सर कहती है थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करता हूँ। गाँव हरा भरा है, अल्पा नगर के पास ही है।
1: अच्छा भरता बावड़ी गाँव बहुत हरा भरा है ना?
0: हाँ सर। हाँ धान और गेहूँ होते
1: हैं। बहुत ही बढ़िया। तो अब ये बताओ भैया कि अभी सरकार कह रही है कि भाई अपने को कम से कम वाहन चलाना चाहिए, कम से कम डीजल पेट्रोल और इनका उपयोग कम करना चाहिए, है ना?
0: हाँ सर, तो सर गैस वैस सबकी किल्लत आ रही है अभी तो।
1: हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप देश के युवा हो, ठीक है ना? तो हमारे युवाओं का क्या दायित्व तो बनता है, कैसे हम कम कर सकते?
0: जी सर, मतलब बिजली पानी का सही दुरुपयोग न करके सही उपयोग करना चाहिए। कम से कम डीजल में यूरिया खाद भी कम डाले।
1: हाँ।
0: और जो जैविक खाद होता है उसका उपयोग ज्यादा करे।
1: हाँ, अच्छा
0: तो मुनाफा होगा सर। कोटा आकाशवाणी का फिर बाद में 10 बजे विविध भारती लग जाता है, वो विविध भारती का सुनता हूँ दिन में तो आता है नहीं। पहले रेडियो था तब विविध भारती भी सुनता था दिन में भी, हवा महल वगैरह।
1: वाह आप तो सच्चे और बहुत ही दिल से सुनने वाले श्रोता हो भाई, है ना? अब बताओ कौन सा गाना सुनेंगे आज कार्यक्रम में आप?
0: सर फिल्म का नाम है सावन भादो और गाने का बोल है कान में झुमका चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके।

0: हेलो
1: नमस्ते सर, मैं सत्यनारायण मीणा ग्राम वर्ता बावड़ी जिला बूंदी राजस्थान से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, तो हाड़ोती से ही बोल रहे हैं आप, है ना?
1: आड़ोती से यहाँ तालाडा से 10 किलोमीटर दूर है, दाबी रोड पर।
0: अच्छा, भरता बावड़ी है ना? अच्छा, बहुत सुंदर नाम है आपके गांव का तो, है ना? भरता बावड़ी कितना अच्छा लगता है, भरा भरा।

मस्तानी, ओ जानी जरा नजरें मिला ले समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा रंग।

आगे पचासी झटके फसेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय

0: हेलो।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: आकाश में।
0: अच्छा, आकाश बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आकाश?
1: हाँ सर, अकेड से।
0: अच्छा अच्छा, तो बताओ कौन सा गाना सुनोगे आज?
1: सर आज को देखा तो ये लाया।
0: कौन कौन सुनेंगे आपके घर में ये गाना?
1: सर मैं, भाई और मेरी बहन।
0: अच्छा अच्छा, क्या तुम्हारी बहन क्या करती है?
1: सर पढ़ाई।
0: कौन सी क्लास?
1: सर नाइन्थ
0: में पढ़ती है वो। तो चलो तुम तीनों भाई बहनों को सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गाना सुना।

0: हेलो।
1: हेलो हेलो।
0: हाँ नमस्कार, स्वागत आपका।
1: नमस्कार सर, मैं कारूंगा छोटी सावली से रतनलाल सितार बोल रहा हूँ सर।
0: आज ये बताओ, आप कार्यक्रम में कौन सी बात लेकर बैठे हो कि आज मुझे अगर मेरा फोन मिल गया तो ये बात जरूर करूंगा कार्यक्रम में, आप बताओ।
1: ऊर्जा की बचत ये करना चाहिए कि घर के अंदर जो लाइट लगी हुई है तो मतलब उसको फिजूल ना जलाएं, जैसे ही घर से बाहर निकले और उसे स्विच ऑफ करके आए। ये खास बात तो ये ध्यान रखने की,
0: ठीक है।
1: और एक प्रदूषण के लिए ये जो पॉलिथीन का मतलब ये है जो यूज नहीं करना चाहिए। इससे कई मतलब मवेशी मारे जा रहे हैं क्योंकि ये पॉलिथीन उड़ता फिरता है। तो पॉलिथीन पे भी रोक लगाई जाए, ये अपने पब्लिक पे और ध्यान आकर्षित करता हूँ मैं। हर मतलब आदमी सुन के और इस चीज पे अमल करे।
0: तो आपको क्या लगता है पॉलीथिन का प्रयोग किस तरह से पूरी तरह बंद हो सकता है, क्या क्या हमें अपनाना चाहिए, क्या आदतें हमारी होनी चाहिए?
1: हाँ तो आते तो एक दूसरे को बताते रहो और कोई करता हो तो भी उसको टोको तो वो अपने आप आगे वाला समझता जाएगा।
0: आज आपको मौका मिला कार्यक्रम में, आप किस तरह समझाना चाहोगे हमारे देश की जनता को?
1: देश की जनता को तो मैं यही आह्वान करूंगा कि आप हर स्वतः कर्तव्य होता है कि एक तो एक दूसरे को बताए, और अभी गर्मी के दिनों में भी पक्षी पक्षियों के लिए परिंदे बांधे और उनके दाना पानी की व्यवस्था करें और पेड़ पौधे भी लगाए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: तो चलो, ये तो बहुत अच्छा संदेश दे दिया आपने, है ना
1: जी।
0: अब बताओ कौन सा गाना आप कार्यक्रम में सुनना चाहेंगे? आज
1: गाना सुनना चाहूंगा मैं फिल्म चोरी चोरी का। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में छुपाते हो। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो।
0: वाह वाह वाह।
1: नाम ले लूंगे किसी का
0: वो कौन है जिसका नाम लेना चाहते हैं?
1: पुराने रिसर्चमेंट आकाशवाणी की मेरा चैनल के है, प्रकाश जी खत्री जयपुर में बिराजते अभी तो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ
0: उनकी याद आती है आपको?
1: बिल्कुल, उनके फोन के भी लगाता रहता हूँ मैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। प्रकाश जी के मित्र हैं आप, मुझे लगता है गहरे मित्र हैं।
1: हाँ, बिल्कुल हाँ।
0: चलिए चलिए, तो सुनाते हैं आपकी पसंद पर, सुनते हैं गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ नमस्कार, राम राम।
1: मनीष कुमार बोल रहा हूँ जी, बठेना
0: अच्छा मनीष जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बाग
0: अजी
1: से, बठेना बाग
0: अच्छा ये कहाँ पर है?
1: से धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। हाँ जी,
0: तो धौलपुर में तो बहुत तगड़ी गर्मी पड़ती।
1: बहुत लू चल रही है, गर्म।
0: हाँ धौलपुर का तापमान काफी आता है।
1: हाँ, 45-40 बोल रहा है। दिन में कब लगते अपने एक कवर में बने रहते हैं, पंखा में, कूलर की हवा में।
0: तो अभी वैसे देखा जाए तो गांव में क्या काम होते हैं ज्यादातर इस समय?
1: चले तो कोई काम नहीं है फिलहाल, खेती का तो कोई काम नहीं है, बैठे काम चल रहे हैं वो अलग बात नहीं। कोई दुकान वगैरह है, कोई वैसा काम होते हैं
0: अच्छा गर्मी की जुताई भी लोग करते हैं खेतों में, तो अभी बंद है या लोगों ने कर रखी है गर्मी की जुताई?
1: ये। अप्रैल में बारिश हुई, जब उसने लोग अपने अपने खेत जुतवा के रखवा दिए। हाँ
0: अच्छा अप्रैल में कर दी जुताई।
1: जी, उसमें कटेरी हो जाती है,
0: कटेड़ी
1: भाव
0: होती
1: सूर
0: है।
1: है वो सूख जाता है, वो उसमें बाजरा बढ़िया हो जाता है फिर।
0: अच्छा बाजरा बोते हैं फिर आप?

0: है ना।
1: हाँ बाजरा होगा जुलाई में।
0: अच्छा, जुलाई में बाजरे की बुआई कर देंगे।
1: हाँ
0: बाजरे के अलावा और क्या क्या बोते हैं आप लोग वहाँ धौलपुर की तरफ?
1: ज्यादा सरसों ज्यादा होती है।
0: अच्छा, वो तो सरसों तो सर्दी की फसल है ना।
1: हाँ वो सर्दी की है तो।
0: हाँ तो ये तो चलो बहुत अच्छी खेती बाड़ी की बात बताई आपने। अब बताओ आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: झुमका गिरौरी बरेली के बाजार में, उसको सुनवा दीजिए।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: मेरा नाम रामविलास कुमार है।
0: अच्छा, तो रामविलास जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं केतन कोटा से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हो वहाँ पे?
1: मैं सिक्योरिटी का जॉब करता हूँ सर।
0: तो कितने दिनों से सोच रहे हो कि आप इस कार्यक्रम में मुझे फोन लगाना है?
1: यहाँ 2 साल से आया हूँ, 2 साल से लगा रहा हूँ।
0: अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हो?
1: यहाँ कोटा का रहने वाला, सूरत 18 साल कर गया हूँ।
0: अच्छा, सूरत सूरत में रहे आप 18 साल?
1: तो आप ही सुनता था।
0: अच्छा। तो बताओ, सूरत में फिर आपका मन नहीं लगा, वापस यहीं आ गए आप अपने घर के आस?
1: रिटायर कर दिया ना, मेरे को 62 साल उम्र हुई थी।
0: अच्छा, सरकारी सरकारी सेवा में थे आप?
1: प्राइवेट लिमिटेड थी, एलएनटी लास्ट में था।
0: तो वापस फिर इधर ही आ गए, अपने एरिया में आ गए।
1: 31 जुलाई 2024 को रिटायर कर दिया था मेरे।
0: तो अभी कहाँ पर हैं आप?
1: सोसाइटी में हूँ, रेलवे कॉलोनी।
0: ये कोटा में ही है?
1: हाँ।
0: अच्छा, सोसाइटी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो बताओ।

0: या हमारे कार्यक्रम के बारे में बताओ, आपको जब सुनते रहते हो तो कैसा अनुभव
1: होता है?
0: अच्छा, कोई
1: टाइम मिलता है जैसा, पूरा तो नहीं सुन पाता लेकिन जब जब टाइम मिलता है सुनता हूँ, मुझे करते रहता हूँ जब।
0: अच्छा,
1: लाइट हो तो दिन में सुनता हूँ, दिन हो तो 11 बजे तक सुनता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: गाना सुनना चाहता हूँ।
0: हाँ बताओ, कौन सा गाना सुनेगी? बोलो, सुना
1: वीर जवानों का।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह वाह, बहुत जोरदार गाना है भाई ये।
1: हाँ
0: हाँ बिल्कुल।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्कार। आपका शुभ चिंतक बाहु बाहुबली फुलसेले छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से संवाद कर रहा हूँ बंधु।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या हालचाल है?
1: अरे मस्त हूँ, आनंद में हूँ।
0: वाह।
1: आपकी मंगल कामना और प्रभु की छत्र छाया में 84 साल की उम्र में मैं तंदुरुस्त हूँ,
0: वाह
1: मस्त
0: वाह,
1: हूँ, आनंद में हूँ।
0: अरे वाह वाह। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारी केंद्र सरकार

0: से कम डीजल, पेट्रोल और ये जो ईंधन है इसके उपयोग पर अनुशासन का संदेश और आह्वान कर रहे हैं देश के लोगों से, इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
1: जी, ये समय के अनुसार
0: जी
1: जैसी परिस्थिति है उसका मुकाबला करने के लिए
0: जी
1: कुछ संयम और अपने जीवन में कटौती करना अपना एक नागरिक का
0: जी
1: परम कर्तव्य होता है। जो समस्या वर्तमान में हमारे सामने है
0: जी
1: उसका मुकाबला करने के लिए हमें
0: जी
1: ये पेट्रोल और डीजल
0: जी
1: और जो गैस है इसका सीमित उपयोग करना चाहिए।
0: जी
1: जो अधिक मात्रा में या जब जरूरत नहीं उसका उपयोग हम करते हैं
0: जी
1: और बोले तो देश की जो एक सप्लाई और डिमांड का जो संतुलन है
0: जी
1: उसमें बिगाड़ आ जाता है। और कोई चीज का संचय करना
0: जी
1: यह घातक है, इससे बोले तो समाज की अर्थव्यवस्था
0: जी
1: छिन्न भिन्न होकर एक मुश्किल का सामना हमारे जो राज्यकर्ता है, जनता है, सभी को सहना पड़ता है।
0: जी जी
1: करके मेरा एक निवेदन है कि अपने सीमित आवश्यकता के अनुसार ही उसका उपयोग करें
0: जी
1: और ये जो समस्या है कुछ दिनों के बाद दूर हो सकती है।
0: जी जी जी जी तो देश के नागरिकों को ये जो ईंधन है इसके उपयोग में एक अनुशासन की जरूरत आप महसूस करते हैं, है ना?
1: जी क्योंकि हमारी जो प्रवृत्ति रहती है आम तौर पे
0: जी
1: जहाँ खर्चा नहीं करना, कहीं घूमना, सैर करना, ये जो अवांतर जो चीजें है अनावश्यक
0: जी
1: इसको थोड़ा सा बंधन डालना सभी नागरिकों का कर्तव्य है।
0: जी जी जी तो चलिए बहुत अच्छा, आपने आप बहुत बुजुर्ग हैं, 84 साल के हैं तो आपको जीवन का काफी अनुभव है। आप बताइए और कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर?
1: तो कार्यक्रम तो मस्त होता है
0: जी,
1: रात के विचारधारा और श्रोताओं के विचार
0: जी
1: हमारे जीवन में परिवर्तन और थोड़ा सा बदलाव करने का एक जरिया है
0: जी, जी।
1: थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है। यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कोटा केंद्र कर रहा है।
0: जी बहुत धन्यवाद आपका। अब बताइए सर कौन सा गाना सुनेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: तो गाना पंख होते तो उड़ा आती रे फिल्म मयूरी का है।
0: रसिया वो भर तुझे दिल के दाग दिखलाती, लता जी का गाना, बहुत सुंदर गाना। वाह तो चलिए सर सुनाते हैं आदरणीय आपकी पसंद पर ये गाना और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप इसी तरह स्वस्थ रहें और रेडियो के कार्यक्रम से आप हमें मार्गदर्शन देते रहें। आप धन्यवाद आपका।

0: हेलो।
1: हेलो, कोटा आकाशवाणी, कोटा।
0: हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हाँ मैं छावनी से बोल रहा हूँ, कोटा।
0: अच्छा, कोटा छावनी से बोल रहे हैं।
1: वो मेरा नाम तो अब्दुल हकीम है।
0: अच्छा।
1: और मैं मेरा उनका नाम लेना चाहता हूँ बच्चों का।
0: अच्छा।
1: एक का नाम है आयान, एक का सिब्बू
0: जी,
1: है ना, आयान सिब्बू, और एक है गोलू अरमान।
0: अच्छा अरमान,
1: है ना, है ना, ठीक है, है ना। आप जरूर सुनाना है गाना।
0: क्या कह रही है उधर पीछे से कोई आवाज आ रही है?
1: हाँ वो ही बोल रही है कि बच्चों का, उनकी दादी उनकी नानी बोल रही है कि बच्चों का गाना है ना।
0: हाँ।
1: वो सुनाओ। वो लकड़ी की काठी गाना है ना वो।
0: अच्छा,
1: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
0: लकड़ी की काठी वाला बच्चों का।
1: हाँ
0: चलो ठीक है,
1: ठीक है,
0: चलिए नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ नमस्ते।
1: नमस्कार सर जी। सर मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: हाँ राम बाबू जी, क्या हाल चाल है इन दिनों भोपाल के, सुनाइए।
1: जी सर बहुत बढ़िया है, चल रहा है, गर्मियाँ पड़ रही हैं, गर्मियों का आनंद ले रहे हैं।
0: तो गर्मी का आनंद कैसे लेते हैं, क्या क्या आनंद है गर्मी के, जरा वर्णन करके हमें भी बताइए।
1: जी सर जैसे गांव में तो वर्णन ये है आनंद लेने की, जैसे अभी मैं पीपल की छांव में बैठा हुआ हूँ, घर पर ही था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: जी सर, हम हमारा जो रहना है खेत पर रहना है। तो इधर पानी चल रहा है और जो मवेशी के लिए जो चारा बोलते हैं वो बो दिया है, तो ठंडी हवा आ रही है, आनंद ही आ रहा है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: जी सर।
0: अच्छा देखो गर्मी में कुछ फल भी बड़े अद्भुत।
1: जी सर जी सर बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था कि आम पकने लगे हैं, एक एक की दुक्की कैरी, जो साय बोलते हैं ना, साय बन के टपकने लगी है।
0: हाँ हाँ हाँ। अभी हमारे यहाँ चाखें बोलते हैं उसको, जो डाल पक आम पेड़ पर ही पक कर जो गिरता है उसको चाखें बोलते हैं हमारे यहाँ हाड़ोती में।
1: हाँ, हमारे इधर सर साय बोलते हैं, साय गिर गई है।
0: हाँ हाँ, तो थोड़ा मामूली सा अंतर है, बात वही है।
1: हाँ बात वही है।
0: अच्छा तो एक बात बताइए कि आम को पकाने का अच्छा जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, वो आपके यहाँ क्या है?
1: जी सर हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जो छोला जो होता है ना, जिसे खाकर बोलते हैं।
0: हाँ खाकरा ढाक ये जिसको।
1: हाँ हाँ जी सर,
0: पलाश
1: तो उसमें। हाँ अब ऐसे साय गिरने लगी है, कैरी मतलब पूरी पकने की तौर पे है, तो इसको तोड़ करके और एक जगह दबाया जाता है
0: ढाक के पत्तों में, है ना,
1: पत्तों में ढाक कर पकाया जाता है, चार या पांच दिन में पक के तैयार हो जाते हैं। चूसने वाले जो आम होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं।
0: ये सबसे देसी तरीका है और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका है आम पकाने का।
1: जी सर जी सर
0: बिल्कुल, हमने भी हमारे इलाके में इसी तरह से बहुत आम पकाए हैं, है ना।
1: हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा इसको बोलते हैं आम का पाल लगाना, आपके यहाँ क्या कहते हैं?
1: जी सर बिल्कुल,

0: पाल लगाना इधर बोलते हैं, आम का पाल लगा हुआ है निकलेगा फिर आपके एरिए खिलाएंगे।
1: अच्छा आपके यहाँ पर कौन कौन सी वेराइटी है आम की भोपाल के आसपास जहाँ रहते हैं आप लोग?
0: जी सर यहाँ पर तो ये कलमी मिलता है और देसी आम मिलता है ज्यादा।
1: अच्छा अच्छा आम की उसकी पहचान क्या है कि कब उसको अच्छे तरह पकाया जा सकता है, उसकी गुठली में क्या ऐसे रेशे देखें, कैसे पता लगाएं कि अब इसको पकाया जा सकता है?
0: जी सर जैसे अब जो साय गिरने लगी है ना, जो पक्के इक्की दुक्की कैरी गिरने लगती है फिर उसे तोड़ा जाता है।
1: तो इसका मतलब है कि अब पूरी कैरियों को तोड़ के और पकाया जा सकता है।
0: हाँ जी सर
1: है ना, ये तरीका है। अच्छा तो अच्छा लगा कि आपने उपयोगी जानकारी दी और ऐसी जानकारी जो जिन लोगों ने बचपन में अपने गांवों में आम तोड़कर पकाए हैं उन्हें जो है अच्छा लगेगा ये जानकारी। अच्छा हमारे यहाँ और भी जो छोटी छोटी कुछ कैरियों को पकाते थे वो भूसे में डाल देते थे, गेहूं के ढेर में डाल देते थे, इस तरह से भी पकाते हैं?
0: हाँ जी सर बिल्कुल, मेरे पास जो अभी चीकू के पेड़ भी हैं मेरे पास।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: तो उसको मैं गेहूं में ही लगाता हूँ, गेहूं की बोरी में रख दिए और 2 दिन या 3 दिन पक जाते हैं।
1: तो ये हमारे पारंपरिक तरीके हैं फलों को पकाने के, है ना?
0: जी सर जी सर।
1: अच्छा आप बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे?
0: जी सर फिल्म का नाम है इंग्लिश बाबू देसी मैम और दीवाना दिल हुआ दीवाना।
1: चलिए सुनाते हैं आपकी पसंद पर गाना।

तो प्रिय श्रोताओ, प्रोग्राम में अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी इस प्रोग्राम में अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ आपके अंदर ऐसा रचनात्मक है जिसे हमारे श्रोताओं के साथ में आप साझा करना चाहते हैं, या आपके गाँव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में कोई ऐसा देखने योग्य स्थान या पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई जगह है उसके बारे में हमारे देश भर के रेडियो श्रोताओं को बताना चाहते हैं, तो हमें जरूर कॉल करें। हर गुरुवार को इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है सवेरे 11 बजे से 12 बजे तक। नंबर है 2941142। इस नंबर से पहले एसटीडी कोड जरूर लगाएं। कोटा का एसटीडी कोड है 0744। और जिन श्रोताओं की फोन कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गई हैं, वे कृपया अब 2 महीने तक फोन न करें। चलते चलते आपको बता दें दोस्तों कि इस सप्ताह साहित्य के क्षेत्र में जिनकी गजलें और जिनके शेर हर काव्य प्रेमी इंसान की जुबान पर हैं कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, उम्मीदों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की, कई दिन से खुद की खबर ही नहीं, कहां दिन गुजारा कहां रात की। ऐसे हजारों दिलकश शेर कहने वाले हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय आम आदमी की जबान के शायर आदरणीय बशीर बद्र साहब का इस सप्ताह निधन हो गया। हम सब उनकी स्मृति को नमन करते हैं। अब अगले सप्ताह इस प्रोग्राम में आपसे फिर हमारी भेंट होगी। तब तक अपने रेडियो दोस्त राम नारायण मीणा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोता अभी अपनी पसंद के कार्यक्रम फोन कॉल्स पर रिकॉर्डेड हेलो आकाशवाणी सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे रामनारायण मीणा।

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है, एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम, प्रतीक्षा कीजिए।

0: जवाब हो।
1: दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि खूबसूरती ऊपर वाले की देन है। हर एक इंसान के नए नक्श बनाने वाले ने अपने ही तरह से बनाए हैं, जो उस इंसान के व्यक्तित्व की पहचान है। सिर्फ सुंदर तीखे नए नक्श ही असली खूबसूरती नहीं होते, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं।
2: कहां से लाई हो जान।

किसी को पहली बार देखते हैं तो आपकी दो आंखें चार होती हैं सामने वाले की दो आंखों से। आंखों के लिए एक शायर ने क्या खूब कहा है, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, वो चीज कहते हैं फिरदौस गुमशुदा जिसको, कभी कभी तेरी आंखों में पाई जाती।

आंखें आईना होती हैं दिल का। खैर, आंखों के बाद प्रभावित करती है सुरीली आवाज। आवाज में वो जादू होता है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और यही आवाज पहचान होती है इंसान की।

जरूर ढाएगा कोई महशर, जरूर फितना बर्पा करेगा तुम्हारा अटखेलियों से चलना, झुका के गर्दन उठा के आंचल। जी हाँ, बारी है चाल की, जहां उठना बैठना

खूबसूरती क्या है? देखा जाए तो हर चीज का नियमानुसार होना। किसी की आंखें छोटी होती हैं या बड़ी बड़ी होती हैं, किसी के होंठ पतले हैं या मोटे, लेकिन अदाएं, जी हाँ, अदाएं तो आपके बस में हैं, क्योंकि यही अदाएं देखकर एक शायर ने ये

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: भैया
1: बैठा चुप है भैया
2: मेरा भैया
0: हाँ हाँ तेरा भैया हाँ हाँ मेरा भैया
2: भैया भैया बोलो भैया
3: बोलूं क्या मैं अरे बोल कन्हैया

आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, क्षमा कीजिए हिंदी में समाचार, और उसके बाद होंगे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान,

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: overs. And in badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the finals of the Singapore Open. The Indian pair defeated world number one South Korea's duo Seo Sang-jae and Kim Won-ho in the semi-finals today. And that is the end of this news bulletin.
1: FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल यानी 31 मई 2026 को सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।